1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। श्रोताओं, आज सोमवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 8वीं तिथि, तद अनुसार 29 जून 2026। सुबह के 5:56 हुए हैं। हमारी पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हिंदी समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने इस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स के करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्ध पोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के

0: लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की भी समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधि मंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इनक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन, विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में FIH प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव और FM बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मातृभूमि वंदना से।

समूह स्वर में इस देशगान के बाद आइए सुनते हैं तृप्ति शाक्य की आवाज में कृष्ण भजन।

अभी आपने चित्रा सिंह की आवाज में ये कृष्ण भजन सुना। कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं विवेक रंगा की आवाज में ये भक्ति रचना।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बात में सामयिक, माफ कीजिएगा, प्रस्तुत है कार्यक्रम विचार बिंदु। कार्यक्रम में आज का आलेख है आत्मनिरीक्षण। संकलन एवं वाचन स्वर हैं राजीव दुबे के।
1: मनुष्य का जीवन केवल बाहरी संसार को देखने और समझने तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने भीतर झांकने और स्वयं का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया भी उतनी ही अधिक महत्वपूर्ण है। अपने विचारों, भावनाओं, व्यवहार और कर्मों का निष्पक्ष अवलोकन करना ही आत्मनिरीक्षण कहलाता है। ये एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को स्वयं को बेहतर ढंग से समझने, अपनी गलतियों को पहचानने और जीवन को सही दिशा देने में सहायता करती है। आत्मनिरीक्षण व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास का आधार है और उसे आत्मबोध की ओर ले जाता है। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में मनुष्य इतना अधिक व्यस्त हो गया है कि उसे स्वयं के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिल पाता। वह दूसरों की कमियों को तो आसानी से देख लेता है, लेकिन अपनी कमजोरियों और त्रुटियों पर ध्यान नहीं देता। आत्मनिरीक्षण हमें ये अवसर देता है कि हम कुछ समय के लिए बाहरी शोर से दूर हटकर अपने भीतर की आवाज़ को सुने। यह प्रक्रिया हमें अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित कराती है। आत्मनिरीक्षण का पहला लाभ ये है कि इससे व्यक्ति अपनी गलतियों को पहचान पाता है। कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति से कभी न कभी कोई न कोई भूल अवश्य ही होती है। यदि हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर उनका विश्लेषण करें तो उनसे सीख लेकर आगे बढ़ सकते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति आत्मनिरीक्षण नहीं करता, वह अपनी कमियों को समझ ही नहीं पाता और बार बार वही गलतियां दोहराता रहता है। आत्मनिरीक्षण व्यक्ति के चरित्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम अपने व्यवहार का मूल्यांकन करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि हमारे शब्दों और हमारे कर्मों का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इससे हमारे भीतर विनम्रता, सहानुभूति और जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। हम अधिक संवेदनशील और परिपक्व बनते हैं और अपने संबंधों को बेहतर बना पाते हैं। यह प्रक्रिया मानसिक शांति प्राप्त करने का भी एक प्रभावी साधन है। अनेक बार हमारे मन में क्रोध, ईर्ष्या, भय और असंतोष जैसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम इन भावनाओं के कारण

0: को समझ सकते हैं। जब कारण स्पष्ट हो जाते हैं तब उनका समाधान भी सरल हो जाता है। इस प्रकार आत्मनिरीक्षण मन को संतुलित और शांत रखने में सहायता करता है। भारतीय संस्कृति और दर्शन में आत्मनिरीक्षण को विशेष महत्व दिया गया है। ऋषि मुनियों ने सदैव मनुष्य को अपने भीतर झांकने की प्रेरणा दी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी प्रतिदिन आत्म परीक्षण करते थे और अपने आचरण का लेखा जोखा रखते थे। उनका मानना था कि आत्मनिरीक्षण के बिना आत्म सुधार संभव ही नहीं है। वास्तव में जो व्यक्ति स्वयं का न्यायपूर्वक मूल्यांकन करता है वही निरंतर प्रगति कर सकता है। आत्मनिरीक्षण की आदत विकसित करने के लिए प्रतिदिन कुछ समय शांत वातावरण में बैठकर दिन भर के कार्यों और विचारों पर चिंतन करना चाहिए। स्वयं से ये प्रश्न पूछना चाहिए कि आज मैंने क्या अच्छा किया, कहाँ गलती हुई और कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। ये सरल अभ्यास धीरे धीरे व्यक्ति को अधिक जागरूक, जिम्मेदार और संतुलित बनाता है। आज के प्रतिस्पर्धी युग में सफलता की दौड़ में लोग अक्सर अपने आंतरिक विकास को भूल जाते हैं। वे बाहरी उपलब्धियों को ही सब कुछ मान लेते हैं, किंतु वास्तविक सफलता केवल धन, पद, प्रसिद्धि प्राप्त करने में नहीं है, बल्कि एक श्रेष्ठ और संतुलित व्यक्तित्व के निर्माण में निहित है। आत्मनिरीक्षण इसी निर्माण की आधारशिला है। आत्मनिरीक्षण व्यक्ति में आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता का भी विकास करता है। जब हम अपने अनुभवों, सफलताओं और असफलताओं का ईमानदारी से विश्लेषण करते हैं तब हमें अपनी वास्तविक क्षमताओं का बोध होता है। इससे जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में स्पष्टता आती है। आत्मनिरीक्षण हमें परिस्थितियों का दोष देने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। यह व्यक्ति को प्रतिक्रियात्मक नहीं बल्कि विचारशील बनाता है। जो लोग नियमित रूप से आत्मनिरीक्षण करते हैं वे अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक सजग रहते हैं और जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना धैर्य और विवेक से कर पाते हैं। अंततः कहा जा सकता है कि आत्मनिरीक्षण आत्मविकास का एक शक्तिशाली साधन है। ये हमें अपनी कमियों को पहचानने, गुणों को विकसित करने और जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से आत्मनिरीक्षण करता है वह न केवल स्वयं को सुधारता है बल्कि समाज के लिए भी एक आदर्श बनता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में आत्मनिरीक्षण को स्थान देना चाहिए, क्योंकि स्वयं को समझने और सुधारने की यात्रा ही सच्चे विकास की यात्रा है।
1: कार्यक्रम विचार बिंदु में अभी आप सुन रहे थे आज का आलेख आत्मनिरीक्षण, संकलन एवं वाचन स्वर थे राजीव दुबे के। मीडियम वेब और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का गायन। मुख्य गायन स्वर हैं सुरेश वाटिकर के, संगीत संयोजक हैं सतीश भाटिया।

अयोध्या नगरी के बाहर जनकपुर प्रस्थान के लिए बारात सजी खड़ी है। वातावरण में स्त्रियों के कंठ से फूटते मंगल गीत के स्वर गूंज रहे हैं। मंत्री सुमंत्र दो रथ विशेष रूप से सजाकर राजा दशरथ के समीप ले आए। नरेश ने एक रथ पर आग्रहपूर्वक कुलगुरु वशिष्ठ को बैठाया तथा शिव, गुरु, गौरी तथा गणेश का स्मरण कर स्वयं दूसरे रथ पर आरूढ़ हुए। गुरु की आज्ञा पाकर महाराज ने जब बारात को चलने का संकेत दिया तो देवगण मंगल पुष्पों की वर्षा करने लगे। समस्त वातावरण गाजे बाजे, घोड़े हाथियों के गर्जन तथा धरती और आकाश से झड़ते मंगल स्वरों की गूंज से झंकृत हो उठा। बारात ऐसी सजी है जिसका वर्णन करना कठिन है। चहुं ओर शुभ शकुन हो रहे हैं, बाएं नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो रहे हैं तो दाहिनी ओर खेतों में कौवों का समूह मंगल का संकेत दे रहा है। लोगों को नेवले तथा लोमड़ी के भी दर्शन हुए।

0: सुरेश वाटिकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे श्री राम चरितमानस का गायन। संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बात। कार्यक्रम में आज सामयिक सुझाव का विषय है दुधारू पशुओं के प्रमुख रोग एवं उनकी रोकथाम।
1: दुधारू जानवरों की कई ऐसी बीमारियां हैं जो जानवरों के लिए घातक होने के साथ साथ रोगग्रस्त पशुओं की उत्पादन क्षमता को प्रभावित करता है। अर्थात ये बीमारियां आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और पशुपालकों को ऐसे रोगों के बारे में समुचित जानकारी रहनी चाहिए। आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण दुधारू जानवरों के ऐसे रोग कुछ इस प्रकार हैं: गलघोंटू, एकटंगी, एंथ्रैक्स, खुरपका, मुँहपका, कृमि रोग, थनैला रोग। किसान भाई, आइए देखते हैं गलघोंटू। यह एक प्रकार का संक्रामक रोग है जो बीमार जानवरों के स्वस्थ पशुओं में फैलता है। इस रोग के लक्षण इस प्रकार हैं: बीमार पशु सुस्त हो जाता है, खाना पीना बंद कर देता है, मुंह से लार आने लगती है, नाक से पानी आने लगता है, बीमार पशुओं का तापमान 106 से 108 अंश सेंटीग्रेड तक रहता है, गले के आसपास सूजन आ जाती है जो स्पर्श करने पर गर्म महसूस होती है, श्वास लेने में कठिनाई होती है तथा बीमार पशुओं की जीभ बाहर निकल जाती है। इलाज के अभाव में आक्रांत पशुओं की मृत्यु 24 से 48 घंटे के अंदर हो जाती है। एक टंगी, यह एक प्रकार का जीवाणु जनित रोग है। इस रोग के लक्षण कुछ इस प्रकार हैं: आक्रांत पशु लंगड़ा कर चलने लगता है, आक्रांत पशु खाना पीना बंद कर देता है, शरीर का तापक्रम 106 से 108 अंश हो जाता है, आक्रांत पशु सुस्त हो जाता है, शरीर के मांस वाले भाग विशेषकर कंधा, गर्दन या पिछले क्वाड में सूजन आ जाती है, सूजन स्पर्श करने पर पीड़ाजनक होती है और उससे एक विशेष प्रकार की आवाज़ आती है, आरंभ में तापक्रम काफ़ी बढ़ जाता है लेकिन मरने

0: से पहले काफी नीचे उतर जाता है। बीमार पशु का इलाज समय पर न करने पर उसकी मृत्यु 24 से 48 घंटे के अंदर हो जाती है। एंथ्रेक्स, यह भी एक प्रकार का जीवाणु जनित रोग है। इस रोग के लक्षण कुछ इस प्रकार हैं। आक्रांत पशु कांप कर एकाएक जमीन पर गिर जाता है, श्वास की गति तेज हो जाती है, कुछ ही क्षणों में पशु की मृत्यु हो जाती है, नाक मुंह तथा मलाशय से रक्त मिला हुआ स्त्राव निकलता है। तीव्र रूप में रोग का लक्षण कुछ इस प्रकार होता है, पशु अत्यधिक बेचैन मालूम पड़ता है, पैरों से लड़खड़ाते हुए और चक्कर काटते हुए चलता है, पेट गले इत्यादि पर सूजन आ जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन लाल हो जाती है, खून लिए हुए दस्त होती है, तापक्रम 106 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है, ग्रसित पशु 48 घंटे में मर जाता है, मुंह से रक्तयुक्त लार निकलती है, शरीर के प्राकृतिक छिद्रों जैसे नाक मुंह एवं मलाशय आदि से काला कोलतार जैसा चमकदार झाग युक्त स्त्राव निकलता है जो जमता नहीं है। खुरपका या मुंह पका, यह एक विषाणु जनित रोग है। इस रोग के लक्षण कुछ इस प्रकार है, बीमार पशु खाना पीना बंद कर देता है, आरंभ में बुखार हो जाता है, मुंह से लार आने लगता है, जानवर लंगड़ाने लगता है, दुधारू पशुओं की छीमी एवं थन पर भी घाव हो जाता है जिसके कारण दुग्ध उत्पादन में काफी कमी आ जाती है, कभी कभी बीमार पशुओं का खुर बाहर निकल आता है, काम करने वाले पशुओं में काम करने की क्षमता काफी कम हो जाती है। रोकथाम एवं नियंत्रण के उपाय, वर्षा ऋतु के प्रारंभ में फैलने वाले इन रोगों से बचाव के लिए सावधानियां बरतनी चाहिए। बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग कर देना चाहिए, स्वस्थ पशुओं को साफ सुथरी जगह में रखना चाहिए, रोग की आशंका होते ही तुरंत समीप के पशु शल्य चिकित्सक को सूचना देकर बुलाना चाहिए ताकि रोग का सही समय पर इलाज हो सके और आगे न फैलने न पाए। रोग से मरे पशुओं के शव खुले मैदान या तालाब में नहीं फेंकना चाहिए, अर्थात शव को जला देना चाहिए। शारीरिक विकास दर में कमी, गर्भधारण क्षमता का देरी से विकास, दूध के उत्पादन में कमी, गाभिन होने में देरी, गर्भधारण में परेशानी, इसके रोकथाम, बरसात से पहले व बरसात के बाद में सभी पशुओं को कृमिनाशक दवा खिलाएं, पाइपेराजिन, वेनमिंट, अल्वेंडाजोन, पानाक्योर या निकट के पशु चिकित्सकों की सलाह से दिया जा सकता है। दवाई मिला पशु आहार इसके लिए सरल व सस्ता उपाय है। वेटफेन 600 पशु चिकित्सकों की सलाह से दिया जा सकता है। अधिक जानकारी एवं उपचार हेतु निकट के पशु चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। किसान भाइयों, इस तरह से हम थोड़ा सा सावधानी बरत के एक अच्छे पशुपालक हो सकते हैं और पशुओं से होने वाली जो आमदनी है या उनका उपयोग करके जो हम आर्थिक लाभ लेते हैं वह और अधिक मात्रा में ले सकते हैं और उनका ख्याल भी रख सकते हैं।
1: कार्यक्रम खेती की बात में अभी आप सुन रहे थे सामयिक सुझाव का विषय, दुधारू पशुओं के प्रमुख रोग और उनके रोकथाम। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं।

सुबह 7 बजे आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम गुंजे जंगल। कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार होंगे तीलन साय तिग्गा, छुन्नूलाल तिग्गा, अघनुराम कुजूर और उनके साथी। सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे जनसंपर्क विभाग से प्राप्त स्थानीय समाचार और पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे स्थानीय गतिविधियों के स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा। प्रस्तुतकर्ता होंगे प्रमेंद्र कुमार, वाचन एवं प्रस्तुति सहयोग होगा अंजनी कुमार पांडे का। बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन आप सुनेंगे सुबह 9 बजे। सुबह 10 बजे आप सुन सकेंगे पद्मश्री से हाल में ही सम्मानित दंतेवाड़ा की डॉक्टर बुधरी ताती से विशेष भेंटवार्ता। प्रस्तुतकर्ता प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर। यह कार्यक्रम हमारे रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। समय याद रखिएगा सुबह 10 बजे।

इन कार्यक्रम आपकी बात आपके गीत आप सुनेंगे सुबह 10:30 पर। प्रस्तुत करता होंगे प्रमेंद्र कुमार, प्रस्तुति सहयोग होगा मृदुल वर्मा का। सुबह 11:35 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग हम आपको सुनवाएंगे दोपहर 12:00। दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर गोसाइन। कार्यक्रम में सामयिक चर्चा का विषय होगा संत कबीर जयंती तथा चर्चा होगी उमस और गर्मी से बचाव पर। कार्यक्रम ईमेल की गूंज आप सुनेंगे दोपहर 1:40 पर। दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे गैर फिल्मी गीतों गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा।

0: हमारी सांध्यकालीन सभा में शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी आप सुनेंगे शाम 5:30 पर। कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे युवा सोच, इंद्रधनुष और फिल्म संगीत। शाम 7:20 पर आप सुनेंगे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल। सामयिक चर्चा का विषय होगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जैव विविधता बचाना जरूरी, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस। रात 8:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम सोशल मीडिया की गूंज, इंस्टा फरमाइश, सोशल मीडिया आधारित श्रोताओं की पसंद का फरमाइशी कार्यक्रम। रात 10:00 शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामिनी आप सुन सकेंगे। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे राग मारवा पर आधारित पंडित जसराज का गायन। रात 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम मनभावन। साथियों, ये थी जानकारी हमारे आज के प्रमुख शेष कार्यक्रमों की। यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:55 हुए हैं। प्रस्तुत है संस्कृत
1: इयम आकाशवाणी। संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सेशल्स देशस्य राष्ट्रिय दिवसस्य स्वर्ण जयंती समारोहे मुख्य अतिथि रूपेण भागं गृहीतवान्। भारतीय सैनिक बलस्य अथ नौसेना बलस्य दलानि अपि अस्मिन् पथ संचलन कार्यक्रमे भागं गृहीतवन्तः। अस्मिन् अवसरे श्री मोदी सेशल्स देशस्य नागरिकेभ्यः भारत परं वर्धापनं प्रकटितवान्। विक्टोरिया इत्यत्र राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मनी इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तानन्तरं श्रीमोदी उक्तवान् यत् भारतं तादृशीं हिन्द महासागरस्य कल्पनां करोति यत्र समुद्रीय सुरक्षया सह आर्थिक समृद्धिरपि सुनिश्चिता स्यात्।
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
1: पर्यावरण संरक्षणस्य सतत विकासस्य च नेतृत्वाय सेशल्स देशेन प्रधानमन्त्रिणे श्री नरेन्द्र मोदिने पर्यावरण नेतृत्वस्य सर्वोच्च सम्मानः गार्डियन ऑफ द ब्लू होरिजन प्रदत्तः। सेशल्स देशस्य राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मनी इत्यनेन प्रदत्तः अयं पुरस्कारः स्थायि अभिवृद्ध्यर्थं प्रधानमन्त्रिणः दीर्घकालीन सम्बलस्य तस्य हरितदृष्टेः च प्रतीकः वर्तते। श्रीमोदी जलवायु परिवर्तनस्य समाह्वानानां विरुद्धं संघर्षं कुर्वतां राष्ट्राणां कृते एतं पुरस्कारं समर्पितवान्। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सेशल्स देशे ह्यः मॉरिशस देशस्य

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के ठीक 7 बजे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं भुईहारी खेमटा गीत से। स्वर हैं तिलन साहित्य और साथियों के।

कार्यक्रम में आइए सुनते हैं सादरी भजन गीत छुन्नूलाल तिग्गा और साथियों के स्वरों में।

कार्यक्रम गुजे जंगल के अंत में आइए सुनते हैं अघनू राम कुजूर और साथियों के स्वरों में सादरी में सुगा गीत।

अघनुराम और साथियों के गाए इसी सुगा गीत के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7:15 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कतिल शिफाई के इस कलाम से। इसे गाया है मेहदी हसन ने।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनते हैं अगली गजल मेहदी हसन की आवाज में। शायर हैं तस्लीम फाजली।

0: जगजीत सिंह के गाए इसी गजल से कार्यक्रम सुगम संगीत अब समाप्त करते हैं। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा। कार्यक्रम में सुनते हैं जनसंपर्क से प्राप्त स्थानीय समाचार और पुराने फिल्मी गीत।
1: से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।

नमस्कार। कार्यक्रम के आज के अंक में मैं हूं गोपेश। साथियों, जंगली हाथियों की गतिविधियों और उनके संभावित विचरण क्षेत्रों की सटीक जानकारी देने वाला विशेष कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ प्रतिदिन शाम 5 बजे आपके अपने 4 आकाशवाणी केंद्रों अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ से प्रसारित हो रहा है। यह कार्यक्रम FM रेडियो चैनलों पर भी उपलब्ध है, जिसे आप आसानी से रेडियो सेट, मोबाइल फोन या गाड़ियों में चलते फिरते सुन सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी इसकी पहुंच है, ताकि हर जानकारी हो आपके हाथ में। इस कार्यक्रम से मिली जानकारी के कारण हाथी प्रभावित क्षेत्रों के लोग सुरक्षित रास्ते अपनाकर अपने घर सुरक्षित लौट रहे हैं। अब जंगल या गांव के किसी भी हिस्से में निकलने से पहले हाथियों की सही स्थिति जानने का सबसे भरोसेमंद माध्यम है हमर हाथी हमर गोठ। सुनते रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। हमर हाथी हमर गोठ, जहां हर सूचना है आपकी सुरक्षा के लिए।

गीता दत्त और साथियों के स्वरों में अभी आपने सुना फिल्म लाजवंती का गीत। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर एमसीबी जिले से। चिरमिरी में जिला स्तरीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ। महापौर और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बच्चों को पिलाई दवा। राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के तहत आज चिरमिरी में जिला स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर अतिथियों ने 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक की 2 बूंद पिलाकर अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से चिरमिरी नगर पालिक निगम के महापौर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन, बीएमओ, जिला कार्यक्रम प्रबंधक शिशिर जायसवाल, आयुष्मान आरोग्य मंदिर नोडल अधिकारी बीपीएम उपस्थित रहे। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व यात्रा आस्था, सम्मान और सांस्कृतिक समन्वयन का अविस्मरणीय संगम। छत्तीसगढ़ शासन की अभिनव पहल से जिले के विशिष्ट जनों के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के दर्शन। गुजरात सरकार ने किया भव्य स्वागत। छत्तीसगढ़ शासन की सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासत को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व यात्रा विशिष्ट जनों के लिए अविस्मरणीय और गौरवपूर्ण अनुभव साबित हुई। केंद्र सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन तथा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री एवं संस्कृति विभाग के संचालक

के विशेष प्रयासों से इस भव्य यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा का उद्देश्य पद्म अलंकरण एवं राज्य अलंकरण से सम्मानित विभूतियों सहित विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट जनों को देश के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव के दर्शन कराना तथा भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत से जोड़ना था। जुड़े रहिए हमारे साथ कुछ और भी स्थानीय खबरों के लिए। उससे पहले आइए सुनते हैं आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाज़ में फिल्म किस्मत का गीत।

नमस्कार सरगुजा, अगली खबर अंबिकापुर से। आषाढ़ के प्रथम दिवस पर दो दिवसीय रामगढ़ महोत्सव 29 एवं 30 जून को ऐतिहासिक धरोहर, संस्कृति, साहित्य और लोक कला का होगा भव्य संगम। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री करेंगे शुभारंभ। समापन समारोह में मुख्यमंत्री होंगे मुख्य अतिथि। नई दिल्ली के कलाकारों द्वारा भव्य रामलीला का मंचन। सरगुजा अंचल की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक धरोहर रामगढ़ में आषाढ़ के प्रथम दिवस 29 एवं 30 जून 2026 को दो दिवसीय रामगढ़ महोत्सव 2026 का आयोजन किया जाएगा। संस्कृति विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस महोत्सव में प्रदेश की समृद्ध लोक संस्कृति, इतिहास, पुरातत्व, साहित्य एवं पर्यटन का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। महोत्सव में जनप्रतिनिधि, साहित्यकार, इतिहासकार, कलाकार, पर्यटक तथा बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक शामिल होंगे। महोत्सव के दौरान आगंतुकों को विश्व की प्राचीनतम रंगशाला के रूप में प्रसिद्ध सीता बेंगरा गुफा, ऐतिहासिक जोगीमारा गुफा, रामगढ़ पर्वत श्रृंखला तथा अन्य महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। इतिहास एवं पुरातत्व विशेषज्ञ इन धरोहरों के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक महत्व की विस्तृत जानकारी भी देंगे। 30 जून को साहित्य, संस्कृति और जनजातीय परंपराओं का होगा उत्सव। समापन समारोह में मुख्यमंत्री होंगे मुख्य अतिथि। रामगढ़ महोत्सव का समापन 30 जून को मुख्यमंत्री के मुख्य आतिथ्य में आयोजित होगा। समापन समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ उत्कृष्ट प्रतिभागियों, कलाकारों एवं सहयोगियों को सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण एवं पर्यटन विकास से जुड़े विषयों पर अपने विचार भी व्यक्त करेंगे। आगे कार्यक्रम में कुछ और भी खबरें, उससे पहले आइए सुनते हैं गीता दत्त की आवाज में ये गीत। फिल्म है साहब बीबी और गुलाम।

नमस्कार सरगुजा। छत्तीसगढ़ में 36 लाख बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य। प्रदेश में 28 से 30 जून 2026 तक राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत राज्य के लगभग 35,98,904 लगभग 36 लाख बच्चों को पोलियो की जीवन रक्षक खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए पूरे प्रदेश में 14,396 पोलियो बूथ स्थापित किए गए हैं, जहां 28 जून को बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। अभियान को सफल बनाने के लिए 28,791 टीमें तथा 57,000 से अधिक स्वास्थ्यकर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन और स्वयंसेवक तैनात किए गए हैं। बूथ दिवस के बाद 29 एवं 30 जून को स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर उन बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाएंगी जो किसी कारणवश बूथ तक नहीं पहुंच सके। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म आरजू का गीत।

0: इन्हीं स्थानीय समाचारों और पुराने फिल्मी गीतों के साथ कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा का आज का अंक समाप्त होता है। कार्यक्रम में अपने रेडियो साथी गोपेश को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
1: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।
0: यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार प्रभात, उसके पश्चात मॉर्निंग न्यूज। हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रपति दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया।
1: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के अंतर्गत युद्धपोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और तरक्की को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में योगदान देना

0: जारी रहेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत भारत मॉरिशस मजबूत रणनीतिक साझेदारी के महत्व और ग्लोबल साउथ के लिए साझा प्रतिबद्धता पर सहमति प्रकट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।
1: सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी से मिले इस सम्मान से टिकाऊ विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय से जारी प्रयास और उनके ग्रीन विजन को मान्यता मिली है। यह सम्मान टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को मिले ऐसे ही कई सम्मानों की कड़ी में एक और उपलब्धि है। इनमें खाद्य और कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शामिल है। इस सम्मान से पता चलता है कि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, पर्यावरण संबंधी कार्यों, टिकाऊ विकास के प्रयासों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अत्यधिक महत्व देता है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
2: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। इस दौरान एथेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय और ग्रीक उद्योग जगत के नेताओं के साथ बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रक्षा, खाद्य और कृषि जैसे विषयों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पदक प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता अलंकरण प्रदान करेंगे। ये अलंकरण असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पदक प्रदान किए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चों के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये कार्यक्रम जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए घर और समुदाय में ही स्वास्थ्य सेवाएं देगा। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और मनसुख मांडविया तथा राज्य सरकार के कई मंत्री और विभिन्न देशों के राजनयिक हिस्सा लेंगे।
3: 150 से अधिक विशेषज्ञ और जापान, सिंगापुर, UAE, यूक्रेन और रवांडा जैसे भागीदार देशों के प्रतिनिधि मध्य गुजरात के आर्थिक विकास पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में आयोजित भव्य प्रदर्शनी के 150 से अधिक स्टॉल, स्थानीय MSME, उन्नत तकनीकी स्टार्टअप और अमूल एवं GFSC जैसे बड़े उद्यमों की क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
0: महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राज्यीय परीक्षा रैकेट शामिल 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
4: जांच अधिकारियों ने लीक हुए प्रश्न पत्र के स्रोत का पता लगाने, वित्तीय लेन देन की जांच करने, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बेचे जाने की छानबीन कराने तथा इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान कराने के लिए 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी।

0: टीईटी परीक्षा जो रविवार 28 जून को आयोजित होने वाली थी, भिवंडी पुलिस द्वारा परीक्षा से एक दिन पहले पेपर लीक का भंडाफोड़ किए जाने के बाद स्थगित कर दी गई। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी ने दवाओं, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप के मामलों में तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉक्टर वत्सल अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उपलेखा नियंत्रक नीरज चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। उड़ीसा की पूरी तीर्थ नगरी में आज सवेरे श्री जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान यात्रा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र स्नान उत्सव है।
2: सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भाई बहन देवताओं को गर्भगृह से औपचारिक रूप से स्नान वेदी तक ले जाया गया। वहां वैदिक मंत्रों के उच्चारण, शंख की ध्वनि और भक्ति संगीत के बीच पवित्र जल के 108 घड़ों से उनका स्नान कराया जाएगा। देव स्नान पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मनाया जाने वाला यह त्योहार वार्षिक रथ यात्रा से पहले देवताओं के सार्वजनिक दर्शन का मौका होता है। उत्सव को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बढ़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है।
3: धेमाजी जिला प्रशासन ने तत्काल जन सुरक्षा परामर्श जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि अवरुद्ध जल अचानक नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नदी तटों, नालों, अर्द्रभूमियों, तटबंधों तथा अन्य निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सरकारी निर्देशों और आधिकारिक सूचनाओं पर लगातार नजर रखने, स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने तथा आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बीच पहाड़ी क्षेत्रों से आए तेज बहाव के पानी ने जिले के जोनाइको डिस्ट्रिक्ट के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं दिल्ली, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल तक लू की स्थिति बनी रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉक्टर रजनीश भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112371717 और 0112334444। खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न कर लिया है। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। उधर आयरलैंड ने दूसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा से जुड़ा समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्द दिए हैं, हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना लक्ष्य। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने सेशल्स में कहा, समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में छापेमारी का समाचार भी कई समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, आरोपियों के ठिकानों से संपत्ति के दस्तावेज जब्त। दैनिक जागरण के शब्द हैं, 6 आरोपियों के साथ ठिकानों पर छापेमारी। आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से आभूषण और नकदी बरामद। राजधानी दिल्ली में दोपहर में 51 डिग्री

0: वाली तपिश जून में पहली बार लू, कल और परसों आंधी बारिश का येलो अलर्ट, 2 जुलाई से गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद, नव भारत टाइम्स की खबर है। देशबंधु ने बढ़ते तापमान और कम बर्फबारी का समाचार प्रकाशित किया है। गर्मी की मार से तेजी से पिघल रहा हिमलिंग, अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और प्रशासन की बढ़ी चिंता, हिंदुस्तान ने मानसून में देरी पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, समस्या बढ़ाएगा कमजोर मानसून। पत्र लिखता है, भारत में चावल का पर्याप्त सरकारी भंडार है और वो मुख्य खरीफ फसल में कमी को पूरा कर सकता है, अलबत्ता दलहन और तिलहन पर अलनीनो का असर पड़ेगा। लोकसत्य ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से मची तबाही के समाचार सचित्र दिए हैं। पत्र लिखता है, 1500 से अधिक विदेशी बचाव कर्मी पहुंचे, चारों ओर नजर आ रहा तबाही का मंजर। ईरान का ऐलान, अगले 30 दिन होर्मुज पर हमारा कब्जा, बहरीन कुवैत पर फिर हमला। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेताया, ईरान नहीं सुधरा तो वजूद मिटा देंगे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका ने अनोखा फार्मूला शीर्षक से नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के विशेषज्ञों की अपील से जुड़ा समाचार दिया है। पत्र लिखता है, माँ के लिए चाय की प्याली हो, बच्चे की सेहत की रखवाली भी हो, माँ को चाय में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 देने का सुझाव, अपंगता की बीमारी से बच सकेंगे नवजात।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Akashwani presents Morning News. Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi attends Seychelles National Day celebrations as guest of honor. Also holds talks with his Mauritius counterpart Naveen Chandra Ramgulam. United States and Iran agree to halt counter-strikes and resume talks in Qatar's capital, Doha, tomorrow. President Draupadi Murmu to present gallantry awards at Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan today. IMD issues red alert for very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in hockey, India beat England 3-2 in penalty shootout to finish FIH Pro League campaign on a winning note. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi attended the National Day celebrations marking the 50th anniversary of the independence of Seychelles. Mr. Modi attended the celebrations as the guest of honour, becoming the first Indian Prime Minister to be accorded this honour. More from our correspondent.
3: An Indian marching contingent comprising Navy and Army teams participated in the parade. An Indian naval band also formed part of the Indian marching unit, underlining the close and special India-Seychelles partnership. In a special gesture, INS Tarkash and INS Ikshak were docked at Port Victoria, highlighting India's long-standing friendship with Seychelles. PM Modi conveyed India's warm wishes to the people of Seychelles on this historic occasion. Mr. Modi arrived in Seychelles on Saturday at the invitation of the President of Seychelles, Patrick Hermini, External Affairs Minister S. Jaishankar, National Security Advisor Ajit Doval, and Prime Minister of Mauritius Naveen Chandra Ramgulam were also present at the event. According to the Ministry of External Affairs, India and Seychelles share a long-standing partnership rooted in shared historical, cultural, and people-to-people ties. As a key maritime neighbor in the Indian Ocean region, Seychelles holds a special place in India's vision Mahasagar, mutual and holistic advancement for security and growth across regions, and a commitment to the Global South. The MEA said Mr. Modi's visit will reaffirm the strong and enduring friendship between India and Seychelles and reinforce the shared commitment of both countries to enhance the bilateral relationship across all sectors. Ashish Abraham, Akashwani News, Delhi.
2: Prime Minister Modi was conferred

0: स्थानीय गतिविधियों की स्थल रिकॉर्डिंग और विविधा के विविध रंगों से सजी परिक्रमा की आज की कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अंजनी। आज के अंक में बनाएंगे नशा मुक्त समाज, नवा बिहान कार्यक्रम की है परिकल्पना। बरसात में रखें स्वास्थ्य का ख्याल, स्वच्छता से ही रहेंगे स्वस्थ। आज है कबीर जयंती, होंगे विविध आयोजन। श्रोताओं, नवा बिहान मिशन के अंतर्गत सभी कार्यकर्ताओं की पिछले दिनों एक बड़ी बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में सभी लोगों ने समाज को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया। इस बैठक में सरगुजा पुलिस के साथ नगर की अनेक सामाजिक संस्थाओं के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सभी ने इस बात की शपथ ली कि अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से गांव-गांव में जाकर जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से नशा मुक्ति पर केंद्रित कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। कार्यक्रम में आए छत्तीसगढ़ प्रचार एवं विकास संस्थान के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता श्री अनिल मिश्र ने हमें बताया।
1: नमस्कार साथियों, मेरा नाम अनिल कुमार मिश्रा है। मैं नवा बिहान का संयोजक और सचिव छत्तीसगढ़ प्रचार एवं विकास संस्थान। गत सप्ताह हम सभी लोगों ने सरगुजा ज़िले के सभी सामाजिक संस्थाओं के साथियों ने मिलकर एक नया प्रयास हम लोगों ने पुलिस विभाग के साथ की शुरुआत की है और इस शुरुआत का मूल उद्देश्य है कि हम सरगुजा ज़िले को नशा मुक्त करने का संकल्प लिए हैं और इसमें पुलिस विभाग और ज़िला प्रशासन पूरी तरह से हमको सहयोग कर रहा है। मुख्य रूप से इसमें जो हमारा उद्देश्य ये है कि ऐसे पीड़ित और ऐसे जो साथी हैं जो नशा करते हैं उनको कैसे एकल परामर्श और परिवार परामर्श के माध्यम से कैसे उनको सही धारा पे, मुख्य धारा पे लाया जा सके, इसके लिए हम लोगों को पुलिस विभाग में थानों के माध्यम से जो हितग्राही यहाँ पे आ रहे हैं उन हितग्राहियों को हम लोग व्यक्तिगत रूप से काउंसलिंग करेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस विभाग के द्वारा हम लोगों को एक परामर्श केंद्र यातायात चौकी के ऊपर प्राप्त हुआ है जिसमें हमको सभी सुविधाएं पुलिस विभाग के द्वारा मुहैया कराई गई हैं। इसका मूल उद्देश्य यह है कि हम सभी वहां पे एक एक प्रतिदिन एक एक दो दो कार्यकर्ता वहां पे बैठते हैं और थानों के माध्यम से जो भी नशा करने वाले साथी वहां पहुंच रहे हैं थानों के माध्यम से उन

0: साथियों को हम लोग परामर्श देने के साथ साथ उनको स्वास्थ्यगत सेवाएं और उनके लिए लीगल कानूनी सलाह भी उनको वहाँ पे मुहैया कराई जा रही है। प्रतिदिन 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक वहाँ पे सभी साथी वहाँ पहुँचते हैं और बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे काम हो रहा है। उसका सभी रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन सब वहाँ पे रखा जा रहा है, इससे लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है।
1: श्रोताओं, बारिश के दिनों में अक्सर हम देखते हैं कि मौसमी बीमारियों का प्रकोप काफ़ी बढ़ जाता है। जल स्रोतों के प्रदूषित होने के कारण लोग उल्टी दस्त जैसी बीमारियों की चपेट में आसानी से आ जाते हैं। इसके अलावे वायरल बुखार से भी पीड़ित लोगों की संख्या इन दिनों काफ़ी बढ़ जाती है। हमें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना अति आवश्यक है। कैसे रखें बरसात के दिनों में अपना ख्याल, डॉक्टर अभिजीत त्रिपाठी कहते हैं।
2: जी नमस्कार। देखिए, बरसात की वजह से पानी काफी गंदा हो जाता है, जिसके कारण पानी से उपजित बीमारियां होने की संभावनाएं रहती हैं। जैसे गंदे पानी से आपको डायरिया होगा, वोमिटिंग होगी, जो टाइफाइड हो सकता है, गंदे पानी में मच्छर पनपेंगे तो उससे मलेरिया, डेंगू, ये सारे बीमारियों की होने की संभावनाएं बढ़ जाती है।
1: डॉक्टर साहब, बरसात के दिनों में ही ये बीमारियां क्यों होती हैं? जैसे कि जो उल्टी दस्त है वो ज्यादातर हम देखते हैं कि बरसात
2: की वजह से क्या होता है कि जैसे जमीन से मिला हुआ पानी, वो ऊपर का पानी जो है वो जमीन पे रिसता हुआ नीचे ग्राउंड वाटर से मिक्स हो जाता है
1: जी,
2: जिसमें कई सारे कीटाणु भी होते हैं और वो रहते हैं।
1: मतलब
2: तो उससे कई सारी बीमारियों के होने की, अगर हम स्वच्छ पानी ना पिए तो बीमारियां बढ़ने की संभावनाएं बढ़े रहती है।
1: जैसे कि गांवों में जो जल स्रोत हैं वो बहता हुआ पानी उस जल स्रोत को प्रदूषित कर देता है और उसे हम पी लेते हैं तो बीमारियों के शिकार हो जाते हैं।
2: जी बिल्कुल।
1: डॉक्टर साहब, गांवों में हम देखते हैं, गांवों में ही नहीं शहरी क्षेत्रों में भी हम देखते हैं कि जल स्रोतों के प्रदूषण की समस्या बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि जब हम पानी पीते हैं तो सीधे उसे पी लेते हैं और इन बीमारियों के चपेट में आ जाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से उपाय हो सकते हैं जिससे कि हम पानी के प्रदूषण से बच सकें?
2: जैसे बरसात के मौसम में सबसे बेहतर और घरेलू उपाय तो ये है कि आप पानी को हल्का गर्म करके पिए
1: जी,
2: जिससे उससे कई सारे कीटाणु खत्म हो जाए। पानी में जो हार्डनेस जो उत्पन्न हो जाती है बारिश की वजह से, वो क्लोरिनेशन के कारण वो क्लोरीन भी खत्म हो
1: जी।
2: गर्म करके पीना ज्यादा बेहतर है
1: जी। जी,
2: आरओ का पानी पिए या अपने घर का ही पानी पिए।
1: डॉक्टर साहब, शहरी क्षेत्रों में तो ये सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में हम ज्यादातर देखते हैं कि लोगों की निर्भरता हैंडपंप या कुओं पर होती है। तो वहां पर हम पानी को कैसे साफ कर सकते हैं, पीने लायक बना सकते हैं?
2: वहां पानी के लिए यही किया जा सकता है कि उसे गर्म करके ठंडा करके पिए, क्योंकि मौसम बारिश का है, गर्मी का है, तो इसमें उमस बढ़ता है। तो एकदम गर्म पानी तो नहीं पिया जा सकता, लेकिन गर्म पानी को ठंडा करके पीने से ये परेशानी से मुक्ति मिलेगी।
1: मतलब ये करें कि पहले पानी को गर्म कर लें और उसके बाद उसको ठंडा करने के लिए छोड़ दें और फिर उसको पीने के उपयोग में लाया जाए
2: जी।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर हम ये देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों से लौटने के बाद, शौच से लौटने के बाद सामान्य तौर पर लोग मिट्टी से हाथ धो लेते हैं, साबुन का उपयोग कम करते हैं, तो ये कितना नुकसानदायक हो सकता है?
2: देखिए, साबुन से हाथ धोने से ये है कि आपका एक प्रॉपर एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल उसमें रहता है, जिससे एंटीसेप्टिक रहता है, जिससे आपके हाथों की सफाई ढंग से होगी
1: जी।
2: अगर आप मिट्टी से धोएंगे तो उससे सफाई नहीं होगी, और जो भी हम जैसे शौच के बाद अपना हाथ गंदा किए हैं तो वो गंदगी हमारे हाथों से आगे की तरह आगे बढ़ते जाएगी, और हम पानी छुएंगे वो पानी से और घर परिवार वाले लोगों के बीच भी फैल सकती है
1: जी।
2: तो साबुन, अच्छे साबुन से हाथ धोना बहुत जरूरी है।
1: तो आपका क्या सुझाव है, हमारे साथी सुन रहे हैं, वे किन किन स्वच्छता के मानकों का प्रयोग करें जिससे कि वो ये उल्टी दस्त जैसी बीमारियों से बच सकते हैं?
2: इनसे बचने के लिए सबसे अच्छा ये है कि एकदम स्वच्छ पानी पिए, गर्म करके पिए, बाहर का खाने पीने में परहेज करें, घर का खाएं, स्वच्छ खाएं।
1: डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दी आपने, किस तरह से हमें बरसात के दिनों में रहना चाहिए, कैसे पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, कैसा भोजन करना चाहिए, और इसके बाद भी अगर हम रोग की चपेट में आ जाते हैं तो चिकित्सक से हमें तत्काल सलाह लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने हमसे बातचीत की, अपने बहुमूल्य समय में से आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए।

0: जी हां, प्रेम का संदेश देने वाले संत कबीर की आज जयंती है। यह पर्व हर साल हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन कबीर पंथी भजन कीर्तन सत्संग और प्रभात फेरी जैसे आयोजनों के माध्यम से उनके दोहों और शिक्षाओं को याद करते हैं। संत कबीर भक्ति काल के एक महान रहस्यवादी कवि, समाज सुधारक और संत थे। उनकी रचनाओं ने भक्ति आंदोलन को गहराई से प्रभावित किया है। उनकी रचनाएं आज भी प्रासंगिक हैं। कबीर भगवान के निराकार स्वरूप को मानते थे। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की कुरीतियों पर प्रहार किया और दोनों को एक होने का संदेश दिया। उन्होंने जाति पाति, छुआछूत, मूर्ति पूजा और बाहरी आडंबरों का कड़ा विरोध किया। संत कबीर को याद करते हुए लोग कहते हैं,
1: यह एक सुखद संयोग है कि बंग भाषा के महान साहित्यकार आचार्य क्षितिमोहन सेन ने कबीर वाणी का संकलन तैयार किया। बंग भाषा के कवि, उन्होंने कबीर वाणी का संकलन तैयार किया। और इससे भी आश्चर्यजनक पहलू यह है कि उस संकलन को रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। यह कबीरदास की महानता का बहुत बड़ा मानदंड है कि महान साहित्यकार आचार्य क्षितिमोहन सेन ने कबीर वाणी का संकलन तैयार किया। इससे भी आश्चर्यजनक सुखद पहलू यह है कि उस संकलन से महाकवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर अत्यंत प्रभावित हुए और उन पदों का श्री ठाकुर ने अंग्रेजी अनुवाद किया। उसका सुखद परिणाम यह हुआ कि पाश्चात्य विद्वानों का ध्यान भी भारतीय साधना और संस्कृत की ओर आकृष्ट हुआ, तथा जो पाश्चात्य विद्वानों के मन मस्तिष्क में भारतीय संस्कृत के प्रति उपेक्षा भाव था, कुछ सीमा तक उसका निराकरण हुआ। यहाँ यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि सेन ने संकलन में मौखिक प्रचलित कथनों को विशेष महत्व दिया, लिखित को इस कारण से महत्व नहीं दिया कि वहाँ पाठांतर बहुत मिलता था।
2: संत कबीरदास जी, उन्होंने कहा है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते तो चाकी भली पीस खाए संसार। उन्होंने कहा कि अगर पत्थर की पूजा करने से भगवान मिल जाए तो मैं बहुत बड़े आकार पहाड़ की पूजा क्यों ना करूं। इससे तो चक्की अच्छी है, जिसका पिसा हुआ सारे संसार के लोग खाते हैं, उधर पोषण करते हैं।

चार दोहे कबीर पर अभी ताजे लिखे हूँ। खरी खरी जो कह गए चला वचन के तीर, जग जिनका वंदन करे वे थे संत कबीर। खरी खरी जो कह गए चला वचन के तीर, जग जिनका वंदन करे वे थे संत कबीर। तो आसमान की भांति था जिनका ज्ञान अनंत,

की रहमान। हाँ कबीर की दृष्टि में मानव एक समान, हो हिंदू या मुसलमान, राम हो कि रहमान। सहा नहीं पाखंड को, सहा नहीं पाखंड को अधर्म अत्याचार, सहा नहीं पाखंड को।

तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की परिक्रमा, जिसमें वाचन स्वर था अंजनी कुमार पांडे का। और अब लीजिए पेश है ज्ञान और मनोरंजन के विविध रंगों से सजी हमारी आज की विविधा।

विविधा कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। श्रोताओं, आप सभी जानते ही हैं कि इन दिनों हम आकाशवाणी अंबिकापुर की स्थापना का स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहे हैं और इस संबंध में हमने विविधा में एक नया क्रम शुरू किया है जिसका नाम है स्वर्ण जयंती यात्रा के सहयात्री। इस कार्यक्रम में हम ऐसे व्यक्तियों से बातचीत कर रहे हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आकाशवाणी अंबिकापुर को अपना सहयोग दिया है। प्रसारक के रूप में, लेखक के रूप में, कवि के रूप में, श्रोता के रूप में जो हमारे विशिष्ट साथी रहे हैं उन सब से हम बातचीत कर रहे हैं, जिस तरह संभव हो पाता है फोन से या स्टूडियो में बुलाकर। हमें बहुत खुशी होती है इस अवसर पर अपने साथियों से बातचीत करके। इसी क्रम में आज एक साथी हमारे स्टूडियो में पधारे हुए हैं। आप सभी अक्सर इनका नाम रेडियो पर सुनते होंगे और आप हैं श्री अजय कुमार चतुर्वेदी। श्रोताओं, मैं आपको याद दिला दूं कि सरगुजा के लोकवाद्य यंत्रों पर इनका बहुत महत्वपूर्ण काम है, साथ ही सरगुजा अंचल के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं उन्हें जानने और समझने के लिए आपने बहुत मेहनत किया, उनके जीवन वृत्त पर आपने कई शोध कार्य किए। साथ ही एक बहुत हर्ष की बात है कि आपको सन 2025 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से पद्मलाल पूनालाल बख्शी स्मृति सम्मान भी प्राप्त हुआ है, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए। बहुत खुशी की बात है कि अजय जी हमारे साथ स्टूडियो में एक बार फिर मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। कार्यक्रम का नाम है स्वर्ण जयंती यात्रा के सहयात्री और आज के हमारे सहयात्री हैं अजय कुमार चतुर्वेदी।

0: अजय जी, स्वागत है आपका स्टूडियो में। और आज हमारे आप एक मेहमान के रूप में हैं और आज हम आपसे बातचीत करेंगे। पहला सवाल हमारा यही है, कहाँ से प्रेरणा मिलती है आपको इस तरह के काम करने की?
1: आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि मुझे कहाँ से प्रेरणा मिलती है। मैं आपको बता दूं कि मैं ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। जब मैं गाँव में घूमता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि यहाँ के ग्रामीण आदिवासी भाई कितने मनोहारी ढंग से देवी की उपासना करते हैं, देवी गीतों के साथ, पारंपरिक लोकवाद्यों के साथ। और इनके एक से एक पारंपरिक लोकवाद्य जिसके नाम भी सुनने देखने को नहीं मिलते हैं
0: जी,
1: इनका ये प्रयोग करते हुए देवी उपासना करते हैं। तो मुझे लगा कि इन वाद्य यंत्रों को, इनकी आवाज़ को, इनकी गीतों को संजोने का कोई काम यदि कर सकता है तो आकाशवाणी ही कर सकता है
0: जी।
1: इसलिए मैंने देवी दर्शन के नाम पे या सरगुजा अंचल के जो देवी स्थल हैं या यहाँ की जो देवी लोकगीत हैं उनको संकलित करके रूपक के रूप में, वार्ता के रूप में आकाशवाणी अंबिकापुर के लिए दिया, जिसमें प्रसारित किया गया। आज जब चाहे तब श्रोता बंधु आसानी से उन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं और ये जीवित रूप में वो हमेशा बना रहेगा।
0: अब आते हैं हम मूल विषय पर। अजय जी, बातचीत में आपने बताया कि आकाशवाणी अंबिकापुर से जुड़े हुए आपको लगभग 30 साल हो गए हैं, तो 30 साल पहले जा करके आप जरा हमारे श्रोताओं को बताइए कि वो कौन सा दिन था, कौन सी मनः स्थिति थी, क्या परिस्थितियां थीं, क्या

0: से आप आकाशवाणी अंबिकापुर से जुड़ गए, जबकि आप प्रतापपुर विकास खंड के बैकोना गांव से, वहां से निकल करके आप आकाशवाणी से जुड़े और आज पद्मलाल पूनालाल बख्शी पुरस्कार प्राप्त किए हैं आप, तो वो सफर कैसा रहा जरा बताएं।
1: आकाशवाणी अंबिकापुर से जुड़ने की बात है, कि मैं यहाँ जुड़ने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली, मैंने कैसे पहुँचा यहाँ तक। तो इसमें मैं बता दूँ आपको कि मैं रेडियो सुना करता था, उन दिनों की बात है 1994 की, जब मैं 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद शिक्षक के पद पर कार्य ग्रहण किया था अशासकीय विद्यालय में, और आज मैं शासकीय विद्यालय में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। तो जब मैं रेडियो सुनता था तो मुझे भी लगता था कि मैं भी रेडियो से बोलता, मेरी आवाज़ लोग सुनते, मैं अपनी आवाज़ को सुनता कि मेरी आवाज़ कैसी सुनाती है। तो मैं कविताएं लिखता था, कहानी लिखता था, वार्ता लिखता था। मुझे लगा कि अब मैं रेडियो के लिए दूं, तो 2-4-5 कविताएं लिख करके मैं आकाशवाणी केंद्र अंबिकापुर पहुंच गया और आके यहाँ पे दिखाया डायरेक्टर महोदय को, वो देखे पढ़े, उनको कविताएं अच्छी लगी और सहमति दिए। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि 12 दिसंबर 1994 में मेरी पहली कविता आकाशवाणी से बजी थी।
0: क्या बात है, आपको ये दिन भी याद है।
1: जी, और वो कविता थी माँ की ममता, जिसे सुन के मैं काफी गौरवान्वित हुआ कि आज मेरी आवाज भी रेडियो में आने लगी। तो इस तरह से मेरी जुड़ाव जो हुआ रेडियो से, यहीं से हुआ था 1994 से।
0: जी, 30 साल का लंबा अनुभव है आपको, एक 12वीं पास किया हुआ नौजवान आकाशवाणी अंबिकापुर से अपनी कविताएं लेकर जुड़ता है और फिर बहुत आगे तक जाता है। बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रमों में आपने आलेख लिखा, कई धारावाहिक आपने लिख करके आकाशवाणी अंबिकापुर को दिए। ज़रा उस यात्रा पर प्रकाश डालें और बताएं कि आपके दिल के नज़दीक आपने किस कार्यक्रम को बड़े मनोयोग से बनाया।
1: जैसे मैं प्रारंभ में ही बताया कि जब मैं ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हूँ और ग्रामीण क्षेत्रों में मैं आदिवासियों के जो लोक वाद्य यंत्र हैं, लोकगीत हैं, उन्हें सुनता देखता था, तो मुझे लगता था कि इनको बचाए रखना चाहिए। तो बस उसी सिलसिले पे मैं काम चालू किया और वाद्य यंत्रों को ढूंढने का काम चालू किया। मैं जब ढूंढना चालू किया तो आज मैं ढूंढते लगभग 70 लोक वाद्य यंत्र खोज चुका हूँ, जो विलुप्त हो गए या तो विलुप्त होने के कगार पे हैं। उनकी आवाज़ को मैं जीवित किया, मरम्मत कराया और उन पे आकाशवाणी अंबिकापुर के लिए धारावाहिक रूपक का निर्माण किया, जिसे यहाँ से बजाया गया। श्रोताओं ने काफ़ी उसे पसंद किया और मैं बताऊं कि आज वो एक बहुत ही बड़ा उपलब्धि है कि हमारी जो सरगुजा की आवाज़ है वो जीवित है और रेडियो में एक धरोहर के रूप में संरक्षित की गई है। एक तो ये बहुत बड़ा कार्यक्रम था, जिसको कि मैं सोचता हूँ कि कम से कम कई बार यहाँ से रिपीट किया जा चुका है, बनाया जा चुका है, बजाया जा चुका है। दूसरा मैं बता दूं कि यहाँ की जो जनजातियाँ हैं, उनकी बोलियों पे, उनकी गीतों पे, उनकी संस्कृति पे, जैसे बताऊँ कोरवा जनजाति के ऊपर रेडियो के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बना था, उस पर मैं धारावाहिक 7 कड़ियाँ बनाया था। इसी तरह से एक और अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम जब चल रहा था, तो उसमें ऐसे सेनानियों की खोज की जा रही थी जिन्होंने कहीं भी प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, ज्ञात अज्ञात रूप में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनको ढूंढा जाए। मैं भी ढूंढने का काम चालू किया। मैं आपको बता दूं कि मुझे सहयोग इस काम में गजेटीय सरगुजा या किन्हीं लोगों से जानकारी मिलने के बाद मैं अपने सरगुजा संभाग के 6 जिले के अंतर्गत 40 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के
0: पहचान किया
1: और उनके परिवार से मिल करके उनकी जीवन गाथा को लिखा। जीवन गाथा को लिखने के बाद आकाशवाणी अंबिकापुर से उस पे कार्यक्रम बजे, रूपक बजे, वार्ता बजे। इसके बाद वहीं से प्रेरणा मिली तो फिर मैं उन्हीं के जीवन गाथा को लेकर के सरगुजा अंचल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की जीवन गाथा पे पुस्तक भी लिखा, जो प्रकाशन भी हो चुका है।
0: जी, कुल मिला के कहें तो रचनाशीलता जो है वो प्रारंभ से ही आपके भीतर कूट कूट के भरी रही और इस तरह से आप रेडियो के साथ ही हमेशा, ये कहें कि कार्यक्रम का जो नाम है स्वर्ण जयंती यात्रा के सहयात्री, तो आप एक सजग सहयात्री बने रहे। अजय जी, आकाशवाणी अंबिकापुर की स्थापना के 50

0: 50 साल होने को हैं, जिसमें आधे से अधिक समय के साक्षी आप रहे हैं। पिछले 30 सालों से आप आकाशवाणी अंबिकापुर से जुड़े हैं। कैसी रही है ये यात्रा और आसपास के श्रोताओं पर, अंचल पर आकाशवाणी अंबिकापुर का क्या प्रभाव रहा है, कैसा मूल्यांकन करते हैं आप?
1: देखिए, मैं अपने हिसाब से बताऊं कि मूल्यांकन करने की बात है
0: जी,
1: तो आकाशवाणी अंबिकापुर शिक्षा के क्षेत्र में या यहाँ के जो स्थानीय लोक कलाकार हैं उनको आगे बढ़ाने के क्षेत्र में, ग्रामीण अंचल के जो लोक कलाकार हैं उनको कहीं आगे प्रोग्राम देने का या जाने का मौका नहीं मिलता है, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मंच है आकाशवाणी अंबिकापुर। वे अपनी कला को यहीं से आगे बढ़ा रहे हैं। एक अनुगूंज बजता था, भोपाल से प्रसारण होता था, मेरे को अच्छी तरह से याद है। मैं अनुगूंज के लिए 2-3 आलेख भी लिखा था। उसी तरह से इंद्रधनुष एक कार्यक्रम यहाँ से बजता था, आज भी
0: युवाणी में
1: आज भी बजाया जा रहा है। उन प्रश्नों को सुन करके मैं सोचता हूँ कि जो प्रतियोगी छात्र हैं उनके लिए भी मैंने काफ़ी लाभदायक होता है
0: जी।
1: तो कुल मिला के मैं ये बोलूँ कि आकाशवाणी जो कार्यक्रम हैं वे स्थानीय लोगों के या ग्रामीण अंचल के जहाँ पे पहुँच विहीन है, कोई शिक्षा या कलाकारों को आगे बढ़ने का मौका नहीं है, उनके लिए एक सशक्त माध्यम है और सुन करके इसे लाभ ले रहे हैं। और दूसरी बात बताऊँ, हमारा जो भारत है कृषि प्रधान देश है
0: जी,
1: और छत्तीसगढ़ में किसान बहुत ज़्यादा हैं, खेती बाड़ी का भी यहाँ पे रहता है, तो चौपाल कार्यक्रम यहाँ से बजता है। चौपाल में मैं सुनता हूँ कि गाँव के लोग चिट्ठी लिख भेजते हैं कि हमारे गेहूं में, हमारे धान में, हमारे उड़द में ये बीमारी लग गया है, इसका इलाज कैसे करें। यहाँ के जो विशेषज्ञ होते हैं बड़े ही अच्छे ढंग से जवाब देते हैं और ग्रामीण लोग उसका प्रयोग करते हैं और प्रयोग करके वो सफल भी हो रहे हैं। और अगले दिन कार्यक्रम में बताते भी हैं पत्र लिख करके कि मेरे जो गेहूँ में बीमारी लगा था और आकाशवाणी सुनने के बाद मैं उस बीमारी को दूर कर लिया। तो मैं कुल मिला के बोलूँ कि सभी क्षेत्रों में आकाशवाणी का महत्वपूर्ण योगदान है और इसके बिना तो एक अधूरा सा लगता है।
0: अजय जी, बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म अब काम कर रहे हैं, लोगों के हाथ में इंटरनेट है और आकाशवाणी ने भी समय समय पर अपने आप को अपडेट किया है और आज आकाशवाणी अंबिकापुर को आप न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। तो आपको क्या लगता है किस तरह की चुनौतियाँ आज आकाशवाणी के सामने है?
1: चुनौती की बात कहें तो मैं तो नहीं मानता चुनौती
0: जी,
1: इसलिए नहीं मानता हूँ कि रेडियो अपने जगह पे एक स्थापित यंत्र है
0: जी।
1: गांव के पहाड़ी क्षेत्रों में, सुदूर अंचल में ये मोबाइल हुआ या जो नेट से चलने वाले यंत्र हैं वो काम नहीं करेंगे
0: जी,
1: लाइट नहीं है तो काम नहीं करेंगे,
0: नहीं करेंगे।
1: पर रेडियो एक ऐसा मतलब उपकरण है जिससे न नेट की आवश्यकता है न लाइट की आवश्यकता है, बैटरी के माध्यम से श्रोता बड़े ढंग से सारे कार्यक्रमों को सुन सकता है। और मीडिया की बात कर रहे हैं तो मतलब या अन्य जो आधुनिक उपकरण की, तो उसका यह भी टक्कर देने लगा है। न्यूज ऑन AIR भी ऐप लागू हो गया है जिससे आज मोबाइल में बड़ी आसानी से सुन रहे हैं श्रोता।
0: अब तो आप इस ऐप को मोबाइल पर डाउनलोड कर लीजिए और आकाशवाणी के सारे कार्यक्रम आप सुनिए और बड़े साफ प्रसारण और गुणवत्ता युक्त प्रसारण आप सुन सके।
1: हाँ बिल्कुल, रेडियो पहले जब ये मतलब नहीं था ऐप तो रेडियो में कहीं पे खरखराहट, सरसराहट या स्टेशन न पकड़ने की समस्या होती थी, लेकिन आज वो समस्या दूर है। मोबाइल में इतने क्लियर आवाज आते हैं कि लगता ही नहीं है कि हम स्टूडियो में बैठ के सुन रहे हैं या गांव में अपने मोबाइल से सुन रहे हैं।
0: अजय जी, एक अंतिम सवाल, समय की अपनी मर्यादा है, सीमा है, कैसा लग रहा है आज आप आकाशवाणी अंबिकापुर की जो स्वर्ण जयंती यात्रा है उसके सहयात्री के रूप में स्टूडियो में बैठे हैं और बातचीत कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको?
1: मैं आपको बताऊं कि आज मैं जिस मुकाम पे पहुंचा हूं
0: जी,
1: जैसे आपने पहले बताया कि पद्मलाल पूनालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार मुझे मिला है
0: जी,
1: तो आज कहीं ना कहीं इस पुरस्कार को पाने के पीछे आकाशवाणी अंबिकापुर का बहुत बड़ा योगदान है। मेरी रचनाएं जो मैं लिखता था उसे प्रसारित करना, लोगों तक पहुंचाना या एक प्लेटफार्म देना आकाशवाणी अंबिकापुर का ही काम था। बाद में मैं अपने प्रिंट मीडिया में गया, लेकिन पहले तो मुझे रेडियो ने ही एक प्लेटफार्म दिया जो मैं इस पुरस्कार को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में हासिल कर पाया हूँ।
0: अजय जी, हमारी शुभकामनाएं, इसी तरह आप आगे बढ़ते रहिए और भी सम्मान हासिल करते रहिए। आप स्टूडियो में आए, हमें समय दिया आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अभी धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, ये थे अजय कुमार चतुर्वेदी जी। छत्तीसगढ़ शासन से आपने पद्मलाल पूनालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार प्राप्त किया है सन 2025 के लिए। इनसे बातचीत कर रहा था मैं, आपका दोस्त अंजनी कुमार पांडे। इसी के साथ कार्यक्रम स्वर्ण जयंती यात्रा के सहयात्री से यही अनुमति दें। नमस्कार।

तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की परिक्रमा विविधा, जिसमें वाचन स्वर था अंजनी कुमार पांडेय का और प्रस्तुति थी प्रमेंद्र कुमार की। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर लिख भेजिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे स्थानीय गतिविधियों की स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा। प्रस्तुतकर्ता थे प्रमेंद्र कुमार। वाचन एवं प्रस्तुति सहयोग था अंजनी कुमार पांडे का। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन।

कार्यक्रम गुंजन के आज के अंक में मैं गोपेश आप सभी सुधी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का कार्यक्रम ऐसे विषयों को समर्पित है जो हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों से गहराई से जुड़े हुए हैं। पहला विषय है अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस और दूसरा है सुरक्षित बैंकिंग। साथियों, एक ओर प्रकृति है जो हमें जीवन, जल, भोजन और संतुलन प्रदान करती है और दूसरी ओर आर्थिक सुरक्षा है जो हमें आत्मविश्वास, सुविधा और स्थिरता देती है। बदलती जीवन शैली और तेजी से बढ़ते तकनीक आज के समय के मुख्य मांग है, परंतु ये दोनों विषय पहले से ही अधिक महत्वपूर्ण थे, लेकिन आज इनका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। आज हम चर्चा करेंगे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण है, बदलते मौसम का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और डिजिटल युग में सुरक्षित बैंक की आदतें क्यों आवश्यक हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की इस गीत से। स्वर हैं लता मंगेशकर के, फिल्म का नाम है रोटी कपड़ा और मकान।

0: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
0: कहाँ?
1: एडमिशन कराने।
3: खाता हुआ एक्टिव।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: श्रोताओं, हर वर्ष 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस उन क्षेत्रों के महत्व को समझने और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है जहां पृथ्वी की सबसे समृद्ध जैव विविधता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पृथ्वी के वे भाग हैं जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित होते हैं। इन क्षेत्रों में विशेष प्रकार की जलवायु, विशेष वनस्पति, कृषि और जीवन की पद्धति विकसित हुई है। भारत का अधिकांश भाग भी इसी क्षेत्र में आता है, इसलिए यहाँ का मौसम, वर्षा, कृषि उत्पादन और प्राकृतिक संतुलन सीधे हमारे जीवन को प्रभावित करता है।

स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गुंजन में एक बार फिर से। साथियों, आज आवश्यकता इस बात की है कि हम पर्यावरण को केवल चर्चा का विषय न माने बल्कि अपनी दिनचर्या में उसे स्थान दें। जल बचाना, पेड़ लगाना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना और प्रकृति के प्रति जिम्मेदार व्यवहार अपनाना समय की आवश्यकता है। हम सभी महसूस कर रहे हैं कि मौसम का स्वरूप धीरे धीरे बदलता दिखाई दे रहा है। कभी गर्मी अधिक महसूस होती है, कभी वर्षा अनियमित हो जाती है और कभी जल संकट जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। विशेषज्ञ बताते हैं कि पर्यावरणीय संतुलन में परिवर्तन के कारण ऐसी परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं। बढ़ती जनसंख्या, संसाधनों का अत्यधिक दोहन और पर्यावरण के प्रति लापरवाही इसके प्रमुख कारणों में माने जाते हैं। साथियों, हमें यह समझना होगा कि प्रकृति हमें केवल संसाधन ही नहीं देती बल्कि जीवन की निरंतरता भी प्रदान करती है। यदि हम आज सावधानी नहीं बरतेंगे तो भविष्य की चुनौतियां और भी गंभीर हो सकती हैं। इसलिए अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखना, जल स्रोतों को सुरक्षित रखना और

पर्यावरण संरक्षण को व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनाना जरूरी है। कार्यक्रम गुंजन को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म खानदान का गीत।

उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। हम अक्सर वर्षा के समय पानी को सामान्य रूप से बह जाने देते हैं, लेकिन यदि उसी जल का संरक्षण किया जाए तो यह आने वाले समय में बड़ी आवश्यकता को पूरा कर सकता है। घर, विद्यालय, कार्यालय और समाज सभी स्तर पर जल संरक्षण की आदत विकसित की जा सकती है। अनावश्यक जल उपयोग रोकना, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना, नदियों और तालाबों की स्वच्छता बनाए रखना और बच्चों को जल का महत्व समझाना ऐसे कदम हैं जो भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। प्रकृति के प्रति सम्मान ही आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में फिल्म गैम्बलर का ये प्यारा सा गीत।

0: चौपाल में नवा कार्यक्रम शुरू हुई सवे रविवार संझा के ठीक 7:30 बजे से।
1: हाँ, फरमाइशी कार्यक्रम हवे, संगी अपन फरमाइश भेजी।

0: बस हमर कार्यक्रम में मेल करी किसानवाणी अंबिकापुर 2026@gmail.com। जुलाई के पहला रविवार से कार्यक्रम शुरू हो ही।
1: चौपाल फरमाइश।
2: मीडिया वेब और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। अभी आप सुन रहे हैं बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन। साथियों, अब कार्यक्रम के दूसरे महत्वपूर्ण विषय की ओर बढ़ते हैं। आज बैंकिंग सेवाएं मोबाइल और इंटरनेट तक पहुंच चुकी हैं। कुछ ही मिनटों में भुगतान, धन हस्तांतरण और कई आर्थिक कार्य संभव हो जाते हैं। लेकिन जितनी सुविधा बढ़ी है, उतनी ही सतर्कता की आवश्यकता भी बढ़ी है। हम सभी को यह याद रखना चाहिए कि बैंक कभी भी फ़ोन पर OTP, पिन, पासवर्ड या गोपनीय जानकारी नहीं मांगता। यदि कोई व्यक्ति स्वयं को बैंक कर्मचारी बताकर जानकारी मांगता है तो तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। आर्थिक सुरक्षा का आधार केवल बैंक नहीं बल्कि हमारी जागरूकता भी है। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म अर्पण का गीत।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। अभी आप सुन रहे हैं बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन। कार्यक्रम में आज हम बातें कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस और सुरक्षित बैंकिंग विषय पर। दोस्तों, आज के समय में कई लोग ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। धोखेबाज कई बार बैंक अधिकारी बनकर नकली संदेश भेजकर या पुरस्कार का प्रलोभन देकर लोगों से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले उसकी सत्यता जांचें। ओटीपी किसी को भी साझा न करें। संदिग्ध कॉल आने पर आधिकारिक माध्यम से जानकारी लें। छोटी छोटी सावधानियां बड़े आर्थिक नुकसान को रोक सकती हैं। कार्यक्रम में बातों का दौर आगे भी जारी रहेगा, उससे पहले आइए सुनते हैं किशोर कुमार और साथियों के स्वरों में फिल्म पलकों की छांव में इस फिल्म का गीत।

0: वो अपनापन, वो भरोसा जो सालों साल आपने दिखाया हम पर,
1: उसे और मजबूत बनाने हम ला रहे हैं FM 100.2 MHz पर अपना प्रसारण।
0: साफ और स्पष्ट आवाज अब और भी बेहतर अंदाज में आपके दिलों तक।
1: तो जुड़िए आकाशवाणी अंबिकापुर से और जोड़िए आपके अपनों को भी।
0: आपका अपना आकाशवाणी अंबिकापुर, मीडिया वेव 1260 किलोहर्ट्ज के साथ अब FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर भी।
2: साथियों, डिजिटल भुगतान ने हमारे जीवन को सरल बनाया है, लेकिन हर सुविधा का उपयोग जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए। भुगतान करने से पहले प्राप्तकर्ता की पुष्टि करें, मोबाइल और बैंकिंग ऐप को अपडेट रखें, सार्वजनिक नेटवर्क पर संवेदनशील लेनदेन से बचें। सुरक्षित डिजिटल व्यवहार आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लता मंगेशकर की आवाज में सुनते हैं ये गीत। इस गीत में लता मंगेशकर का साथ दिया है किशोर कुमार ने। फिल्म का नाम है स्वीकार किया मैंने।

साथियों, आज केवल स्वयं जागरूक होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि परिवार को भी जागरूक बनाना आवश्यक है। बच्चों को डिजिटल अनुशासन और बुजुर्गों को बैंकिंग सुरक्षा के बारे में समय समय पर जानकारी दें। यदि परिवार के सभी सदस्य सतर्क रहेंगे तो धोखाधड़ी की संभावना भी कम हो जाएगी। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में ये नगमा। फिल्म का नाम है मेरा गांव मेरा देश।

साथियों, प्रकृति और प्रगति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक ओर स्वस्थ पर्यावरण जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है और दूसरी ओर सुरक्षित आर्थिक व्यवस्था विकास को स्थिर बनाती है। इसलिए हमें ऐसा जीवन अपनाना होगा जिसमें पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक जागरूकता दोनों साथ चलें। सुनते हैं कार्यक्रम गुंजन का आखिरी गीत फिल्म एक नज़र से। स्वर हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के।

इन्हीं बातों और गीतों के साथ कार्यक्रम गुंजन का आज का अंक समाप्त होता है। कार्यक्रम के आज के अंक से मुझे यानी अपने रेडियो साथी गोपेश को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी रायपुर है, अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने रायपुर में आयोजित आपातकाल स्मृति दिवस समारोह में लोकतंत्र सेनानियों का किया सम्मान। छत्तीसगढ़ में आज से सहकारिता सप्ताह मनाया जाएगा और प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर लगाने वाले उपभोक्ताओं को अतिरिक्त बिजली का लाभ मिलेगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में आयोजित आपातकाल स्मृति दिवस समारोह में लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया। उन्होंने कहा कि सेनानियों का त्याग और संघर्ष नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। मुख्यमंत्री ने आपातकाल पर आधारित स्मारिका आपातकाल के योद्धा का विमोचन किया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने कहा कि आपातकाल लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सजग रहने की सीख देता है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता इंद्रेश कुमार थे। उन्होंने अपने संबोधन में लोकतंत्र, राष्ट्र निर्माण और सांस्कृतिक मूल्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। समारोह में निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत कल 0 से 5 वर्ष तक के जो बच्चे पोलियो की दवा पीने से छूट गए थे, उन्हें आज दूसरे दिन स्वास्थ्य कार्यकर्ता और मितानिन घर घर जाकर पोलियो की दवा पिला रही हैं। वहीं कल भी बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। इस अभियान के तहत प्रदेश में 35,98,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ में आज से सहकारिता सप्ताह मनाया जाएगा। 6 जुलाई तक चलने वाले इस सप्ताह के दौरान प्रदेश भर में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। रायपुर में आगामी 3 और 4 जुलाई को राज्य स्तरीय सहकारी चिंतन शिविर, सहकार मेला और संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं 6 जुलाई को केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह अन्न भंडारण योजना के तहत प्रदेश के 9 पैक्सों में गोदाम निर्माण कार्य का भूमि पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर लगाने वाले उपभोक्ताओं को अतिरिक्त बिजली का लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा तय बायबैक दर को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मंजूरी मिलने के बाद ग्रिड में भेजी गई अतिरिक्त सोलर बिजली की राशि उपभोक्ताओं के अगले बिजली बिलों में क्रेडिट के रूप में मिलेगी। नेट मीटरिंग व्यवस्था से अतिरिक्त बिजली का हिसाब रखा जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित दंतेवाड़ा की समाजसेवी डॉक्टर बुधरी ताती का साक्षात्कार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा अब से कुछ देर बाद 10 बजे से प्रसारित किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कोटा गहना में सर्पदंश से नानी और नातिन की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रात में सोते समय 8 वर्षीय बच्ची को जहरीले सांप ने काट लिया। बचाने पहुंची उसकी 56 वर्षीय नानी को भी सांप ने डस लिया। इलाज के लिए ले जाते समय बच्ची और बाद में नानी की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बस्तर संभाग में 1-2 स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। अनुमान है कि आज सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और नारायणपुर जिले में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि अगले 6 दिनों तक प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। वहीं उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश की संभावना है। सरगुजा जिले के रामगढ़ में आज से 2 दिवसीय रामगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। महोत्सव के

0: पहले दिन छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति पर आधारित विभिन्न लोक नृत्य और लोकगीत प्रस्तुत किए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने रायपुर में आयोजित आपातकाल स्मृति दिवस समारोह में लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया। छत्तीसगढ़ में आज से सहकारिता सप्ताह मनाया जाएगा और प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर लगाने वाले उपभोक्ताओं को अतिरिक्त बिजली का लाभ मिलेगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। ये आकाशवाणी रायपुर है। लीजिए सुनिए, पद्मश्री से हाल ही में सम्मानित दंतेवाड़ा की डॉक्टर बुधरी ताती से विशेष भेंटवार्ता। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर की है।

0: श्रोताओं नमस्कार। प्रादेशिक समाचार एकांश के इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, आज हमारे साथ एक कमाल की शख्सियत हैं, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने पिछले करीब 36 या 35 वर्षों में बस्तर के 500 गांवों की पैदल यात्रा की है और लाखों लोगों को जागरूक किया है। ये शख्सियत हैं डॉक्टर बुधरी ताती। डॉक्टर बुधरी ताती को हाल ही में राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है। डॉक्टर बुधरी ताती, हम आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं।
1: मैं सुश्री बुधरी ताती, छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा जिला। मैं नमस्कार करती हूँ आकाशवाणी को कि यहाँ पर आने का बहुत सौभाग्य है।
0: ये तो हम लोग का सौभाग्य है कि आज आप हम लोगों के साथ में हैं, इस स्टूडियो में हैं और हम आकाशवाणी के माध्यम से आपकी बात हजारों लाखों लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। सबसे पहले आपको बहुत सारी बधाई पद्मश्री सम्मान से सम्मानित होने के लिए, और हम सब छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए, बस्तर के लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है ये। आपको बहुत सारी बधाइयाँ।
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: हमने देखा जब उसमें जब राष्ट्रपति महोदया आपको सम्मानित कर रही थी पद्मश्री से, तो आप आदिवासी वेशभूषा में पहुंची थी। हम लोग को बहुत अच्छा लगा वो देख के। तो वो जानबूझकर आपने चुना था कि नहीं यही वेशभूषा में जाएंगी आप?
1: ये तो हमारा परंपरा है
0: जी,
1: हजारों वर्षों से, क्योंकि हम वन जंगल पहाड़ से जुड़े हुए, हमारे क्षेत्र का ही वेशभूषा का एक प्रकार का सो है यो।
0: जी जी।
1: तो हम ये सोचे कि हमारा परंपरा है वेशभूषा, हम उसी वेशभूषा से क्यों नहीं जाएंगे, हमारा आदिवासियों का।
0: जी, कैसा महसूस हुआ जब राष्ट्रपति ने, क्योंकि हर व्यक्ति का एक सपना होता है पद्म सम्मान से सम्मानित होना, कैसा महसूस हुआ आपको जब आपको चुना गया और अब राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में आपको सम्मानित किया, कैसा महसूस हो रहा था उस वक्त?
1: मुझे तो महसूस तो ये हुआ सर, क्योंकि मुझे बचपना से लेकर आज तक काम किए हैं, हमने कभी सोचे नहीं कि इतना बड़ा जगह में मेरा कभी पहुंच होगा
0: जी।
1: मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरा बेटी बहने कितने निसंकोच रहे, जैसा रहे, बहुत खुशी की बात है सर, ये हमारे समाज का गौरव है सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम सब के लिए गौरव की बात है। बस्तर में लोग आपको बुआ और बड़ी दीदी के नाम से जानते हैं, इसी तरह से पुकारते हैं, हम भी दीदी कहेंगे आपको। तो दीदी, ये बताइए कि ये जो 35-36 वर्षों की जो आपकी यात्रा है, ये शुरुआत कहाँ से हुई, आपका जन्म कहाँ हुआ, और उसके बारे में थोड़ा सा बताइए अपनी शुरुआत से, इस यात्रा का हम जानना चाहते हैं।
1: मेरा जन्म हमारे छत्तीसगढ़ बस्तर संभाग दंतेवाड़ा जिला, एक छोटा गांव है हीरानार
0: जी,
1: हीरानार गांव में मेरा जन्म हुआ है। और मेरा बाल खाल से ही, मेरे माता से ही संस्कार मिला
0: जी।
1: सब लोग नशा कोरी करते रहे, लेकिन मेरे माता जी कभी नशा नहीं की
0: जी,
1: बिल्कुल साधारण थी
0: जी।
1: और मैं उसी कुल में, ताती परिवार में जन्म ली हूँ
0: जी।
1: और 8 साल की छोटे समय से ही मुझे आध्यात्मिक जीवन में बहुत रुचि रहा सर
0: जी।
1: मैं 8 किलोमीटर दूरी में एक दिव्य जीवन संघ है
0: जी,
1: वहाँ जाना आरंभ की। और थोड़ा सा बड़े होने से मेरा इतना रुचि था आध्यात्मिक में, जब स्नान भी करती रही बिना तुलसी माँ के जल चढ़ाए, बिना मैं खाना पीना सेवा नहीं करती थी।
0: अच्छा,
1: ऐसा बचपना से मेरा गुजरा है सर। हमारे सदा प्रेमानंद गुरु महाराज
0: जी,
1: उनके

0: पास जा करके थोड़ा बहुत शिक्षा वगैरह ध्यान करते थे गुरुकुल में
1: जी।
0: और पूजा पाठ करते थे। उसके बाद उन्हीं के आशीर्वाद से जो है मुझे आज कहीं जाने को मिला है।
1: तो उस समय किस तरह के आपको आश्रम में शिक्षा, आपको ज्ञान मिला जिसने आपको प्रेरित किया?
0: जैसा कि हमारे गुरुदेव पूजा पाठ के बाद हमको बिठाता था
1: जी
0: और शिक्षा के बारे में बोलता था, मानवता के नाते में कैसा होता है, ये सब शिक्षा देता था
1: जी।
0: तो हम बचपन से हम भी अध्ययन करते थे।
1: अच्छा।
0: जैसा हमारे गुरुदेव ने इतना अच्छा उपदेश दे रहा है, हमारे लिए हम क्या कर सकते हैं
1: जी।
0: तो इस चीज को हमारे समाज के लिए तो मुझे भी करना होगा। बहुत छोटे समय से मुझे ये बातें अंदर से बाहर आना चालू किया।
1: अच्छा।
0: ऐसा है।
1: फिर अगला पड़ाव क्या था? आप नागपुर भी गईं, फिर वहाँ पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय सेवा समिति में भी आपने प्रशिक्षण लिया, उन सब के बारे में बताएं।
0: तो इसमें क्या है सर, एक दिन अचानक, हम तो उस समय 14-15 साल के थे
1: जी,
0: तो अचानक ही मेरे घर में हम बैठे थे
1: जी,
0: तो अचानक एक ही सज्जन आया आंध्रा के, वो अचानक आया दोपहर को
1: जी।
0: आने के बाद ही वो बोला कि बेटी मुझे कुछ खाने को मिलेगा क्या
1: जी?
0: तो मैं 4 दिन से भूखा हूँ
1: जी।
0: वो आया और हमको बोला, फिर खाना खाने के बाद 5 मिनट लेटा, उसके बाद हाथ जोड़ा, बेटी मैं एक ही काम के लाया हूँ कि मुझे आपके जैसा बहने का जरूरत है।
1: अच्छा।
0: अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम में महिलाओं का काम भी करना चाहते हैं
1: जी,
0: लेकिन उनके लिए ऐसी समाज के कोई महिला चाहिए
1: जी,
0: तो आप आएंगे, इतना ही मुझे बोला है
1: जी।
0: ये बोलने के बाद ही मुझे तो पहले से ही प्रेरणा था
1: जी
0: कि कौन बोलेगा, कहाँ जाएंगे, घर के लोग क्या बोलेंगे
1: जी।
0: तो बोलने के बाद मैंने तुरंत बोले कि हाँ मैं जरूर आ सकती हूँ, लेकिन घर का अनुमति बिना नहीं होगा
1: जी।
0: तो जैसे वो बोल के चला गया, फिर माँ और भैया के सामने ये बात रखी हूँ, ऐसा ऐसी बात है, मुझे यहाँ से जाने दो
1: जी।
0: मैं बोली कि भैया ऐसा ऐसा एक जन आया है, वो बता के गए है, मुझे यहाँ से आप छोड़ो
1: जी।
0: नहीं नहीं, हम नहीं छोड़ सकते, हमारे समाज से सतत मना है कि कोई भी बहन बाहर नहीं जा सकती है। तो इतना बोलने के बाद भी मैंने उनको अटकी है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, मेरा जिम्मेदारी अपने आप को बचाने का
1: जी,
0: और आपको भी कभी धोखा नहीं देने का है
1: जी,
0: आप 1 साल के लिए मुझे यहाँ से निकाल दीजिए
1: जी।
0: तो जहाँ भैया नहीं बोलने वाला, स्वयं छोड़ने के लिए नागपुर राष्ट्र सेवा की समिति में, वो महिलाओं का काम था सर
1: जी,
0: वहाँ ले जाके छोड़ दिया
1: जी।
0: मैं भी एक बहन को साथ में ली, तो चलो मेरे साथ आप भी चलो
1: जी,
0: तो मेरे परिवार के
1: जी।
0: आने के बाद ही हमको ऐसा लग रहा था हम कहाँ जंगल पहाड़ में रहने वाले लोगों के जंगल में आ गए
1: जी,
0: बड़ा कष्ट हो रहा है
1: जी।
0: 2 दिन तक रोना गाना तो चला है
1: जी।
0: उसके बाद ही हमने जो निष्ठा रखे कि मैंने 1 साल का वादा करके आई कि मैं समाज में काम करना चाहती हूँ
1: जी,
0: और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मेरे जैसे हजारों बहने पढ़े लिखे नहीं है, उनके लिए कौन करेगा, मुझे करना होगा
1: जी।
0: ऐसा मैं भी एकदम ठान ली था। उसके बाद फिर ज्यादा नहीं तो 3-4 महीना व्यवहारिकता सीखी हूँ
1: जी,
0: मैं रिटर्न वापस आई हूँ 84 में ही। मैं बस्तर गई, आज हमारे मंत्री केदार जी है, वो छोटे छोटे थे
1: जी,
0: खेलते रहे हमारे सामने उस समय
1: जी।
0: तो मैं उनके गांव में गई, वहाँ एक किराए में रह करके फिर वहाँ एक छात्रावास का निर्माण किए। निर्माण करने के बाद एक की पानी के लिए साधन नहीं था तो कुआं खोदे
1: जी,
0: उसके बाद जो है 12 बहनों को वह स्थापित किए।
1: अच्छा।
0: स्थापित करने के बाद ही वो बड़े हो गए धीरे धीरे वहाँ के बहने
1: जी,
0: वहाँ के बहने को जैसे स्कूल खाना उना स्वयं बनाते रहे
1: जी,
0: खाना बना के उनको खिलाते रहे, उसके बाद जो है उनको स्कूल भेज करके
1: जी,
0: मैं भी उनके साथ साथ में गांव में जाती था, आसपास के गांव में
1: जी,
0: छोटे छोटे बच्चों समय तो स्कूल नहीं जाते थे
1: जी,
0: उन बच्चों के लिए कुछ करूँ करके एक बाल संस्कार केंद्र चालू करते थे, 70-80 बच्चे आते थे।
1: अच्छा।
0: फिर गांव से कुछ इकट्ठा करके उनको खाने के लिए सब करने के लिए व्यवस्था करती थी, जैसे 10 बजे से लेके 4 बजे तक मैं उनका सब करती थी
1: जी,
0: वहाँ का जो स्थापित करके वातावरण बना के मैं फिर वहाँ से मैं दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिला
1: जी
0: पारसूरक करके एक केंद्र है
1: जी,
0: वो अबूझमाड़ का काम करने के लिए मैं वहाँ चले गई।
1: अच्छा।
0: वहाँ जाने के बाद ही मुझे और एक चिंतन होना चालू हो गया कि जैसा कि मेरे जैसा हजारों बहने हैं
1: जी,
0: अगर इस समाज के लिए कुछ उत्थान करना है तो ऐसा बेटी बहनों के लिए मुझे काम करना होगा।
1: बिल्कुल।
0: तो काम करेंगे तो फिर कैसा काम करेंगे कि पहले यहाँ का आसपास का वातावरण हम देखेंगे कि क्या जरूरत है
1: जी।
0: फिर 555 गांव को हमने पैदल यात्रा की है।
1: अच्छा। कितने वर्षों के दौरान ये पूरी यात्रा?
0: ये 1 साल पूरा लगा था।
1: 1 साल में आपने 555 गांव की यात्रा की पैदल?
0: डेली डेली, एक दिन में 3 गांव 2 गांव करते थे।
1: अच्छा, और आपके साथ टीम रहती होगी?
0: मेरे साथ एक कोई न कोई एक बहन को लेती थी।
1: अच्छा,
0: वहीं पर उनको प्रशिक्षण होता था।

0: जी कैसा जाती है, कैसा बात करती है, लोगों को तैयार कैसे करती है, हमारे जैसे बड़ी बहनों को कैसे चुनती है
1: जी,
0: और उनको कैसा बात करने से वो बहन आने को तैयार होती है। अच्छा। उसी में ट्रेनिंग होता था मेरे साथ में जो रहते थे। तो 555 गांव को घूमने के बाद पता चला कि मुझे इस क्षेत्र में काम करना है तो फिर यहाँ के लोकल बहनों का जरूरत है
1: जी,
0: और लोकल बहनों का जरूरत है तो उनको संस्कार भी चाहिए, पढ़ाई लिखाई भी चाहिए और उनको जो प्रेरणा देना चाहिए कि ताकि वो भी यहाँ का काम कर सके
1: जी।
0: ऐसा करके उसी समय से फिर 87 से बहनों का जो बड़ा टीम है 15 साल से 30-35 साल के
1: जी,
0: ऐसा बहनों को ला करके 20-30 बहनों को ला के ट्रेनिंग देना चालू किए, सिलाई बुनाई पढ़ाई
1: जी,
0: संस्कार
1: जी
0: ऐसा देना चालू किया। उसी समय से फिर बहनों का गति बढ़ गया
1: जी।
0: फिर एक एक टीम से मुझे 10 लोग 12 लोग पूर्णकालीन कार्यकर्ता मिलने लगे
1: जी।
0: वैसा जो शिक्षा के संबंधित में एक ही वातावरण बनाए है
1: जी।
0: फिर छोटे बच्चे कभी स्कूल नहीं जाते तो ऐसे बच्चों को भी साथ साथ में हम लोग आगे बढ़ाए हैं सर
1: जी। दीदी आपने चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे पर्यावरण का क्षेत्र हो, पर्यावरण संरक्षण का, या फिर सामाजिक कुरीतियों की बात हो, सब क्षेत्रों में काम किया है। नशा मुक्ति में भी आपने कमाल का काम किया है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपका जन्म दंतेवाड़ा के हिरनार गाँव में हुआ, तो वहाँ पे क्योंकि आपकी पैदाइश थी, आपने आसपास देखा, फिर आपने गुरुमगुंडा आश्रम में शिक्षा प्राप्त की, फिर नागपुर गए, तो इस दौरान में जब आप लौटे और फिर आपने उस क्षेत्र में काम करना शुरू किया, तो आपको क्या लगा कि सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसमें सबसे पहला काम करना है, क्या महसूस हुआ उस वक्त?
0: सबसे बड़ा तो एक काम मुझे ध्यान में आया, जैसे कि हम बचपना से देखते थे
1: जी,
0: एक कुरीति समरसता नहीं था, जैसे उस समय तो हैंडपंप नहीं होता था गांव में, झरना से पानी निकालता रहा, वहां से पानी को निकाल के ले जाना पड़ता, उसके लिए भी जाति प्रथा बहुत था, हम अच्छा। बहुत दूर खड़े रहते रहे।
1: अच्छा।
0: दूसरे जाति के कोई आके पानी ले जाएंगे, फिर हम ले जाने से उस पानी को सफाई करेंगे, वहां से निकाल के साफ करके अपना पानी भर के ले जाते रहे
1: जी।
0: ये हमको देखने को बचपना में मिलता रहा
1: जी।
0: और एक साथ कभी खाना नहीं, एक साथ बैठना नहीं, महिलाओं में बहुत जात पात रहा, छुआछूत रहा
1: जी।
0: तो मैं इसको भी सोची कि जब तक ये हम एक साथ नहीं बैठेंगे, एक साथ नहीं होंगे, तो फिर हमारा समाज का अधूरा एक कब सुधरेगा। तो ये सब को एक में करने के लिए क्या करना होगा, फिर इसको हम लोग उनके साथ बैठना उठना चालू किए, एक साथ खाने का कोशिश किए, लेकिन नहीं खाना, छूत मानना, वो अपना अपना चूल्हा जलता रहा।
1: अच्छा।
0: खाने के लिए
1: जी।
0: ऐसा करते करते फिर आगे जा करके फिर एक साथ आने लगे, एक बार तो 5,000 लोग आए, सब चूल्हा जलने लगा
1: जी,
0: कोई एक साथ खाना खाने को तैयार नहीं, इतना छूत मानते थे।
1: अच्छा।
0: फिर लोगों को अनेक प्रकार का वो सब सिखाने के बाद जो है बताने से लोग साथ में आए, फिर गाने लगे, फिर कई प्रकार का जो है समस्या समाधान में आया, समरसता आया, आज एक साथ खाना, एक साथ उठना, हजारों बहनें एक साथ मिलजुल के, उसमें कोई जात पात नहीं, इसको संघर्ष करना पड़ा, बहुत मेहनत करना,
1: बहुत बड़ी बात है। मतलब देखिए, सबसे पहले आपने सामाजिक एकता लाने का, भेदभाव दूर करने का काम किया, क्योंकि बाकी सब चीजें तो बाद में है, पहले तो एकता जरूरी है जी जी। और फिर शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आपने महिलाओं को, वहाँ बहनों को जागरूक किया, इसके बारे में बताएं, क्योंकि अशिक्षा भी एक बड़ी समस्या है, आदमी पढ़े लिखेगा नहीं तो उसको पता ही नहीं होगा उसका अधिकारों के बारे में, इसके बारे में कैसे आपने लोगों को जागरूक किया
0: इसके बारे में? क्योंकि जैसे समरसता तो एक साथ हो गया है
1: जी,
0: लेकिन पढ़ाई लिखाई होना भी महत्वपूर्ण है सर
1: जी, बिल्कुल।
0: सबसे पहले तो हम खुद भी बहुत पढ़ाई लिखे नहीं थे
1: जी,
0: हम गुरु के पास जाकर थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीख रहे थे, स्वयं पहले हम लोग 5वीं 8वीं 10वीं किए
1: जी,
0: तब हमको भी समझ में आया कि दूसरे को भी हम ऐसा कर सकते, फिर बेटी बहनों को पढ़ने के लिए आगे लाए, लोग चाहते थे कि बेटी है तो दूसरे के घर जाने वाली है, इसको पढ़ाई लिखा करना क्या मिलेगा, हम लोगों को खर्च क्यों करेंगे, ऐसा लोगों की सोच भी था
1: जी।
0: लेकिन बाद में सब उनके सामने जाना, उनके साथ बात करना, ये सब करके जो है पढ़ाई लिखाई का भी, बेटी बहनों का हम पढ़ाई के बारे में आगे सोचे हैं, आगे बढ़ाए हैं, बड़े बड़े बहनों को भी साक्षरता बनाए, उसमें से 545 ऐसा कुछ बहनें हैं
1: जी,
0: पूरा एकदम अनपढ़, कभी स्कूल नहीं गए हैं।
1: अच्छा।
0: कभी स्कूल नहीं गए, ऐसी बहनों को ला करके
1: जी
0: हमने साक्षरता बनाए, पेपर दिलाए, किसी न किसी सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से ऐसा उनको शिक्षा देना और वहाँ ले जाके पास कराना
1: जी।
0: आज जो है ऐसी बहनें हर पोस्ट में गए, अपने आप को समझ में आया कि हर पोस्ट में गए हैं, नर्स में गए हैं, कोई पुलिस विभाग में है, कोई टीचर बना है, कभी स्कूल नहीं गए, आज वर्तमान में

0: टीआई भी बना है।
1: अच्छा।
0: और एक ही बाल विकास अधिकारी बनी है
1: जी,
0: ये कब स्कूल नहीं गई है।
1: कितनी बड़ी बात है, देखिए शिक्षा के माध्यम से आपने उनको सशक्त बनाया,
0: सशक्त बन गया,
1: आत्मनिर्भर बन गई वो बहनें।
0: जी जी, फिर उसमें से साथ साथ में सिलाई है
1: जी,
0: बुनाई है
1: जी,
0: सारे जो है उनको सशक्त कारण उसको बनाए हैं। बड़े बड़े कलेक्टर बने
1: जी,
0: बड़े बड़े अफसर बने
1: जी,
0: अब उनको समझ में आया शिक्षक होने के नाते
1: जी,
0: सब जगह पहुंच गए, सब जगह अपने आप को समझ गए, बड़े से बड़े जगह में बैठ रहे हैं।
1: बहुत बड़ा काम किया आपने, बहुत बड़ा काम किया। इसमें एक बात और भी है, क्योंकि आपने वहाँ पे ये भी पाया कि वहाँ समाज में, गांव में नशा भी एक बहुत बड़ी बुराई है, और वो भी लोगों के विकास में एक बड़ा रोड़ा होता है, तो नशा मुक्ति के लिए भी आपने बड़ा अभियान चलाया, इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: नशा पुराने लोगों का है, लोग कहते थे कि नशा तो अनिवार्य है कि हमको पीना ही है
1: जी,
0: लेकिन हमने 1984 से लेकर 86 आज तक भी हम गांव में जाने लगे
1: जी,
0: कभी भी हम नशा के बारे में नहीं पीना ऐसा हमने ज्यादा दबाव नहीं किए
1: जी,
0: लेकिन हम उनके साथ ही जाना, बैठना, खाना, उनके साथ रहना, अपना व्यक्ति समझ गए कि दीदी जी ने जितने भी इनके ग्रुप है आज ही 1984 में भी देखे, आज भी देख रहे कि इन लोग कैसे स्वच्छता है
1: जी,
0: अगर नशा नहीं करने से व्यक्ति स्वाभिमान कैसा बढ़ता है,
1: बिल्कुल
0: अपने आप व्यक्ति संस्कारित होता है
1: जी,
0: तो ये जो है नशा मुक्ति में लोगों के साथ मिलते जुलते आज हजारों बहने नशे से मुक्त हो गए, हजारों पुरुष मुक्त हो गए
1: जी। आपने वो भी किया, लोगों को शिक्षा की अलख जगाई आपने वहाँ पर, आपने स्वास्थ्य के प्रति भी लोगों को जागरूक किया, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अस्वच्छता से, है ना, स्वच्छ नहीं रहने से और तमाम अंधविश्वास से भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं, आपने इस बारे में भी वहाँ पे लोगों को जागरूक किया, और हमें तो पता चला है कि आपने जो जड़ी बूटियां होती हैं उसके माध्यम से भी उपचार करके कई लोगों का इलाज किया, इसके बारे में बताएं।
0: हम लोग जैसे हमारा टीम है, मेरे साथ बहुत सारे बहने हैं अभी भी
1: जी,
0: हम गांव में महिला जागृति शिविर करके हम लोग रखते थे
1: जी,
0: 10 बजे से 3 बजे तक
1: जी,
0: उसमें ये जो स्वास्थ्य के संबंधित छोटे छोटे चीज है
1: जी,
0: वो सभी हम लोग प्रथम जो है गर्म पानी करके पीना, गड्ढा से पानी लाते हैं तो छान के लाना
1: जी,
0: ढक के रखना
1: जी,
0: हाथ पैर ठीक से धोना, बच्चों को भी धुलाना, आराम सफाई कैसा रखना
1: जी,
0: ये छोटे छोटे बात होती है
1: जी,
0: उसको हमने शुरू किए
1: जी,
0: और जो गांव में मिलता है जो जो भी मिलता है हमारे पास
1: जी,
0: उसको अंकुरित करके खाना
1: जी,
0: और जैसे पपीता मिलता है तो लोग बेचने ले जाते लेकिन खाते नहीं है
1: जी,
0: पपीता खाने से हमने सुने थे कि एक टुकड़ा खाने से 4 टुकड़ा मांस खाते उसके बराबर का ताकत मिलता है, पपीता खाइए हांक का तेज रहेगा, फिर हमारे पेट में पित्त होता है, पपीता खाने से वो पित्त अपने आप दूर होता है
1: जी,
0: ऐसा कई छोटे छोटे जानकारी देते देते ये स्वास्थ्य के बारे में बहुत लोग परिवर्तन हो गए, अच्छे हो गए, और एक समय में एकदम बीमार हो करके पूरे झुक के चलते थे, पतला दुबला होते थे, उसको एले दक्की बोलते हैं वहाँ लोकल भाषा, ओठी भी बीमार जिसको होता है उसको एले दक्की बोलते हैं, ऐसी लोगों को स्वास्थ्य के संबंधित में एक साथ में 80 लोग ठीक हो गए। दूसरा है कि कभी कभी जो गांव में सिर दर्द होता है
1: जी,
0: पूरा किसी किसी के बाल भी झड़ गया था
1: जी,
0: ऐसी व्यक्ति दवा खाने आता है, फिर वो जड़ी बूटी का दवा देने से वो आदमी ठीक हो गए,
1: मतलब प्रकृति हमको सब कुछ देती है।
0: हाँ, जानकारी लेना पड़ता है,
1: जरूरी है।
0: हमारे बहने लोग पहले से ही दादा परदादा से सीखे रहते थोड़ा बहुत
1: जी,
0: तो वो अभी कभी कभी समय आने पर उसको देते हैं, और जो हमारे पास में कई प्रकार का अनाज होता है, कमजोरी के लिए हम लोग पैसा खर्च करते हैं, तो कमजोरी के लिए इतना सारे सब होता है कि 9 प्रकार 10 प्रकार का जो सामग्री होता है उसको इकट्ठा करके उसको पिसवा के लड्डू बना के खाना, उसका सूरन बना के स्वयं इन लोग देते हैं बहने लोग
1: जी,
0: तो उससे कितने बहने कितने भाई लोग ठीक हो गए।
1: अरे वाह, बहुआयामी काम है आपका, लेकिन ये भी बताइए कि ये जो पूरा सफर है वो इतना आसान भी नहीं रहा, कई बार आपको विरोध का सामना करना पड़ा, कई बार तो हमले भी हुए हैं, कुछ ऐसी घटना बताइए, क्योंकि हमें पता चला है कि अबूझमाड़ में ही कुछ लोगों ने हमला करने का भी प्रयास किया था, तो बहुत आसान नहीं रहा यह सफर आपका।
0: वैसे तो स्वाभाविक है, जो व्यक्ति जीवन में संघर्ष करके काम करना चाहता है उसको तो बिना घटना के कोई सफल नहीं हो सकता
1: जी।
0: हम गाँव में जाते हैं तो किसी गाँव में हमारा कोई पहचान नहीं है
1: जी,
0: उस गांव में जाकर के रात में मुखाम करते हैं
1: जी,
0: इस गांव से आप जाएंगे नहीं जाएंगे ये भी हम लोग सोचते हैं
1: जी,
0: ऊपर वाले के ऊपर सौंपते हैं कि जो बचाने वाला आप है, नहीं बचाने आप, ईश्वरी काम है
1: बिल्कुल।
0: एक दिन हमारे साथ

0: में अभी एक बहन आई, हम बहुत दूर में चले गए, करीबन करीबन 80-70 किलोमीटर
1: जी,
0: एकदम नया गांव है
1: जी,
0: हमारे छत्तीसगढ़ आंध्र ऐसा जुड़ा हुआ
1: जी।
0: उस गांव में गए, सुनसान गांव है। वहां जाने के बाद ही अचानक लोग एकदम आ गए
1: जी,
0: महिला पुरुष सब पर्ची उर्ची जितना उनके पास हथियार होता है सब लेकर आए
1: जी।
0: लेकर आने के बाद ही आ गए, हमको समझ में नहीं आ रहे सब क्या कर रहे हैं। कोई सल्फी पीने के लिए नशा वाला लाए, नशा पिलाना है, मार डालना है, ऐसा सोचे
1: जी।
0: हम लोग तो कुछ नहीं सोचे हैं। तो मेरे साथ में आज मेरे सामने बगल में बैठी है बहन, जो बहन चिमक रही है पीछे से, और आज तो हमारा निश्चित मौत है। मेरी बड़ी वाली बहन रहती है, उसको बिना देखे मेरा मौत तो आज निश्चित है। इतने सारे लोग मारने के लिए हम यहाँ से कैसे जाएंगे, तो हम 70-80 किलोमीटर में है
1: जी,
0: तो हम कैसे जाएंगे, ऐसा सोचते थे। मैं मन मन में बोले उसको कि कोई बात नहीं है, हमारे पास कोई चीज नहीं है
1: जी,
0: ऊपर वालों का कृपा है, अगर मौत होता है तो भी हो जाता है, अब क्या कर सकते हम
1: जी।
0: तो इतना बड़ा घटना सामने आने के बावजूद भी ऊपर वाले ने बराबर सब ठीक ठाक किए, पता नहीं क्यों शांत हो गए यार, पूरा अपना पर्चा अपना सब हथियार नीचे रखे।
1: अच्छा।
0: और नीचे रखने के बाद बोलने के लिए कि आपको पीना है, फिर हमने हाथ जोड़े कि हम तो कभी नशा पीते नहीं है
1: जी,
0: तो आप पी लीजिए, हम आपको देते हैं डालते हैं। फिर हमको अलग से खाना बना दिया, सब नहीं खाएंगे बोलने से, इतना मारने खिलाने के बावजूद भी
1: जी।
0: फिर खाना बना दिए
1: जी,
0: खाना बनाने से इतनी सी दाल बनाए, उसमें इतना सारे छोटा माड़िया मिर्ची होता है, इतने तेज होता है
1: जी,
0: जितना दाल उतना मिर्ची डाले
1: वो बाबा,
0: और हमको खाने के लिए दे रहे, हम उनके पास खाना पड़ा, हम खाए
1: इतना तीखी दाल आपको खाना,
0: खाए हैं
1: जी।
0: खाने के बाद ही लोगों को विश्वास हो गया, ये लोग हमारे लिए आए हैं, हम इनको मारने के लिए कोशिश किए
1: जी, तो उनको पश्चाताप हुआ फिर।
0: हाँ
1: जी,
0: जो आदमी अच्छे कार्य करना चाहता है उसको कोई न कोई बचाने वाला भी होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ऐसे कई प्रकार का समस्या, कई संघर्ष हुआ, कभी नदी नाला से है, कभी कहाँ से है, अच्छा ऐसी तो बहुत है सर।
1: आपका जो समाज के प्रति जो समर्पण है, काम के प्रति जो समर्पण है, तो वहाँ पर लोग आपको बुआ कहते हैं, बड़ी दीदी कहते हैं, कैसा लगता है जब संबोधन से बुलाते हैं आपको?
0: जब मैं पहले जाती रही, हमको देख करके दरवाजा बंद करते थे
1: जी,
0: अरे इन लोग आए हैं तो हमारे बच्चों को ले जाएंगे कि हमको ले जाएंगे, ऐसा दरवाजा बंद होता रहा
1: जी।
0: लेकिन वही घर के वही परिवार कोई समाज के लोग, बड़े दीदी के नाते कभी नाम नहीं लिया आज तक
1: जी,
0: तो मुझे नाम नहीं लिए, बड़े दीदी के नाते बातें करते थे और बुआ के नाते बात करते हैं, इतने रिश्ता बना दिए, परिवार बना दिए
1: जी,
0: तो मुझे तो अच्छा लगता है कि आज ये परिवार कितने संस्कारित में आए हैं
1: जी। दीदी, आकाशवाणी के साथ भी आपका संबंध बहुत पुराना रहा है, आपने बताया कि आज से 20-25 साल पहले आकाशवाणी ने जगदलपुर में आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था, और ये भी आपने बताया है कि आपका बैंक का सबसे पहली बार खाता भी आकाशवाणी की वजह से खुला
0: जी।
1: इस वाक्य के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: ये तो बहुत सही बोले आपने
1: जी,
0: मैं 1986 में दक्षिण बस्तर में काम करने गई
1: जी,
0: मुझे लगभग 87 में आकाशवाणी में बुलाया गया, मेरे साथ में एक बहन थी, हम दोनों बहन आए हैं, और मुझे उस समय मैं भी खुद मेरा आयु भी कम था, हम आकाशवाणी में बुलाए तो हमको तो मालूम नहीं आकाशवाणी क्या होता है
1: जी।
0: इसी प्रकार से हमको अंदर ले गए
1: जी,
0: अंदर ले जाने के बाद पूछा गया कि हमारा बस्तर में जो लोक कथा होता है पुराने लोगों का
1: जी,
0: ऐसा कथा के बारे में 14 मिनट का एक किसी का 21 मिनट का दिए थे
1: जी,
0: तो हमने एक दूसरे कथा किए बोले, फिर हमको तो मालूम नहीं कि यहाँ से कुछ मिलता है
1: जी,
0: हम तो उसके लिए नहीं आते हम
1: जी,
0: तो हमको एक चेक दिया गया।
1: अच्छा,
0: दोनों बहन को
1: जी,
0: और चेक लेके हमने सोचने लगे चेक क्या होता है, इसमें क्या पैसा है कि क्या, हमको भी मालूम नहीं
1: जी।
0: फिर किसी को दिखा ये क्या होता है, फिर आकाशवाणी में बोले जगदलपुर में
1: जी,
0: ये जो है आपने 14 मिनट बोले उसके लिए सरकार ने आपको आकाशवाणी तरफ से आपको सहयोग दिया है
1: जी,
0: ये दोनों के लिए दो चेक है, आप इसको लेके जाइए
1: जी।
0: फिर गर्मेड़ी बैंक में लेके गई, ऐसा ऐसा आकाशवाणी से हमको मदद मिला है तो इसको क्या करना होगा, तुरंत बोला इसको खाता खोलेंगे, आपका पैसा जो यहाँ है यहाँ पर जमा हो जाएगा और आपका एक ही पासबुक बनेगा।
1: अच्छा,
0: तो आप जो है इसी के माध्यम से आगे भी आप ही आर्थिक सुधारने के लिए आप पैसा जमा कर सकते हैं, ऐसा बोल के वो खाता खोल दिया
1: जी।
0: मुझे अनुभव विश्वास हो गया कि हमारे गांव में तो कहीं खाता नहीं खोलते हैं
1: जी,
0: मालूम नहीं है
1: जी,
0: पैसा रहता है तो गड्ढा में छुपाते है तो दिमाग पकड़ता है
1: जी,
0: नाली कपड़ा में छुपाते है तो कपड़ा के अंदर से चूहा खाते हैं
1: जी।
0: तो हमने महिलाओं के बीच में जाने लगे, देखो हमारा आकाशवाणी तरफ से हमको सहयोग मिला है, तो हमने खा

0: खाता खोले हैं और हमारा सुरक्षित है
1: जी,
0: तो आप भी खाता खोल सकते हैं। हम लोग ग्रुप ग्रुप में महिलाओं को लाने लगे।
1: अच्छा,
0: घर में बैंक में बारसूर में
1: जी,
0: तो लोग बड़े लोग बैठे हैं
1: जी,
0: अगर यहाँ पैसा जमा करेंगे गांव का पैसा, ये कब देंगे नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे, ये हमारे लिए बैठते हैं, हमको आगे बढ़ाने के लिए, आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बैठे। ऐसा करते करते अब जो है हमने जो संगठन की तरफ से जो लोगों को ला के खोले हैं
1: जी,
0: वो लगभग 15,000 महिलाएं खाता खोले।
1: अच्छा,
0: आज लाखों बहने खाता खोल के
1: जी
0: अपना अपना विकसित काम कर रहे हैं।
1: क्या बात है, मतलब आकाशवाणी का जो एक चेक था
0: हाँ,
1: वो आज लाखों के महिलाओं के खाता खुलवाने का आधार बना।
0: आकाशवाणी ने हमको प्रेरणा किया
1: जी। अच्छा दीदी, ये हम मतलब जानना चाहते हैं कि आप तो पिछले करीब 35-36 सालों से काम कर रही हैं बस्तर के इलाके में, 500 से अधिक गाँवों की पैदल आपने यात्रा की है, लाखों महिलाओं को जागरूक किया है, अब आपको एक राष्ट्रीय पहचान भी मिली है पद्म सम्मान के माध्यम से, भविष्य के लिए आपकी क्या योजना है ये हम जानना चाहते हैं, और भी ऐसी महिलाएं होंगी जो आपसे प्रेरणा लेना चाहेंगी, वो कैसे आपसे जुड़ सकती हैं, इसके बारे में बताएं।
0: एक तो पहले से भी हमारा यही उद्देश्य है
1: जी,
0: हम ये चाहते हैं कि देखो राष्ट्र स्तर पर हमको आगे के लिए उत्थान मिला है, तो मैं तो बोलती हूँ समाज के लिए बहुत बड़ी चीज होता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आज हमारे बेटी बहने
1: जी
0: बहुत पिछड़े हुए थे, बेटी बहनों के नाते किसी के ऊपर कोई वो भरोसा नहीं था, आज भरोसामंद हो गया है
1: जी,
0: और हम बेटी बहनों के चाहते हैं कि अधिक से अधिक बेटी बहने आगे बढ़े
1: जी,
0: बहुत पढ़े लिखे हो और अपने लक्ष्य पर पहुंच जाए, और जो नहीं करने का ऐसा चीजों को भी करे और भविष्य को बनाए रखे, कोई भी शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, किसी चीज में भी। अब यही चाहते हैं कि और हर बहन पीछे न जाते आगे बढ़े
1: जी। दीदी, बस्तर में केंद्र सरकार के राज्य सरकार के प्रयासों से एक बड़ी समस्या जो पिछले करीब 6-7 दशकों से थी, माओवाद की समस्या, उससे अब बस्तर मुक्त हुआ है। अब वहां पर जो है वो हिंसा की जगह अब विकास हो रहा है बस्तर के इलाके में, और एक नया सवेरा हो रहा है बस्तर में। तो ऐसे में जो वहां पर लोग हैं अभी भी, बड़े पिछड़े इलाके भी हैं अब तो जानती हैं, उनमें जो लोग हैं जो अब विकास की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, अपने उन भाइयों बहनों से आप क्या अपील करना चाहेंगी, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: ये तो जैसे कि नक्सलियों का मुक्त तो हुआ है
1: जी,
0: लेकिन इतने सालों से उनके जो मन में रहा
1: जी
0: वो तो तुरंत छूटेगा नहीं
1: जी।
0: दूसरा है कि लोग 20 साल से अपना जगह को छोड़ करके आए हैं
1: जी,
0: जितना कमाया और छोड़ करके खा लिया आए हैं, और उन्होंने कितने उसके मन में रहा होगा कि एक पेड़ भी लगाते हैं तो पेड़ भी अपना घर जैसा होता है।
1: बिल्कुल,
0: तो अपना घर को छोड़ कर आए तो कैसा 20 साल बिताए होंगे
1: जी।
0: सबके मन में ऐसा हो रहा है कि हमको वापस जाना है, आज सभी जगह के लोग वापस जा रहे हैं
1: जी,
0: और जहाँ पर उनका घर रहा पता नहीं, पूरा जंगल हो गया 20 साल में
1: जी,
0: अपना घर को पहचान रहा है कि मेरा घर कहाँ पर रहा
1: जी।
0: हम लोग ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन को हम यही विनती करते हैं कि जितने लोग भी रहे हैं वो आपा जा रहे हैं, उनके लिए सबसे प्राथमिकता है कि हम ये संदेश देना चाहते हैं कि सरकारें तो कर सकता है
1: जी,
0: हम उनको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उनके लिए सड़क है, बिजली घर है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है और पानी का साधन है, ये 5-6 बिंदु है कि उनके लिए आज के दिन में जरूरत है
1: जी।
0: और उसमें से क्या है, अगर हम आज नहीं करेंगे तो और भी कहीं का बाहरी शक्ति भी आता है
1: जी, उनको बहका सकते
0: बहकाता
1: हैं।
0: है
1: जी,
0: बरगलाता है
1: जी,
0: पर इनको ये व्यवस्था होना चाहिए
1: जी।
0: तो ये महत्वपूर्ण 5-6 बिंदु है उनके लिए
1: जी,
0: हमें ये संदेश देना चाहते भाई इसको हमको ठीक करें और उनको पकड़ के साथ में रखे और हमको हिम्मत दे भाई तुम जहाँ भी जाओगे हम आपके साथ में है।
1: बहुत अच्छी बात कही आपने दीदी, बहुत अच्छा लगा हमें आपके साथ चर्चा करके और आपके इस पूरे यात्रा को जान के। आज इतने साधन संपन्न हैं लोग, लेकिन तब भी एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के बारे में अभी भी जो है वो कई बार सोचता है व्यक्ति। आप उस समय जब कुछ भी साधन नहीं था आपके पास में, उस समय आपने पैदल जो है वो सैकड़ों गांवों की यात्रा की, लाखों महिलाओं को जागरूक किया, वाकई एक महायज्ञ के समान है आपका काम हमारे लिए। तो आपको एक बार पुनः आकाशवाणी परिवार की ओर से बहुत सारी बधाइयाँ पद्मश्री के लिए।
0: मैं भी आपको बधाई देना चाहती हूँ सर, क्योंकि मुझे इतना बड़ा हमारे राज्य का ये स्थान है

0: उसमें इतना बड़ा आकाशवाणी में यहाँ तक लाने के लिए आप लोग ने हमारे लिए बहुत प्रयास किए, यहाँ लाए, और मैं यहाँ आने के बाद ही मेरे से जो त्रुटि हुआ होगा तो मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सर, आप यहाँ पर यहाँ तक लाए और हमको याद किए।
1: आपसे कोई त्रुटि नहीं हुआ, आपने क्या है अपनी पूरी बातों को दिल से कहा है और हमारे श्रोताओं ने उसको दिल से ग्रहण भी किया है, तो हम एक बार पुनः आपके बहुत सारे आभारी हैं, हृदय से आपका आभार। तो श्रोताओं, ये था हमारा विशेष कार्यक्रम, अब हम आपसे विदा लेते हैं।

0: पद्मश्री से हाल ही में सम्मानित दंतेवाड़ा की डॉक्टर बुधरी ताती से ली गई विशेष भेंट वार्ता प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर की थी। ये आकाशवाणी रायपुर है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।
1: मीडियम वेब और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम आपकी बात आपके गीत। प्रस्तुत करता है प्रमेंद्र कुमार। प्रस्तुति सहायक हैं मृदुल वर्मा।
2: हेलो
3: हेलो,
4: आज की सुहानी सुबह नेक ख्वाहिशात और बेहतरीन तमन्नाओं के साथ मैं मृदुल वर्मा आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम आपकी बात आपके गीत में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आज की इस महफिल की सबसे खास बात है आपकी आवाज़, आपकी बातें और आपकी पसंद के गीत। तो चलिए इस सुरीले सफ़र की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आज सबसे पहले हमसे जुड़ने वाले श्रोता कौन है। हेलो, आपकी बात आपके गीत। नमस्कार, कौन है और कहां से बोल रहे हैं आप?
5: मैं मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूं, राजेश कुमार वर्मा।
4: जी राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम आपकी बात आपके गीत में।
5: जी सर।
4: जी और बताइए, क्या कार्य करते हैं आप?
5: मैं ज्वेलरी का काम करता हूं सर।
4: जी जी, और इसके अलावा आपके शौक कौन कौन से हैं?
5: शौक रेडियो सुनना है।
4: जी जी,
5: आपके केंद्र से बहुत ज्यादा दिनों से जुड़ा हूं, कभी कभार कॉल लग जाती है।
4: जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे केंद्र के कौन से कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं?
5: इस समय तो इंस्टा फरमाइश चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है।
4: जी बहुत श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम है ये।
5: जी सर। जी सर,
4: और आपके उत्तर प्रदेश में अभी मौसम का क्या हाल है?
5: गर्मी है सर, इधर तो बहुत ज्यादा गर्मी है, बारिश एकदम नहीं हो रहा है।
4: जी आपका इंतजार कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है क्योंकि बारिश का मौसम भी आने वाला है।
5: जी जी जी जी सर, आपके तरफ तो बारिश हो रही है?
4: जी कभी कभी हो रही है,
5: छत्तीसगढ़ में बारिश हो रही है।
4: और आपके घर में कौन कौन रहते हैं?
5: सर पूरा परिवार है हमारे साथ, करता हूँ सब लोग जो है सर्विस में है।
4: जी तो बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
5: आया सामन झूम के।
4: बहुत ही सुंदर गीत है, आपको ये गीत हम जरूर सुनवाएंगे।
5: ठीक है सर, ओके धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो, आपकी बात, आपके गीत।
0: नमस्ते सर जी,
1: जी नमस्कार।
0: मैं संतोष एस काले सेगा बुल्ढाणा से बात कर रहा हूँ सर जी।
1: जी काले जी, बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपका कार्यक्रम आपकी बात आपके गीत में।
0: थैंक यू सर जी।
1: और बताइए काले जी, क्या करते हैं आप?
0: मैं खेती बाड़ी करता हूँ सर, किसान हूँ मैं।
1: जी जी, और अभी क्या कर रहे हैं आप?
0: बस रेडियो पर प्रोग्राम सुन रहा हूँ और आपको फोन लगाया सर
1: जी। रेडियो के बारे में आपको क्या चीज अच्छी लगती है
0: सर जी? रेडियो के जो बारे में कैसा है सर जी, सबसे पहले मैं रेडियो की दुनिया में 1983 से जुड़ा हूँ सर जी।
1: जी जी, बहुत ही लंबा समय हो गया है आपको रेडियो सुनते हुए।
0: ईमेल की गूंज में हम ईमेल भेजते
1: जी,
0: आपका
1: जी।
0: जो ईमेल की गूंज जो प्रोग्राम है वो बहुत बढ़िया है सर
1: जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ईमेल की गूंज के अलावा और कौन कौन से कार्यक्रम आप हमारे सुनते हैं?
0: सर जी, वो महिलाओं के लिए जो कार्यक्रम है वो भी बहुत अच्छा है सर जी।
1: जी जी, और किस चीज की खेती करते हैं आप?
0: सर जी हमारी इधर सोयाबीन की फसल होती है सर जी।
1: जी जी,
0: हमारी इधर अभी बारिश 2 दिन से आई है, अभी बारिश नहीं है सर जी।
1: अब बारिश का मौसम भी आ गया है।
0: हाँ सर जी।
1: जी तो कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं?
0: 1981 की फिल्म है सर जी, प्यासा सावन।
1: जी जी,
0: गीत के बोले मेघा रे मेघा, ये गीत सुनने का है सर जी मेरे।
1: जी, आपकी पसंद का ये गीत हम आपको जरूर सुनवाएंगे।
0: थैंक यू सर जी। जय जवान जय किसान।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: आपकी बात, आपके गीत।
1: हाँ, नरेंद्र तिवारी बोल रहा हूँ रायगढ़ से। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: जी नरेंद्र जी, आपको भी हमारा प्यार भरा नमस्कार।
1: हाँ, इस समय आकाशवाणी अंबिकापुर और आसपास क्षेत्र का मौसम कैसा है?
0: जी इधर तो उमस और गर्मी है, आप बताइए आपके तरफ
1: बस
0: मौसम कैसा
1: वही
0: है?
1: सेम टू ऐसी रायगढ़ में भी है।
0: और नरेंद्र जी क्या कार्य करते हैं आप?
1: मैं नगर निगम जल विभाग में कार्य करता हूँ सर।
0: जी, बहुत अच्छा कार्य है, समाज से जुड़ा हुआ कार्य है।
1: जी हम लोग के लिए गर्मी बरसात ठंड से हम लोग का तो कोई मतलब ही नहीं रहता है, हम लोग को तो ड्यूटी करना ही रहता है, चाहे पानी गिरे चाहे बरसात हो गर्मी हो।
0: कितने वर्षों से आप ये कार्य कर रहे हैं?
1: मेरे को लगभग 22-23 साल हो गए, ज्यादा छोड़ा हो गया 24 साल हो गए।
0: बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं आप। और बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: मैं अभी तो बिल्कुल नया एकदम सुनना चाहूंगा, लेकिन थोड़ा दो चार शब्द अनाउंसर लोगों को मैं धन्यवाद के रूप में देना चाहता हूँ। दो चार अनाउंसर बहुत ज्यादा पसंद आते हैं।
0: जी जी बोलिए।
1: हाँ, पुरुषों में तो है।

0: अक्षर अंजल जी हैं और तरुण जी हैं और निजिल वर्मा जी हैं और महिलाओं में हैं पूनम उपाध्याय जी हैं, शक्ति जी हैं और रैना जी हैं। इन सब की आवाज में इतना मतलब हमारे दिल को मतलब छू जाते हैं कि हम क्या बोले। कार्यक्रम सुनते वक्त हमें एक नई ऊर्जा मिल जाती है। इनका कार्यक्रम पेश करने का अंदाज बहुत ही अच्छा है। तारीफ करने के लिए कोई शब्द भी कम पड़ जाएंगे, ऐसा बहुत अच्छा लगता है
1: जी। बहुत धन्यवाद आपका, आपकी ये शुभकामनाएं हम उन तक जरूर पहुंचवाएंगे।
0: और आकाशवाणी अमृतापुर सभी श्रोताओं के साथ इसी प्रकार से अपना प्यार अपना इसलिए बनाए रहे हैं और श्रोताओं को सुझाव के अनुसार में जो श्रोताओं को जो पसंद आता है उस टाइप से कार्यक्रम हमेशा चलता रहे तो हम लोग दूसरा आकाशवाणी में अपना रुचि भी नहीं रखते करके अमृतापुर ही सुनते हैं। नया गीत सुनवा दीजिएगा एकदम नया कोई सभी।
1: तो लीजिए पेश है आपकी फरमाइश पर ये नए फिल्म का गीत।

0: हेलो
1: हेलो, आपकी बात आपके गीत।
0: हाँ सर, नमस्कार।
1: नमस्कार, कौन है और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
0: जी सर, मिड्डू सर, मैं सत्यम क्लब फुलकोना से अरविंद यादव बोल रहा हूँ सर जी।
1: और अरविंद जी क्या कर रहे हैं?
0: बढ़िया हैं सर जी, और आप सब कैसे हैं सर
1: जी? हम भी बहुत अच्छे हैं।
0: आज आपसे बहुत दिनों के बाद में बात हो रही है सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर
1: जी। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और क्या कर रहे हैं अभी आप?
0: कोशिश था सर कि आज फोन मतलब कि हमारा शामिल हो जाए और आपसे बात भी हो जाए। इन दिनों गांव में सर कहना चाहिए कि अभी खेतीबाड़ी का शुरुआत हो रही है सर, मतलब हल्का फुल्का इधर बारिश हुआ है।
1: जी जी,
0: ज्यादा तो नहीं हुआ है हमारे क्षेत्र में।
1: तो किस चीज की खेती करते हैं आप?
0: धान की सर एक फसल होती है सर इधर में। तो गाना सुना दीजिएगा सर।
1: कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: फिल्म का नाम भीष्मा बोल है, पिंजरे में पोपट बोले।

0: हेलो, आपकी बात आपके गीत।
1: मृदुल सर बोल रहे हैं
0: जी। जी, आप कौन और कहाँ से बोल
1: सर,
0: रहे हैं?
1: मैं राजकुमार निभवानी देवीगंज अम्बिकापुर से बोल रहा था सर।
0: निभवानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम आपकी बात आपके गीत में।
1: जी सर, एक गाने की फरमाइश थी सर।
0: जी बोलिए।
1: फिल्म का नाम है हीरो। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं प्यार करते नहीं। मनहर और लता मंगेशकर गाया हुआ गाना है सर।
0: जी, इस गीत के साथ आपकी कुछ यादें जुड़ी हुई हैं?
1: यादें बस बहुत फिल्म थी जैकी साहब मीनाक्षी सर की, बहुत अच्छी फिल्म थी सर। बहुत अच्छा रोल था इन दोनों का सर फिल्म में।
0: गाना भी बहुत खूबसूरत चुना है आपने।
1: और इस फिल्म के सभी गाने बहुत अच्छे थे सर।
0: जी जी, आपकी पसंद का ये गीत हम आपको जरूर सुनवाएंगे। कॉल करने के लिए धन्यवाद।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी बात आपके गीत का ये भाग बस यहीं तक। अब से कुछ देर बाद यानी प्रातः 11:05 पर हम फिर से हाजिर होंगे और करेंगे आपसे बातें, सुनेंगे आपके पसंद के गीत। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें।
1: हेलो
2: हेलो।

0: आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम आपकी बात आपके गीत का पहला भाग। प्रस्तुतकर्ता थे प्रमेंद्र कुमार और प्रस्तुति सहायक थे मृदुल वर्मा। यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 11 बजे हैं। समाचार कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। समारोह में आयोजित परेड में भारतीय नौसेना और थलसेना की टुकड़ियों ने भाग लिया। इस अवसर पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तरकश और INS इक्षक विक्टोरिया में तैनात थे। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम भी मौजूद थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में सेशल्स भारत के विजन महासागर का एक अहम साझेदार है और इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और प्रगति को विशेष महत्व देता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की संयुक्त परियोजनाओं से मॉरिशस में स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हराइजन दिया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी ने उन्हें यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी को इससे पहले भी सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार देंगे। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। वेनेजुएला में बुधवार को दो जबरदस्त भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,450 हो गई है। नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट जॉर्ज रोड्रिगेज ने बताया कि 7.2 और 7.5 तीव्रता वाले दो जबरदस्त भूकंपों के बाद देश में हल्के से मध्यम स्तर के 430 झटके महसूस किए गए। इस आपदा में 3,238 लोग घायल हुए हैं और 3,142 परिवार प्रभावित हैं। हजारों लोग अब भी दिन रात खोज और बचाव कार्यों में लगे हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तीर्थयात्रा के आधिकारिक प्रारंभ से पहले सुरक्षा व्यवस्था, काफिले की आवाजाही और समग्र तैयारियों का आकलन किया गया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। कनाडा का अगला मुकाबला शनिवार को ह्यूस्टन में नीदरलैंड्स

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। 11:05 हुए हैं। हमारे अगले कार्यक्रम का इंतज़ार करिए कुछ पलों का।

श्रोताओं, आपसे कुछ ही पलों बाद हम आपको सुनवाएंगे फोन इन कार्यक्रम आपकी बात आपके गीत का दूसरा भाग। लेकिन इसके पहले हम आपको ये बता दें अपने कुछ कार्यक्रमों के बारे में कि आपकी बात आपके गीत के तुरंत बाद हम आपके लिए पेश करेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद, और उसके बाद आप सुनेंगे दोपहर 12 बजे प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। तो अब हम सुनवाएंगे आपको ये कार्यक्रम, लेकिन कुछ और कार्यक्रमों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे एक ही शीर्षक पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चयन।

0: मीडियम वेब पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है फोन इन कार्यक्रम आपकी बात आपके गीत का दूसरा भाग।
1: हेलो
2: हेलो

0: स्वागत है श्रोताओं एक बार फिर आपके पसंदीदा फोन इन कार्यक्रम आपकी बात आपके गीत में। मैं हूं मृदुल वर्मा। उम्मीद है पहली भाग की बातचीत और गीत आपको पसंद आए होंगे। अब वक्त है कार्यक्रम के दूसरे भाग का, तो आइए बिना देर किए मिलते हैं अपने अगले श्रोता से। हेलो
1: हेलो भैया जी को प्रणाम।

0: जी नमस्कार,
1: कोदवा साझा छत्तीसगढ़ से राम स्वरूप गुप्ता
0: जी। राम स्वरूप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपके ही कार्यक्रम आपकी बात आपके गीत में।
1: जी भैया धन्यवाद भैया।
0: तो बताइए आजकल क्या कर रहे हैं आप?
1: बस भैया अभी तो खाली फिलहाल वहाँ से आने के बाद अभी नहीं बना प्रोग्राम टूर का, अभी सितंबर में और इसमें अगस्त में बनाएंगे प्रोग्राम। अगस्त में है रामेश्वर जाने का है 12 रोज का, और सितंबर में वही 12 रोज का गया जी का रहता है भैया।
0: जी जी, लगता है घूमने फिरने के बहुत शौकीन हैं आप।
1: हाँ काम करता हूँ, ये सवारी इकट्ठा कर घूमने घुमाने के लिए ले जाता हूँ बस से।
0: जी जी जी, बहुत ही नेक कार्य है आपका,
1: सब आप ही लोग आशीर्वाद है भैया जी।
0: जी कितने दिन से कर रहे हैं ये कार्य आप?
1: ये करीब मेरे 15 सालों का भी ये करते तो।
0: जी जी, बहुत लंबा समय हो गया आपको ये कार्य करते।
1: हाँ भैया।
0: इसके अलावा आपके शौक कौन कौन से हैं?
1: अब शौक में क्या भैया, तो और कोई तो शौक नहीं, गीत सुनने ही मेरा, बाकी कोई मेरा नशा नहीं है किस चीज में भी, नशा नहीं, गीत सुनने का है, पुराने गीत सुनते रहता हूँ, रेडियो सुनते रहता हूँ।
0: जी जी, ये भी एक बहुत ही अच्छा शौक है। तो
1: हाँ भैया, पुराने ही गाना अच्छा लगता है, नए गाने में मजा नहीं है, पुराने गाने सुनते रहो या छत्तीसगढ़ी पुराना गाना सुनते रहो तो अच्छा लगता है
0: जी। पुराने गानों के शौकीनों को नए गाने पसंद नहीं आते अक्सर। अपने श्रोता साथियों को आप कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे जो उनके दिल को छू जाए?
1: आज भी बहुत बढ़िया गीत है, मन मंदिर का है।
0: जी जी,
1: तो संजीव कुमार वैद्यनाथन का फिल्म है ये।
0: जी
1: 1970 का है, ऐ मेरी आंखों के पहले सपने।
0: तो लीजिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो
1: जी, आपकी बात, आपके गीत।
0: महाराष्ट्र जालना डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ सर जी, विजय पाटिल
1: जी। विजय जी, और बताइए कैसे हैं आप।
0: हाँ सर जी, एक गीत सुनना है
1: जी। कौन सा गीत?
0: मिलने का मौसम आ गया
1: जी। बहुत ही अच्छा गीत पसंद किया है आपने।
0: हाँ, तो ये गीत अभी डेडिकेट करना है हमारे छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के ना वो नरेंद्र तिवारी जी को ये गीत डेडिकेट करना है, क्योंकि अभी सम्मेलन का माहौल चल रहा है ना उधर छत्तीसगढ़ में।
1: जी जी,
0: तो इसी अवसर पर गीत सुनना है सर जी, और उन्हीं के लिए डेडिकेट करना है, और आपका शुभ नाम जानना चाहता हूँ सर जी। मैं
1: जी, मैं मृदुल बोल रहा हूँ।
0: तो ये गीत आपके लिए भी डेडिकेट रहेगा सर
1: जी। जी जी, धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर जी
1: जी।

0: हेलो
1: हेलो, आपकी बात आपके गीत।
0: जी सर नमस्ते।
1: नमस्कार,
0: मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ, जिला कालाहांडी, भैया भवानी पटना, गांव का नाम जगन्नाथपुर, नाम चित्रा संसवा।
1: हाँ चित्रा जी, और बताइए क्या चल रहा है।
0: मेरा काम तो जी होटल चल रहा है
1: जी।
0: हाँ, समोसा, इडली, मालपुआ, जलेबी बेचते हैं
1: जी। जी मतलब भोजन का कार्य है आपका।
0: हाँ जी, और आप कैसे हैं सर।
1: जी हम भी बहुत बढ़िया हैं।
0: ठीक है सर।
1: और मौसम कैसा चल रहा है वहाँ।
0: मौसम तो सुहाना है जी।
1: जी
0: धूप निकला है सर।
1: जी जगन्नाथ की नगरी उड़ीसा से हैं आप।
0: हाँ जी
1: जी,
0: एक बार आओ ना उड़ीसा
1: जी। बचपन में एक बार आए थे हम।
0: हाँ जी, श्री जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करके जाओ
1: जी। कोणार्क जगन्नाथ मंदिर, इसके अलावा भुवनेश्वर हाँ भी घूमा हमने।
0: हाँ जी हाँ जी
1: जी जी, बहुत ही सुंदर जगह है आपका। तो कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप।
0: दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, वो गाना सुना दीजिए सर।
1: जी जी

0: हेलो, आपकी बात आपके गीत।
1: नमस्कार सर जी। रोशन
0: नमस्कार, कौन है और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: जामन बोल रहा हूँ सर, बिलाईगढ़ से। शुक्रिया
0: जी रोशन देवांगन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम आपकी बात आपके गीत में।
1: धन्यवाद सर, धन्यवाद।
0: और रोशन जी बताइए।
1: बस बढ़िया है सर, रेडियो सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं रेडियो का।
0: जी कौन कौन से कार्यक्रम पसंद आते हैं आपको?
1: सभी कार्यक्रम सुनते हैं सर, रात गीत है और ये आपकी पसंद है
0: जी,
1: और फोनिंग कार्यक्रम आता है और छत्तीसगढ़ी वाले, वो सारा कार्यक्रम सुनते रहते हैं दिन भर आपका।
0: कौन सा कार्य करते हैं रोशन जी?
1: मेरा हाथ काम है सर, साड़ियाँ बुनता हूँ मैं हाथ से।
0: जी जी बहुत ही अच्छा कार्य है और कला वाला कार्य है।
1: जी जी
0: रोशन जी बताइए, आपके यहाँ मौसम कैसा है इस वक्त?
1: मौसम तो सर अभी बारिश तो एक आध दिन हुआ है, दो तीन दिन पहले हुआ था, उसके बाद तो गर्मी है सर, अभी उमस वाला गर्मी चल रहा है।
0: जी रोशन जी, अपने श्रोता साथियों को कोई संदेश देना चाहेंगे आप?
1: हाँ सर, वही संदेश है सर, अपने परिवार का ख्याल रखें, मौसम अब बारिश का मौसम आने वाला है तो ये पानी वानी गड्ढा में इकट्ठा ना होने दें।
0: जी जी
1: साफ सफाई रखें बढ़िया।
0: बारिश अपने साथ बहुत सारी बीमारियों को भी लाती है।
1: जी सर, जी सर, जी सर।
0: जी तो कौन सा गीत सुनना चाहेंगे रोशन जी?
1: आज वो वाला गीत सुना देना सर, बरखा रानी जरा जम के बरसो।
0: जी
1: फिल्म का नाम है सबक।

0: आज हमने कुछ श्रोताओं को शामिल किया और उन्हें उनके गीतों को सुनवाया। इसी के साथ ही श्रोताओं, हमारा ये कार्यक्रम आपकी बात आपके गीत यहीं समाप्त होता है। वक्त की कमी के कारण हम हर श्रोता को मौका नहीं दे पाते, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप कॉल करने में 2 सप्ताह का अंतराल अवश्य रखें, जिससे हम अधिक से अधिक श्रोताओं को शामिल कर सकें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग करते हैं प्रत्येक रविवार सुबह 10:30 से 11 बजे के बीच। हमारा फ़ोन नंबर है 2319917 और 2319918। अंबिकापुर से बाहर के श्रोताओं के लिए STD कोड है 0774 अर्थात 07774। और अब अपने रेडियो साथी मृदुल वर्मा को यह कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की आज्ञा दें। नमस्कार।
1: हेलो
2: हेलो,
3: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम आपकी बात आपके गीत। प्रस्तुति सहयोग था मृदुल वर्मा का और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे प्रमेंद्र कुमार। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्स और FM 100.2 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम का पहला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो है फिल्म महल से। आवाज़ है आशा भोसले और देवानंद की, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, धुन तैयार की है कल्याण जी आनंद जी ने और इस गीत को सुनना चाहा है आप सबने। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा, शाइना और निवान शर्मा। दतरेंगी भाटापारा से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर वर्मा, दीपक वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा। सादुल शहर राजस्थान से ओम प्रकाश चौहान, मन्नू प्रकाश चौहान, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश। रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयतेग विरक और मीका विरक। और इंदौर से राम लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी, मालती स्वाति और प्रयाग चौधरी। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर पेश है कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: चौपाल में नवा कार्यक्रम शुरू हुई सबे रविवार संझा के ठीक 7:30 बजे से।
1: हाँ, फरमाइशी कार्यक्रम हवे, संगी अपन फरमाइश भेजी और हमन गीत बजाबो।
0: कौन सा गीत?
2: सुघर गीत जैसे ए
3: तोरे खोपा मा चंदनी गोंदा।

0: दिवस हमर कार्यक्रम में मेल करी किसानवाणी अंबिकापुर 2026@gmail.com। जुलाई के पहला रविवार से कार्यक्रम शुरू हो ही।
1: चौपाल फरमाइश।
2: आइए श्रोताओं, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत, जो है लता मंगेशकर की आवाज में। शब्द रचना है गुलजार की, संगीत राहुल देव बर्मन का और फिल्म का नाम है घर। सुनने की ख्वाहिशमंद हैं आप सब। ग्राम बठेना से बालकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, रेखा और धनेश्वरी वर्मा। चटौदा सारा गांव से सुजान वर्मा, सुहद्रा वर्मा, आयुषी और कृत वर्मा। संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार नेपवानी, संगीता नेपवानी, आकाश नेपवानी, पप्पू जायसवाल, सुमैया राजवाड़े, पूजा, सीता, सागर, आयुषी, हनी और उनके परिवार के सभी सदस्य। कन्या परिसर रोड अंबिकापुर से राखी श्रीवास्तव, महिमा श्रीवास्तव, नितिन श्रीवास्तव, सोनू, वंदना और उनके परिवार के सभी लोग। बेलडी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची और तनु करमरकर और जरुण वरुण। महाराष्ट्र से बाबा साहब वाड़ोदे, नाक्षी चरपे, रजनी कानेरे, कार्तिक और युवराज। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर कार्यक्रम का अगला गीत पेश है। फिल्म का नाम है घर, आवाज लता मंगेशकर की।

0: तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
1: वही तो परेशानी है रिया, कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
0: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
1: क्या 230-600?
0: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
1: पक्का?
0: हाँ, बस कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
2: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।
3: शिवाजी चौक राजिम से अनिल कुमार, अंजुलता आदित्य कुमार और कृष्ण श्रीवास्तव, अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि, दिशा और लवी श्रीवास्तव, पीपरपारा पालचुआ मुंगेली से उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन और वंशिका दिवाकर, बेलर गांव से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन, अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज, ज्योति, रेयांश और गुड़िया ठाकुर, और गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधली। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर पेश है कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम है जोशीला, गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीत तैयार किया है आरडी बर्मन ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत, राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में, आवाज है किशोर कुमार की और फिल्म का नाम है जूली, और इस गीत को सुनना चाहा है आप सबने। उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गंवाड़कर, सरिता गंवाड़कर, सिद्धांत प्रिंस और एकांश गंवाड़कर, नागपुर से शैलेश गंवाड़कर, वैशाली गंवाड़कर, ध्वनि गंवाड़कर, मौजी अस्तु से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष मंडल, कुंदन मंडल, करीना, पूजा, आरती और सुनीता देवी, रायगढ़ से अकरम नूरजहां, डब्लू नूरजहां, वसीम नूरजहां, वलीउल्ला नूरजहां, राजनांदगांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान और इरफान आसमा, और रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी और आदिबा तिवारी, रायपुर से मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन और मोहम्मद हसरैन रजा, और मुंगेली से मोहम्मद इशाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक और मोहम्मद अल्ताफ, बुड़गहन से राम दुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति और उनके सभी साथी। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर पेश है कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।

0: दिल क्या करे जब किसी से।
1: किशोर कुमार के गाए फिल्म जूली के इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद आज यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11:55 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार
2: आकाशवाणी। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा।

0: और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। कबीर जयंती पर आज प्रदेश में हो रहे हैं अनेक कार्यक्रम। मुख्यमंत्री रायपुर के सोनपेर स्थित असंग देव आश्रम में आयोजित महोत्सव में शामिल होंगे और बस्तर का ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध गोंचा महापर्व आज से देव स्नान पूर्णिमा के साथ शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। कबीर जयंती पर आज प्रदेश में अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के सोनपेरी स्थित असंग देव कबीर आश्रम में आयोजित कबीर जयंती महोत्सव में शामिल होंगे। इसके बाद वे दोपहर को हेलीकॉप्टर से चांपा के लिए रवाना होंगे, जहां वे थाना पारा स्थित देवांगन धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कबीर जयंती पर आज प्रदेश भर में सभी प्रकार के मांस मटन की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ में आज से सहकारिता सप्ताह मनाया जाएगा। 6 जुलाई तक चलने वाले इस सप्ताह के दौरान प्रदेश भर में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। रायपुर में आगामी 3 और 4 जुलाई को राज्य स्तरीय सहकारी चिंतन शिविर, सहकार मेला और संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं 6 जुलाई को केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह अन्न भंडारण योजना के तहत प्रदेश के 9 पैक्सों में गोदाम निर्माण कार्य का भूमि पूजन करेंगे। कांग्रेस के 10 दिवसीय संगठनात्मक प्रशिक्षण शिविर का आज अंतिम दिन है। समापन कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेशनल मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा शामिल होंगे। गौरतलब है कि 20 जून से शुरू हुए इस शिविर में 41 जिला कांग्रेस अध्यक्षों को प्रशिक्षण दिया गया है। इस दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित केसी वेणुगोपाल, सचिन पायलट, अलका लांबा और सचिन राव जैसे कांग्रेस के अन्य नेता शामिल हुए। सरगुजा जिले के रामगढ़ में आज से 2 दिवसीय रामगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। महोत्सव के पहले दिन छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति पर आधारित विभिन्न लोक नृत्य और लोकगीत प्रस्तुत किए जाएंगे। बस्तर का ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध गोंचा महापर्व आज से देव स्नान पूर्णिमा के साथ शुरू हो रहा है। इस दौरान श्री जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा का वैदिक विधि विधान से महाभिषेक होगा, जिसके बाद आगामी 15 दिनों तक भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा के मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। जयस्तंभ चौक स्थित मुख्य पोस्टमास्टर जनरल कार्यालय में आज शाम 4 बजे से डाक अदालत का आयोजन किया जाएगा। बस्तर पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में नगरनार थाना क्षेत्र के धनपुंजी आरटीओ नाका के पास कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से लगभग 15 लाख रुपए का 31 किलो से अधिक का गांजा बरामद किया गया है। दोनों ही आरोपी हरियाणा के निवासी बताए गए हैं। पूछताछ में उन्होंने गांजा ओडिशा से हरियाणा ले जाने की बात स्वीकार की। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत कल 0 से 5 वर्ष तक के जो बच्चे पोलियो की दवा पीने से छूट गए थे, उन्हें आज दूसरे दिन स्वास्थ्य कार्यकर्ता और मितानिन घर घर जाकर पोलियो की दवा पिला रही हैं। वहीं कल भी बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। इस अभियान के तहत प्रदेश में 35,98,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। कबीर जयंती पर आज प्रदेश में हो रहे हैं अनेक कार्यक्रम। मुख्यमंत्री रायपुर के सोनपेर स्थित असंग देव आश्रम में आयोजित महोत्सव में शामिल होंगे और बस्तर का ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध गोंचा महापर्व आज से देव स्नान पूर्णिमा के साथ शुरू हो रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे आप शाम 6:10 पर सुन सकते हैं। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम

100.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग।

0: सबदंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज जी ने। लिखते हैं,
2: पेड़ धरती के फेफड़े हैं, वे हवा को शुद्ध करते हैं और हमें नया जीवन देते हैं।
3: धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद के मासिक संस्करण का बेसब्री से इंतजार करते हैं, ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है।
3: आप आगे लिखते हैं, कार्यक्रम में सीआईईटी एनसीईआरटी के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर भारती कौशिक और विमलेश जी की बातचीत प्रशंसा योग्य लगी। कार्यक्रम में समावेशी शिक्षा पर सुनाई गई विस्तार पूर्वक जानकारी बेहद पसंद आई। ये जानकारी रिकॉर्ड करके परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों को भी हमने सुनवाई
2: जी।
3: इस कार्यक्रम की सभी ने तारीफ की। समावेशी शिक्षा पर विस्तार पूर्वक जानकारी सुनवाने के लिए आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है
2: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, प्यारी बिटिया मीठी, अनाया गुर्जर और बेबी किरत ने। वो लिखते हैं,
3: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। आपका ये कार्यक्रम विविध जानकारी और मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भाषाई विविधता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जून महीने के शुरुआती समय में उमंग प्रसारण का श्रोता संवाद कार्यक्रम एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया, जिसने इस कार्यक्रम को अर्थपूर्ण बना दिया और एक प्रकार की नवीनता का संचार किया। सभी श्रोताओं को ये नवीन संस्करण अवश्य पसंद आया होगा।
3: आप आगे लिखते हैं, इस कार्यक्रम की परिचर्चा में आपने समावेशी शिक्षा जैसे अत्यंत प्रासंगिक असमकालीन विषय की ओर सभी श्रोता बंधुओं का ध्यान आकर्षित किया। प्रोफेसर भारती जी ने बड़ी सरलता से और विस्तार पूर्वक समावेशी शिक्षा का परिचय प्रस्तुत किया
2: जी।
3: अर्थ समझाया तथा समावेशी शिक्षा और समतामूलक शिक्षा के बीच का अर्थ स्पष्ट किया। शिक्षा जगत में इन दिनों समावेशी शिक्षा की खूब चर्चा होती रहती है। उमंग कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में भी इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया। ये जानकर और कार्यक्रम सुनकर बहुत ही सकारात्मकता का अनुभव हुआ। आगे आप लिखते हैं,
2: श्रोता संवाद का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी के साथ जितने भी अंक प्रसारित किए गए हैं, उन सभी ने श्रोताओं के मस्तिष्क पटल पर एक गहरी छाप छोड़ी है। श्रोता संवाद हमारे और आपके बीच सक्रिय संवाद का एक विशेष सेतु है। आशा है कि उमंग प्रसारण में नवाचार, रचनात्मकता, आपसी संबंध और संवाद का ये क्रम चलता रहेगा।
3: आपको बहुत बहुत धन्यवाद योगेश ठाकुर जी, आपने बड़ी खूबसूरती से श्रोता संवाद कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपका धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है गोनियाना मंडी भटिंडा पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी का। लिखते हैं,
2: समावेशी शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। हमारी जानकारी भी बढ़ी और मैं ऐसे शिक्षाप्रद कार्यक्रम जरूर सुनता हूँ। आकाशवाणी भटिंडा का तहे दिल से शुक्रिया।

0: तत्वविद विष्णु वाकणकर जी ने की थी, जिसके लिए उन्हें नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
1: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न। हमारा प्रश्न था, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती?

0: एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना ना भूलिए। आइए सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओं, हमारा पहला कार्यक्रम है बुधनी गई है जंगल।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा पेड़ पौधों के संरक्षण और पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: बहुत थक गया आज तो। बुधनी, अरे ओ बुधनी,
1: आई रे आई। आ गया बुधवा, ले आया लकड़ी।
2: इतनी सी चुब्बा कहाँ रह गया?
1: अम्मा अम्मा अम्मा, देख कितने जामुन लाया हूँ जंगल से। इतना बड़ा पेड़ ढूंढा है मैंने आज जामुन का। कल से रोज जाऊंगा बापू के साथ जंगल, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं अम्मा।
2: अरे चुप भी कर, क्या करूँ इतने सारे पेड़ों का। तेरा बापू तो एक भी पेड़ ना काट सकता, रोज यही जरी मरी सी सूखी टहनियाँ तोड़ लाता है बस।
0: फिर वही बात, अरे मैं क्यों काटूँ पेड़ है? जब इतनी सारी लकड़ियों की टहनियाँ ऐसी मिल जाती है, काम तो चल जाता है ना।
2: काम चल जाता है, काम चल जाता है, हाँ नहीं तो। अरे ढेर लकड़ी लाओगे तो इतने सारे पैसे मिलेंगे बेचने से।
0: अच्छा,
2: कुछ कहना करिया, कुछ आड़े पकत के लिए, कुछ समझता तो है ना। हाँ
0: अरे भोली, जब तक जंगल है तब तक आड़ा बखत आएगा ही नहीं। ना लकड़ी की कमी, ना फल गंध की, बीमारी पड़ी तो जड़ी बूटी भी। रही गहना गरिया की बात, तो बुधनी ये जो तू जंगली फूल लगा लेती है ना कभी कभी, उसके सामने सच कहूं सारे गहना गरिया मात।
2: अब ना बहलती मैं तुम्हारी बातों से, कह देती हूँ हाँ, या तो कल एक बड़ा सा पेड़ काट कर लाओ, नहीं तो मेरा मरा मुंह देखो।
0: अरे अरे रोने लगी। अरे सुन तो, अच्छा अच्छा सुन, आप चुप भी हो जा बुधनी, काट लाऊंगा एक पेड़ बड़ा सा। है तो ये पाप ही, हमारा ओझा भी यही कहता है कि पूरे विधि विधान के बाद ही काटो एक पेड़ और फिर लगाओ 10 पेड़, और पुरखों की भी यही रीत है। मगर तू कलह मत कर, मैं काटूंगा पेड़।
1: बापू दुख मत कर, कल हम पेड़ काटेंगे ही नहीं है? कोई बहाना बना देंगे, ठीक?
0: हाँ यही ठीक रहेगा। अरे तू तो बड़ा सयाना है रे चुब्बा।
2: बातें कर रहे हो दोनों?
0: कुछ नहीं,
2: जरूर मुझे बुद्ध बनाने की बात होगी।
0: हाँ। नहीं नहीं नहीं,
2: अब तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। हाँ? अपने सामने कटवाऊंगी पेड़। अब तुम लोगों का कोई भरोसा है क्या?
0: नहीं नहीं नहीं, तू क्या करेगी जंगल में जाकर, हम काट लाएंगे ना एक अच्छा सा पेड़।
1: हाँ अम्मा, वहाँ ऐसे ऐसे भयानक जानवर होते हैं, ऐसे ऐसे जानवर होते हैं अम्मा।
2: अरे चुप, जैसे मैं तो कभी जंगल गई ही नहीं। मैंने तो सोच लिया है, मैं जंगल जाऊंगी ही। सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी करनी है, दिन भर का खाना बनाना है। अब चलो खाना खाकर जल्दी सो जाओ।

0: अरे क्या हुआ?
1: अरे चुब्बा चुब्बा क्या हुआ बेटा?
0: डर मत बच्चे, मैं यही हूँ तेरे पास।
1: अरे कोई डरावना सपना देखा क्या? क्या सपना देखा तूने?
2: अम्मा मुझे डर लग रहा है अम्मा।
0: कोई डरावना सपना देखा होगा बच्चे। अरे क्या देखा तूने?
2: अम्मा अम्मा मैंने देखा कि हम जंगल में पेड़ काट रहे हैं और अम्मा पेड़ रोने लगा, मुझे मत काटो मत मारो, मुझे दर्द होता है, मेरी लकड़ी ले लो, पत्ते ले लो, फूल ले लो, फल ले लो, पर मुझे मत मारो, मैं तो तुम्हारा मीत हूँ माँ। माँ उसने ये कहा, उसने कहा माँ मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है अम्मा, और वो रोने लगा। अम्मा अम्मा जोर जोर से रोया, मगर मगर हमने उसे काट ही दिया, काट ही दिया। वो चिल्लाया अम्मा, मैं भी चिल्लाया।
1: चुप्पा चुप्पा,
0: सजा सजा बेटे सजा, डर मत। अरे वो तो सपना था, सजा सोचा बेटा, मैं तेरे पास ही तो लेटी हुई हूँ यार, है? सोचा बेटा, सोचा, सोचा, शाबाश, अच्छा बेटा है ना, चुप्पा तो सोएगा, सोचा।

0: सो गया। इसने तो मुझे डरा ही दिया। अरे कैसे कैसे सपने देखता है ये।
1: तो फिर कल पेड़ काटने नहीं जाना ना?
0: क्यों नहीं, बिल्कुल जाना है। जा, जा, सो जा। अरे वो तो सपना था, उससे क्या होता है। अरे सो जा, सुबह जल्दी उठना है।

0: चुब्बा, अरे ओ चुब्बा, अरे उठ बेटा, बुधवा उठो ना, भोर हो गई, मैं तैयारी करती हूँ चलने की।
1: अरे तो जाना ही पड़ेगा, तू मानेगी नहीं?
0: ना, मैं तो ना मानू। चल
1: चल, तेरी यही हट है तो चल चल चुब्बा।
0: अरे कुल्हाड़ी तो ले लो, पेड़ क्या हाथों से काटोगे?
1: अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था, आदत नहीं है ना।
0: आदत नहीं है, ये नियत ना है
1: वो।
0: चल चुब्बा, वो रस्सी उठा, लट्ठों को बांधना भी तो होगा ना।
2: अच्छा अम्मा।
0: अरे अब चलो भी।
1: चलो
2: चलो, चलो।

0: मुंह क्यों लटका रखा है बाप बेटे ने? पेड़ की लकड़ी बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे तुम्हारे लिए भी तो चीजें आएंगी अच्छी अच्छी।
1: अम्मा मुझे नहीं चाहिए अच्छी चीजें। हाँ
2: मुझे भी नहीं।
0: ठीक है तुम लोग मत लेना, सारी अच्छी अच्छी चीजें मैं अपने लिए लाऊंगी बस।
3: मैं तो गहना लूंगी, मैं तो साड़ी लूंगी, गहना गरिया लूंगी, मैं तो साड़ी लूंगी, बढ़िया खाना खाऊंगी, मैं तो साड़ी लूंगी।
0: अरे बाप रे, इस जंगल में शेर भी है क्या?
2: अरे शेर तो नहीं है, कोई बघेरा वगैरह होगा। अरे डर मत, ये कुल्हाड़ी है ना, वैसे भी इस तरफ आदमियों का आना जाना लगा रहता है, इससे जानवर इधर नहीं आते।
0: फिर भी
1: अम्मा तू भी चले वापस?
0: ना वापस तो फिर भी नहीं जाएंगे हम। हाँ
1: अम्मा क्या सोच रही है?
0: यही कि कौन सा पेड़ काटना ठीक रहेगा। क्यों बुधवा, ये जामुन कैसा रहेगा रे?
2: ये जामुन?
0: हाँ
2: चलो इसी को काट देते हैं।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा इसे नहीं, ये तो फलों से लदा है।
2: हाँ।
1: हर साल फल देता है, इसे मत काटो।
0: हाँ ये बात तो ठीक है, जामुन कहाँ से खाऊंगी? तो फिर फिर उस साल के पेड़ को काटते हैं चलो।
2: अरे रे क्या बात करती हो, वो तो अभी पूरा बढ़ा भी नहीं है, ये तो वैसे हुआ कि जैसे किसी को छुटपन में ही मरना पड़े।
0: हाय रे बात तो तुम्हारी सच है।
1: तो अम्मा ऐसा करते हैं, वो जो देवदार के बहुत सारे पेड़ है ना उनमें से एक को काट देते हैं।
0: अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। कितने सुंदर हैं ये पेड़, अरे उन्हें रहने दो। ये रोन का पेड़ कैसा रहेगा बुधवार?
2: ये
0: है भी काफी पुराना, फल भी नहीं है इस पर। तो
2: फूल तो हैं, फल भी आएंगे, अरे हजारों पक्षियों की भूख मिटाएंगे। नहीं नहीं नहीं नहीं ठीक नहीं रहेगा इसे काटना। चलो ठीक है काटना ही है तो ये नीम का पेड़ काट देते हैं।
0: अरे पागल हुआ है, ये नीम का पेड़ तो दवा दारू के काम आता है, कोई बीमारी नहीं जिसका इसके पास इलाज ना हो। हाँ
2: अच्छा तब तो अरार का पेड़ भी छोड़ना पड़ेगा है?
0: क्यों?
2: इसका भी नीम वाला हाल है, बल्कि ये तो सुना है सबकी किस्मत भी जानता है, इसे कौन काटे।
1: चलो आगे देखते हैं, कोई ना कोई बेकार पेड़ तो मिल ही जाएगा, ऐसा क्या है।
0: हाँ हाँ चलो चलो आगे चलकर देखते हैं। चलो
2: देखो ये पेड़।
0: देख लो।
1: अम्मा अम्मा वो देखो ओक का पेड़। और वहीं बबूल भी है। चलो अम्मा काटे
0: चलो। इधर से निकल कर आओ।
1: अच्छा
2: ध्यान से
1: बेटा। आई
0: क्या हुआ चुप्पा?
2: क्या हुआ?
1: अम्मा अम्मा कांटा चुप गया। आई
0: अरे दिखा दो।
1: अम्मा लगता है पेड़ कह रहे हैं हमें मत काटो, हमें मत काटो। बापू इन्हें मत काटना, देखो ये रो रहे हैं।
2: ठीक है नहीं काटेंगे। हाँ।
1: देखा अम्मा कैसे लहलाने लगे, जान बचने से खुश हो रहे होंगे है ना?
2: हाँ बेटा ये देखो, ये चीड़, देवदार, ओक, खजूर और ताड़।
0: हाँ।
2: ये तो है ही सदाबहार,

0: इन्हें काटने से क्या फायदा?
1: अरे नुकसान भी क्या है?
0: बहुत नुकसान है। हमारे पुरखे कहते थे इन्हीं की बदौलत हवा पानी साफ रहता है, बरखा होती है, बाढ़ रुकती है। सोचो हमारी तरह सभी लोग चल दें पेड़ काटने तो कितना नुकसान हो जाए।
2: रहने दो अपनी बातें, कोई और पेड़ ढूंढो।
1: ये कौन सा पेड़ है? ना फूल ना फल।
0: क्या पता, मुझे सबके नाम थोड़ी मालूम है, मगर मैं तो इसे नहीं काटूंगा।
1: क्यों?
3: देखो ना माँ, ये पेड़ हजारों लाखों कीड़ों का घर है, उन्हें दूध पिला रहा है।
1: और वो वाला,
2: उसमें तो ना कीड़े दूध पी रहे हैं, ना फल है, ना फूल है, कुछ भी नहीं है उसमें, और ना ही उससे कोई लाभ है। उसे तो काटो कम से कम।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा, उसे छोड़ दो। देखो अम्मा, इस पेड़ की घनी पत्तियों में सैकड़ों पंछियों का घोंसला है।
0: हाँ।
3: पेड़ कटा तो वो सब बेघर हो जाएंगे। सोचो माँ, अगर हमारा कोई घर तोड़ दे तो हमें कैसा लगेगा?
0: हाँ बिल्कुल।
1: सचमुच इस पर तो कोयल भी रह रही है। बतवा, रहने दे इसको भी।
0: अच्छा।
1: मुझे कोयल का गाना बहुत अच्छा लगता है। तू रहने दे इस पेड़ को तो।
0: ठीक है। अरे सुन, कोयल खुश होकर तुझे धन्यवाद दे रही है बुधनी।
3: अम्मा, जिन जिन पेड़ों को तुमने बचा लिया वो सभी तुम्हें दुआएं दे रहे होंगे।
2: मुझे बनाओ मत, मैंने अभी बदला नहीं है अपना इरादा। चलो ढूंढो काटने लायक पेड़। हाँ। लो, इसमें हंसने की क्या बात है? चलो ढूंढो ना।
0: अरे अब कहाँ से ढूंढे, जंगल के सारे पेड़ों को तो तूने बख्श दिया, अब किसे काटे?
2: क्या, सारे पेड़ों को बख्श दिया?
0: और क्या।
2: ना जी ना, अभी तो हजारों पेड़ होंगे इस जंगल में।
0: हाँ है तो सही, मगर वो सब भी इन्हीं के भाई बंद है, जो बात इनके साथ वही उनके साथ।
2: जीवा जीवा जी, अब तो पेड़ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा।
1: अरे चुप।
0: क्या हुआ?
2: अरे चुप्पा। हाँ, पेड़ अब नहीं कटेगा, तो यही बात थी ना। तुम दोनों शाम को फुसफुसा कर यही बातें कर रहे थे ना, कि अम्मा को जंगल में बहला लेंगे और पेड़ नहीं काटेंगे। है,
0: समझ गई है।
3: तू भी तो मान गई ना कि कोई भी पेड़ कटने लायक नहीं है, अब तू ही बता किसे काटे।
0: बता?
2: रहने दे, तुम दोनों बड़े सयाने हो,
1: मुझे हमेशा ऐसे ही बहला देते हो। मैं जिस भी पेड़ पर हाथ रखूंगी तुम उसी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बनाओगे कि मुझी को दया आ जाएगी। हाय रे, मेरी इच्छाएं क्या कभी पूरी नहीं होंगी?
0: होंगी होंगी, जरूर होंगी, मगर ऐसे नहीं।
1: फिर कैसे?
0: चल घर, चलते चलते बताता हूँ कि कैसे।
1: चल। बता।
0: सुन, हम सब मिलकर बहुत सारे पेड़ लगाएंगे अपने घर के आगे, फिर हमें फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, बुलबुले आएंगी, कोयल गाएंगी, गीत गाएंगी, महुआ सींचेंगे, हम फिर मेले जाएंगे, खूब काम करेंगे, हम तीनों मिलजुल कर ताल बनाएंगे, मछली पालेंगे, मछली, फल, सब्जी, महुआ, कटहल बेचेंगे। हाँ, पैसे पाएंगे, बुधनी को देंगे, बुधनी खुश होगी, कलह नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, झगड़ेगी भी नहीं। क्यों बुधनी, तब भी झगड़ेगी क्या?
3: क्यों अम्मा, तब भी झगड़ेगी?
0: बोल ना।
2: नहीं रे नहीं, मुझे क्या शौक है झगड़ने का। चल।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम अर्जुन का निशाना।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए।
2: बात बहुत पहले की है। हमारे देश में एक राजा थे पांडु। पांडु के पांच पुत्र थे जिन्हें पांडव कहते हैं। युधिष्ठिर इनमें सब में बड़े थे। युधिष्ठिर से छोटे थे भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। भीम गदा चलाने में बहुत कुशल थे और अर्जुन धनुष बाण चलाने में। गुरु द्रोणाचार्य समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे। एक दिन उन्होंने पेड़ पर मिट्टी की एक चिड़िया टांग दी। फिर राजकुमारों से चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा। गुरु द्रोणाचार्य ने बारी बारी से अपने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने चिड़िया की ओर संकेत करते हुए पूछा,
3: उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है?
2: किसी ने कहा,
4: गुरुजी, मुझे राजकुमार, पेड़ और चिड़िया सब कुछ दिखाई दे रहा है।
2: किसी ने कहा,
5: मुझे पेड़ और चिड़िया दिखाई दे रही है।
2: किसी ने कहा,
6: मुझे चिड़िया के पंख दिखाई दे रहे हैं।
2: अर्जुन की बारी आने पर द्रोणाचार्य ने उससे भी वही प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा,
7: गुरुजी,

0: मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है।
1: अब द्रोणाचार्य ने बारी बारी से सभी को बाण चलाने का आदेश दिया। अर्जुन का निशाना तो ठीक आंख पर लगा, किंतु और भाइयों का निशाना चूक गया। द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को बताया,
2: क्या तुम लोग समझ गए कि अर्जुन का तीर निशाने पर क्यों लगा? जिसे केवल लक्ष्य दिखाई दे वही सफल होता है। तुम लोगों को लक्ष्य के साथ साथ और बहुत सी चीजें भी दिखाई दे रही थीं, इसलिए तुम्हारा ध्यान बट गया और निशाना ठीक नहीं बैठा। अर्जुन का ध्यान केवल चिड़िया की आंख पर था, इसलिए उसका निशाना बिल्कुल ठीक बैठा और बाण ठीक चिड़िया की आंख पर लगा।
3: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम अर्जुन का निशाना, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग, मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 बस होने ही वाले हैं और हम हाजिर हैं प्रोग्राम चयन लेकर। श्रोताओं, आज के इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करेंगे दुनिया की। जी हाँ, यही दुनिया जिसमें हम रहते हैं और जिसे हम संसार, जगत, विश्व, पृथ्वी कई नामों से पुकारते हैं। क्या कभी आपके मन में ये विचार आया श्रोताओं कि ये दुनिया आखिर बनी कैसे? यदि वैज्ञानिकों की माने तो हमारी दुनिया और पूरा ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले एक विशाल विस्फोट, जिसे बिग बैंग कहा जाता है, से बना था। इसके बाद करीब 4.5 अरब वर्ष पहले गैस और धूल के बादलों के आपस में टकराने से हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ। ये तो हुआ वैज्ञानिक दृष्टिकोण, पर यदि हम अध्यात्म की बात करें तो दुनिया का बनना ईश्वर की मर्जी से हुआ। चलिए, यदि हम यही मान लें तो सोचिए भला कि भगवान ने क्या सोचकर ये दुनिया बनाई होगी।

श्रोताओं, वैसे तो इस दुनिया में जीवन जीने का कोई एक निश्चित फार्मूला नहीं है, पर हाँ, कुछ बुनियादी सिद्धांतों और सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाकर हम एक सार्थक और सुखी जीवन जी सकते हैं। जैसे संतोष और सादगी, ज्यादा लालच न करना, वर्तमान में जीना, दिखावा न करना, अपने स्वभाव को ऐसा बनाना कि आपकी मौजूदगी से लोगों के जीवन में मिठास खुले, और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये स्वीकार करना कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, ये हमारे नियंत्रण में नहीं है, हमें बस अपना कर्म करते जाना है।

0: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
1: वही तो परेशानी है रिया। कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
0: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
1: क्या 230-600?
0: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
1: पक्का?
0: हाँ, बस कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
2: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।
3: श्रोताओं, इस वक्त आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी अंबिकापुर और आप सुन रहे हैं एक ही शीर्षक पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चयन। आज के इस कार्यक्रम का शीर्षक क्या है अब तक आप समझ गए होंगे, यदि नहीं समझे तो कार्यक्रम के आखिर में हम हैं ना बताने को। श्रोताओं, दुनिया में रहने के लिए ना हर किसी को कुछ ना कुछ करना होगा, मतलब अपना जीवन चलाने के लिए पैसे कमाने होंगे, क्योंकि बिना इसके न तो आप दुनिया में आगे बढ़ पाएंगे और न ही समाज में अपनी जगह बना पाएंगे। ये तो आप हम सब जानते हैं कि पैसे की जीवन में क्या कीमत है। अपना पेट भरना हो, अपने शौक पूरे करने हो, अपना एक स्टेटस या रुतबा बनाना हो, हर जगह पैसे की जरूरत पड़ती है। तो कहने का मतलब यह है कि दुनिया में रहना है तो काम करो प्यारे।

एक दिन तेरे मेरे ख्वाब होंगे पूरे, ऐसी कोई बात कर चल लो जमूरे, रह जाए सब दिल थाम कर प्यारे।

श्रोताओं, एक बात और आपने सुनी होगी कि दुनिया को अपनी आंख से देखना चाहिए। इस बात का ना बड़ा गूढ़ अर्थ है। वो ये कि हमें जीवन को, लोगों को समझने में दूसरों का सहारा नहीं लेना चाहिए, बल्कि अपनी सोच और समझ का इस्तेमाल करना चाहिए। इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे पास है, और बहुत कुछ ऐसा भी है जो दूसरों के पास है। तो जो अपने पास है उसकी खुशी मनाइए, न कि जो दूसरों के पास है उसका गम।

यूं तो घर ही में सिमट आई है दुनिया सारी, हो मयसर तो कभी घूम के दुनिया देखो। जी हाँ श्रोताओं, ये भी एक तरीका है दुनिया और दुनियादारी को समझने का। निकल जाइए सैर सपाटे पर, अपने आसपास, अपने देश और हो सके तो पूरी दुनिया। जानिए विभिन्न संस्कृतियों को, विभिन्न धर्मों को, लोगों को, उनके रहन सहन को, उनकी सोच को, उनके विचार को, आधुनिकता और विज्ञान की ऊंचाइयों तक उनकी पहुंच को। विचार करिएगा जरूर।

और इस गीत के साथ ही आज का चयन कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। श्रोताओं, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आज के कार्यक्रम का शीर्षक था दुनिया। और आज हमने इस कार्यक्रम में जिन गीतों को शामिल किया उनकी फिल्में थीं तीसरी कसम, मदर इंडिया, हाथी मेरे साथी, अमृत और अराउंड द वर्ल्ड। गायक कलाकार थे मुकेश, लता मंगेशकर, मीना मंगेशकर, उषा मंगेशकर, किशोर कुमार, अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज, मुकेश और सरदा।

0: मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्स और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजने वाले हैं समाचार। अब से बस कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी देश सेशल्स की अपनी यात्रा के तीसरे

0: दिन आज विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायकर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री 3 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कल सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लिया। ये सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ है। श्री मोदी विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हराइजन से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों एक ऐसे विश्व के लिए प्रयासरत हैं जहां विकास अधिक समावेशी हो और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं समकालीन वास्तविकताओं पर ध्यान केंद्रित करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जन विश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुकदमों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एम सुंदरेश और शिलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी BLO कल से 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे और पात्र मतदाताओं से भरे हुए आवेदन पत्र एकत्र करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज नई दिल्ली के संसद भवन में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन ने श्री खड़गे को शपथ दिलाई। श्री खड़गे कर्नाटक से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण बड़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक दोपहर में लगभग 0.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स 425 अंक गिरकर 76,676 पर और निफ्टी 112 अंक कम होकर 23,944 पर था। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन जुस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचार अभी हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव और FM बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए खेती की बात। जानकारी का विषय है दुधारू पशुओं के प्रमुख रोग और उनकी रोकथाम।
2: दुधारू जानवरों की कई ऐसी बीमारियां हैं जो जानवरों के लिए घातक होने के साथ साथ रोगग्रस्त पशुओं की उत्पादन

0: उत्पादन क्षमता को प्रभावित करता है। अर्थात ये बीमारियां आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और पशुपालकों को ऐसे रोगों के बारे में समुचित जानकारी रहनी चाहिए। आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण दुधारू जानवरों के ऐसे रोग कुछ इस प्रकार हैं: गलघोंटू, एकटंगी, एंथ्रेक्स, खुरपका, मुंहपका, कृमि रोग, थनैला रोग। किसान भाई, आइए देखते हैं गलघोंटू। यह एक प्रकार का संक्रामक रोग है जो बीमार जानवरों के स्वस्थ पशुओं में फैलता है। इस रोग के लक्षण इस प्रकार हैं: बीमार पशु सुस्त हो जाता है, खाना पीना बंद कर देता है, मुंह से लार आने लगती है, नाक से पानी आने लगता है, बीमार पशुओं का तापमान 106 से 108 अंश सेंटीग्रेड तक रहता है, गले के आसपास सूजन आ जाती है जो स्पर्श करने पर गर्म महसूस होती है, श्वास लेने में कठिनाई होती है तथा बीमार पशुओं की जीभ बाहर निकल जाती है। इलाज के अभाव में आक्रांत पशुओं की मृत्यु 24 से 48 घंटे के अंदर हो जाती है। एकटंगी, यह एक प्रकार का जीवाणु जनित रोग है। इस रोग के लक्षण कुछ इस प्रकार हैं: आक्रांत पशु लंगड़ा कर चलने लगता है, आक्रांत पशु खाना पीना बंद कर देता है, शरीर का तापक्रम 106 से 108 अंश हो जाता है, आक्रांत पशु सुस्त हो जाता है, शरीर के मांस वाले भाग विशेषकर कंधा, गर्दन या पिछले क्वाड्रेंट में सूजन आ जाती है, सूजन स्पर्श करने पर पीड़ाजनक होती है और उससे एक विशेष प्रकार की आवाज़ आती है, आरंभ में तापक्रम काफ़ी बढ़ जाता है लेकिन मरने से पहले काफ़ी नीचे उतर जाता है, बीमार पशु का इलाज समय पर न करने पर उसकी मृत्यु 24 से 48 घंटे के अंदर हो जाती है। एंथ्रेक्स, यह भी एक प्रकार का जीवाणु जनित रोग है। इस रोग के लक्षण कुछ इस प्रकार हैं: आक्रांत पशु कांपकर एकाएक जमीन पर गिर जाता है, श्वास की गति तेज हो जाती है, कुछ ही क्षणों में पशु की मृत्यु हो जाती है, नाक मुंह तथा मलाशय से रक्त मिला हुआ स्त्राव निकलता है। तीव्र रूप में रोग का लक्षण कुछ इस प्रकार होता है: पशु अत्यधिक बेचैन मालूम पड़ता है, पैरों से लड़खड़ाते हुए और चक्कर काटते हुए चलता है, पेट गले इत्यादि पर सूजन आ जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन लाल हो जाती है, खून लिए हुए दस्त होती है, तापक्रम 106 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है, ग्रसित पशु 24 से 48 घंटे में मर जाता है, मुंह से रक्तयुक्त लार निकलती है, शरीर के प्राकृतिक छिद्रों जैसे नाक मुंह एवं मलाशय आदि से काला कोलतार जैसा चमकदार झाग युक्त स्त्राव निकलता है जो जमता नहीं है। खुरपका या मुंहपका, यह एक विषाणुजनित रोग है। इस रोग के लक्षण कुछ इस प्रकार है: बीमार पशु खाना पीना बंद कर देता है, आरंभ में बुखार हो जाता है, मुंह से लार आने लगता है, जानवर लंगड़ाने लगता है, दुधारू पशुओं की छीमी एवं थन पर भी घाव हो जाता है जिसके कारण दुग्ध उत्पादन में काफ़ी कमी आ जाती है, कभी कभी बीमार पशुओं का खुर बाहर निकल आता है, काम करने वाले पशुओं में काम करने की क्षमता काफ़ी कम हो जाती है। रोकथाम एवं नियंत्रण के उपाय, वर्षा ऋतु के प्रारंभ में फैलने वाले इन रोगों से बचाव के लिए सावधानियां बरतनी चाहिए। बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग कर देना चाहिए, स्वस्थ पशुओं को साफ सुथरी जगह में रखना चाहिए, रोग की आशंका होते ही तुरंत समीप के पशु शल्य चिकित्सक को सूचना देकर बुलाना चाहिए ताकि रोग का सही समय पर इलाज हो सके और आगे न फैलने न पाए। रोग से मरे पशुओं के शव खुले मैदान या तालाब में नहीं फेंकना चाहिए, अर्थात शव को जला देना चाहिए। शारीरिक विकास दर में कमी, गर्भधारण क्षमता का देरी से विकास, दूध के उत्पादन में कमी, गाभिन होने में देरी, गर्भधारण में परेशानी, इसके रोकथाम, बरसात से पहले व बरसात के बाद में सभी पशुओं को कृमिनाशक दवा खिलाएं, पाइपेराजिन, वेनमिंट, अल्वेंडाजोन, पानाक्योर या निकट के पशु चिकित्सकों की सलाह से दिया जा सकता है। दवाई मिला पशु आहार इसके लिए सरल व सस्ता उपाय है। वेटफेन 600 पशु चिकित्सकों की सलाह से दिया जा सकता है। अधिक जानकारी एवं उपचार हेतु निकट के पशु चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। किसान भाइयों, इस तरह से हम थोड़ा सा सावधानी बरत के एक अच्छे पशुपालक हो सकते हैं और पशुओं से होने वाली जो आमदनी है या उनका उपयोग करके जो हम आर्थिक लाभ लेते हैं वह और अधिक मात्रा में ले सकते हैं और उनका ख्याल भी रख सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बात। जानकारी का विषय था दुधारू पशुओं के प्रमुख रोग और उनकी रोकथाम। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्स और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:10 हुए हैं। नीचे प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर गोसाइन।

राम राम, जय जोहार। घर गोसाइन कार्यक्रम में आज कबीर के दोहा के साथ मैं हूँ आप मनकर संगी किस्मतिया बहन। और भाई हमर स्वीकार करी आप मन, जय जोहार है। और आप मन से उम्मीद करती हूँ कि आप मन बने बने हुई है। जम्मो बहनी मन संगी मनला भाई यही उम्मीद करती हूँ कि सब जन बने बने हुई। देखिए आज संत कबीरदास के जयंती है और ये जो हमार महान संत कबीरदास जी रहन इनके जो आज पावन बेला हो पर सादर नमन करत थी। और संगे संगे देखी मैं यही कहना चाहूँ कि संत कबीर महान संत ही नहीं रहन बल्कि एक समाज सुधारक, कवि और मानवता के संदेश देवैया रहन। ओमन जो है अपन दोहा जितना भी उनका जो वाणी रहीस ओकर माध्यम से जो हमर मन से मनना है तेमन में प्रेम, सच्चाई, समानता और भाईचारा के सीख दे रहन। कबीरदास जी अंधविश्वास, भेदभाव और ऊंच नीच के हमेशा से विरोध करत रहन और सबो मनखे मनला एक समान में लेके चलत रहन कि समाज में सब जन एक बरोबर हैं। कबीरदास जी कर एक ठुआ प्रसिद्ध हुआ है कि भाई ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। कहे के मतलब यह है कि आज के समय में हमन ला अपन बोली वचन मन भी जो है वोला संभाल के बोलना है। आज हमन कोई जग भी ठरस ले गोठियाए देथन है नहीं तो ओकर मन में दुख पहुँचत है, ओला अच्छा नहीं लगी कोई बात हर हमर, ये चीज़ के हमन ला ध्यान रखना है। देखिए हमन कथन न कि हमार यही बोली हर हमन ला पान खवाती है, यही बोली से हमन जो है समाज में नीचे भी जाती। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमार बोली वचन हर बढ़िया रहे। और देखिए सिखा थे मतलब दोहा हर भी कि मीठा और प्रेम से भरा वचन जो है हमन ला बोलना चाहिए जेकर से दूसर के मन में सुख मिले और अपन मन में भी जो है हमन ला शांति मिली। कोई हर बढ़िया कन अगर कोई लब उठिए तो ओकर संगे संगे हमर मन में भी हमन ला शांति भेटायल। संगे संगे देखिए आज मैं यही कहना चाहूँ कि भाई कबीर जी के जितना संदेश है उनका जितना ज्ञान बन रही ओकर ए समय में बहुत जरूरत है। अगर उनकर बताल रास्ता में हमन चलत ही और प्रेम एकता और सद्भावना जो है यहर बढ़त जाही अगर उनकर संदेश ला उनकर ज्ञान ला मान के अगर हमन चलत ही तब। तो भाई जम्मो झनला आज कबीर जयंती के मैं बधाई भी देत हूँ और उम्मीद करत हूँ कि हमार जो कबीरदास जी रहन इनकर रिकिम रिकिम के दोहा है जो कि समाज ला एक ऊँचा स्थान पर ले जाकर जो प्रयास रही सोला करे रहन। और अगर मान के चली कि अगर उनकर संदेश मनला उनकर जम्मो दोहा मन के अगर अर्थ मनला समझब और वही ला अपन जीवन में उतारे के प्रयास करब तो हमार समाज जो है निश्चित ही एक अच्छा राह में चल सकी। जो आज के समय जो हमारे ख़राब हुए थे बहुत जरूरी है कि कबीर के जो जितना उनका संदेश मना है ओला हमन अपन जीवन में धारण करी। बनी हो देखी गोट बात नकदे गन करूँ, अभी बहुत सारा बात ऐसा है जो अपन से गुठियाना है आ जाए के। तो देखी कबीरदास जी के बारे में हमन चर्चा करें चटी के सन, लेकिन एक बात आ हुआ है कि जो मौसम के बदलाव हुआ थे अभी और बड़ उमसा है जीव हर हलाकान हो जाता है। और देखी लगे नहीं कि अजय बदरी पानी करीसा है तो बदर बरसी कही के बाकी बरसत नहीं आए। हमार बहनी मन भी बारी मनला बुआइन हो ही मकई उकई लग गई सोही मकई रह मन, लेकिन देखी अगर बरखा नहीं हो तब सोची का हाल होई। और ये समय में सबसे ज़्यादा हमार स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। एक बार बहुत जरूरी है कि हमन अपन स्वास्थ्य के तीहा जतन बढ़िया कन करी और घर से निकले से पहले भरपूर मात्रा में हमनला पानी पीना है ताकि जैसे अगर प्यास लगे चाहे झीन लगे लेकिन थोड़ा थोड़ा देरी में पानी ला जरूर पीना है। और संगे संगे देखी नींबू पानी होगी चाहे हमन नारियल पानी पी थी शरबत कहीं का चीज़ ला पिया थी जम्मू चीज़ ला जो मतलब शरीर ला हमला हाइड्रेट रखना है। अगर हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाए तो भाई कहिया कि ये समय में ज़्यादा करके देखत हूँ मैं कि उल्टी दस्त का शिकायत है और बुखार ले लेता है और जल्दी ठीक भी नहीं होता है। तो जरूरी है कि बहरे जाए से पहले जो है हमन पानी भरपूर मात्रा में पी के निकली खाली पेट बहिरे झीन जाए और बासी खराब खुला खाना मनला ओला नहीं खाना है भाई ताज़ा ताज़ा वो साफ़ सुथरा खाना खाना है। छोटे लड़का और

बुजुर्ग बीमार मन है उमन के खास तौर से हमन ला ध्यान रखना है। देखी मौसम कर बदलाव होल तो शरीर हमार तुरंत ओकर अनुकूल नहीं हो पायल, और अगर शरीर ला अनुकूल करना है तो हमारा मौसम के अनुसार ही चलना पड़ी, और ओकर बर खान पान स्वास्थ्य कर जो अपन ध्यान रखना है तो खान पान ला बढ़िया करना है, और साफ सफाई के विशेष रूप से ध्यान देना है। बात तौरे कना है, ढेरे कन करूँ भी, लेकिन एक ठन गीत है तो मैं सोचा था पहले आप मन लगी चले गीत ला सुनवा लिया थी, तेकर आगुज बढ़ करबो।

कारी वो ते काबर दे ठसगारी बिल बिल ही टूरी कारी वो ते काबर दे ठसगारी मैं करिया हूँ कोयला सही मैं करिया हूँ कोयला सही कहूँ चिटी हसकारी वो ते काबर दे ठसगारी बिल बिल ही टूरी कारी वो ते काबर

पहिर बे कोष्टौहा लुगरा मैं पहिर हूँ खादी वो मोर बन बे परम पियारी।

संगी साथी मुला बतावे तोर सुरताला करते यार। अबक याही तबक याही रास्ता जो हत रही थे यार। अब काबर हवा लचारी वो ते काबर दे थसगारी। बिल बिल ही टूरी सारी वो ते काबर दे थसगारी। मैं करिया हूँ कोयला सही मैं करिया हूँ। मैं करिया हूँ।

0: तय काबर दे ठसजारी, तय काबर दे ठसजारी, तय काबर दे ठसजारी।
1: हाँ तो देखी भरतलाल हरिंदकर गाल जो छत्तीसगढ़ी गीत रही से ला हमन सुने। बहनी हो आज सोमवार दिन है और हमन लान थी बहनी कर कहानी, जिमें कि भाई हमार जो सुमतिया बहन है एक ठन बहन कर कहानी ला लेके आनी है मनीषा बहन, तो लेगी चली इनकर कहानी ला सुना थी तेगर आगू गुठिया।
2: जय जोहार संगी हो, मैं हूँ सुमतिया बहन। कार्यक्रम घर गोसाइन में जम्मू संगी संगवारी मनकर

0: स्वागत करता हूँ। संगी हो आज दिन हवे बहनी कर कहनी कर, हमर संग बैठीन है मनीषा बहिन और हमर कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है मनीषा बहिन कर। जय जोहार, राम राम मनीषा बहिन।
1: जय जोहार रेडियो के श्रोताओं मन के, जय जोहार और मोर प्रणाम।
0: महिला गृह उद्योग के तहत का काम बुता कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि बड़ा विस्तार से हमला मनीषा बहिन अपन कहनी ला हमर से साझा करे बर हमर संग शामिल हुई है, तो बताई मनीषा बहिन कैसे शुरुआत करे ये काम बुता कर और का काम करते और कैसे करते बताई।
1: पोस्ट निकला आपका केंद्रीय विद्यालय से जिसमें मेरी मम्मी ने कहा कि तुम भर दो इसको, तो मैंने उसे भरा और मैं बच्चों को अरगंडी के कपड़े का रोज बनाना सिखाती थी और वेस्ट मटेरियल है, आइसक्रीम की डंडी है, उससे फ्लावर पॉट बनाना सिखाई। ऐसे करते करते फिर मैं अंबिकापुर में आई और अंबिकापुर में केंद्रीय विद्यालय में भी मैं क्राफ्ट की टीचर थी, तो 9 साल तक का एक्सपीरियंस है मेरे पास केंद्रीय विद्यालय डीएवी विश्रामपुर में।
0: जैसे मैं सुने हो कि जूट के भी काम कर था, तो ये कैसे शुरुआत कर कैसे काम कर?
1: हाँ, अभी मैं घर पे जूट का वर्क करती हूँ। जूट में क्या है, जो सुतली आती है तो सुतली से अपन पावदान बनता है, तो उसमें बहुत सारे लोग समूह बनाकर हम लोग पावदान वगैरह बनाते हैं और जूट का हैंगिंग वर्क करते हैं और उसको फिर मार्केट में सेल कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, जो थोड़ा मतलब घर में रहने वाली महिलाएं हैं या गरीब महिलाएं हैं तो वो जूट का पावदान बनाकर उसको सेल करती हैं, उनसे कुछ उनकी आमदनी हो जाती है।
0: जैसे कह रहा मतलब कि महिला गृह उद्योग के तहत मनीषा बहन बहुत सकन बहनी मतलब भी जोड़ के एक काम बुता करता है, एक आर्थिक आमदनी ही नहीं कमाते हैं बल्कि उमन आत्मनिर्भर भी बनाता है। देखिए एक बेकार सामान से जो फालतू पड़ी से हमारे घर के कोई में उला एक सुंदर वस्तु के रूप में कैसे तैयार करते
1: हैं। जो बॉटल आता है अपन उसको पीने के बाद फेंक देते हैं और हम क्या करते हैं, उस बॉटल को उठाकर धो के उसका 20 से 2 पार्ट करते हैं और 2 पार्ट करने के बाद हम उसको पुट्टी से या प्लास्टर ऑफ पेरिस से उसमें पूरा अमेरिकन डॉल का शेप दे देते हैं और उसके बाद उससे फैब्रिक कलर से कलर करके तो पूरा डॉल का शेप देते हैं हम उसको और उसके बाद उसको फ्लावर पॉट बना देते हैं। उसमें अपन अपने घर के कोने को सजा सकते हैं, जो रोज फूल खिल रहे हैं अपने गार्डन में उस गार्डन की कटिंग करके उसको अपन लगा सकते हैं और वो मार्केट में भी काफी महंगा सेल होता है, 1000-2000 के उसमें सेल होता है वो।
0: ये आज के आधुनिकता में जहाँ अनी बनी के प्लास्टिक के सामान इधर उधर के सामान हम जैसे खरीदा थी, तो का वो जगह में अभी भी वेस्टेज सामान से बनल वस्तु या हमर जूट से बनल वस्तु, हमर जो भाई स्वदेशी एक सामान है एक तरह से कही, जो हमर कलाकृति है हमारे हाथ में, उहर महत्व रखते?
1: हाँ बिल्कुल महत्व रखता है। आज भी देखिए मोती का पर्स है, हम मोती का पर्स बना के अगर उसे मार्केट में बेचने जाते हैं तो वो भी 2000 से लेकर 3000 तक के रुपए का मिलता है। तो इस तरीके से पुरानी जो साड़ियां है उसका पावदान बनाकर भी हम सेल कर सकते हैं और अपने घर का हर एक कोना मतलब खूबसूरत से सजा सकते हैं हम।
0: हस्तशिल्प है या हमार जो कलाकृति है एक तरह से हमार जो परंपरा है हमार संस्कृति है का एकर से भी जुड़ल है?
1: हाँ बिल्कुल जुड़ा हुआ है। जैसे कि हम कैंडल बनाते हैं, मोमबत्ती खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो दिवाली है तो दिवाली में हम कैंडल खरीद कर ना अपने घर पे ही जो वेस्ट दिया वगैरह जलाते हैं उसके ऊपर कैंडल को कैंडल बना सकते हैं, मतलब कैंडल मेकिंग कर सकते हैं हम और उससे सजा सकते हैं।
0: तो का एमे जो एक काम होता है एमे हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बहनी मन है या शहरी क्षेत्र के जो बहनी मन है जो कुछ काम बूता नहीं कराता है, अपन अगर हाथ में हुनर है तो उला किस तरह से शुरुआत करे कैसे शुरुआत कर सकते हैं?
1: वो अभी जैसे दिवाली आने वाला है सोचिए, या फिर
0: दिवाली में बहुत बड़ा मांग रहेल हर चीज के, जैसे दिया है
1: तो दिया को अपन कलर कर सकते हैं और उसको सुंदर बनाने के लिए फैब्रिक कलर से डिजाइन
0: से
1: मोमबत्ती हाँ ये सब चीज से दिया को सजा कर और उसको मार्केट में अपन बेच सकते हैं। इस तरीके से एक छोटा सा उद्योग अपना चालू हो सकता है।
0: अपन देखिए जैसे पेंटिंग भी सिखाल जाते हैं आप मन जी तो इमे का होते
1: पेंटिंग से जैसे फैब्रिक कलर आता है तो उससे अपन चादर बना सकते हैं, बड़े बड़े फूलों की आकृतियां उसमें उभार सकते हैं और क्या कहते हैं पेंटिंग से ही अपन बहुत सारी चीजों में मतलब कलर कर सकते हैं, जैसे बैम्बू बांस का बना हुआ आइटम है उसमें कलर करके उसको आकृति देना, ये सारी चीजें अपन कर सकते हैं। जैसे पहले शादी होता था तो मंडप में घड़ा रखते थे कलश, तो उसको लोग पहले गोबर और कलर करके चावलों से उसपे आकृतियां बनाते थे, वो बहुत सुंदर दिखता था वो।

0: अब विलुप्त हो गया है
1: हर चीज हमला ऐसे मार्केट में उपलब्ध हो जाते मिल जाते बाजार में, तो वहाँ जैसे आप मनकर बनाल वस्तु या सजावट के सामान किस तरह से में मांग रहे थे बाजार में?
0: हम लोग भी जैसे घड़े कलश रखते हैं मंडप वगैरह के नीचे, तो उसमें भी कलर करके अलग अलग आकृति देकर और उसको भी दुकानदारों से कॉन्टेक्ट करके उसको कलश को हम लोग बेचते हैं।
1: जैसे बहुत सा काम है, ये काम नहीं है मनीषा बहन का, पर्स बनाना, जूट के सामान बनाना, फालतू सामान बेकार सामान से सजावटी कोना सजाना, साथ में देखी पेंटिंग जिमे की अनी बनी के रंग रोहन करके चादर में चाहे कपड़ा में आप मन सुगर सुगर बनाए सकता है। राउर बताई कि आप मन के संगे और बहनी मन जुड़ी है?
0: हाँ, हम लोग उमंग महिला उत्थान बाल विकास से एनजीओ से जुड़े हुए हैं और उसमें बहुत सारी महिलाएं हैं। हम लोग कभी कभी वक्त जैसे रहता है बहुत ज्यादा तो बहुत सारी गाँव की महिलाओं को बताते भी है कि ये चीज बनाना चाहिए और इसका उपयोग इस तरीके से है, और उसको कर हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। मैं अपने घर के हर कोने को कला से जोड़ के रखी हूँ और जैसे मेरे परिचित जो लोग आते हैं तो वो लोग काफी तारीफ करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो हाँ ये चीज हम कर सकते हैं।
1: मनीषा बहन बहुत अच्छा गोट कहा कि घर तभी बनेल जब आप माने के कोना लापन हाथ से सजाएगा, और ये में देखिए आपकर हुनर है, आपकर मेहनत है, एकर साथ साथ देखिए आप मन के सामान के बाजार में किस तरह से मांग रहे थे और का आर्थिक लाभ कमाती राउर बताई।
0: मैं ऊन का कुरेशिये से पर्स भी बनाई हूँ तो मेरे को 2-3 ऑर्डर मिला है उसमें, तो वो रोज के रूप में बनता है पूरा रोज बनाकर, और मोती का वर्क है वो मोती के भी पर्स है तो वो भी मैं दुकान से कॉन्टेक्ट करके उसको सेल करते हैं।
1: ये हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के बहनी शहरी क्षेत्र के बहनी सीखना है कर प्रशिक्षण लेना है तो वो कहाँ जाएं, कैसे शुरुआत करें कर?
0: हाँ, अगर आप लोग रेडियो को सुनने वाले श्रोतागण अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि कुछ सीखना चाहिए तो आप लोग अगर आपको ऐसा जरूरत लगे तो आप लोग मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैं बिल्कुल तैयार हूँ आपको बताने के लिए
1: प्रशिक्षण दे
0: प्रशिक्षण दे।
1: ये क्षेत्र में आए से पहले राउर लका का परेशानी का सामना करना पड़ी?
0: हाँ, एक मुझे ऐसा रहता था कि जुनून सा रहता था कि कोई चीज अगर क्राफ्ट का बनाना है तो उसको 2-3 घंटे में बनाकर खत्म करना है।
1: अच्छा,
0: तो हाँ ये रहता था कि शादी के पहले जैसे मम्मी को लगता था कि अरे ये खाना नहीं खा रही है और बस पूरे टाइम उसी में लगी हुई है।
1: सोशल मीडिया का आप कर भाई कुछ मदद करते हैं
0: में? हाँ, सोशल मीडिया में जैसा अपन बना कर डाल दिए कि ये चीज अपने को बना रहे ऐसे, तो उससे लोगों का मतलब वो आता है कि हाँ मतलब हम ऑर्डर कर रहे हैं आप इस चीज को बनाइए, तो सोशल मीडिया से तो हेल्प होता है।
1: बहुत ही बढ़िया कहा संघे। ये बताइए कि आप जो काम कर रहा था उसमें पर्यावरण ला कोनो तरह से नुकसान पहुंच?
0: नहीं, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है।
1: आप मन करके काम जैसे जूट के है चाहे बेकार सामान ला जो पर्यावरण का अनुकूल हो उसमें भी एक अच्छा भागीदारी है कि देखिए सब ला समेट के पर्यावरण के देखिए कोई नुकसान भी नहीं हुआ था एकर से, तो ये काम से देखिए बहुत ही राउर ला फायदा हुआ था, कितना खुश है राउर ये काम ला करके?
0: मेरे मन को मतलब शांति मिलती है ये चीज कर और जैसे पर्यावरण से रिलेटेड है तो लकड़ियां है जैसे कहीं पे लकड़ी पड़ी हुई है वो सूख गई है तो मैं उनमें कलर करके और उसमें ऊन के फ्लावर बना के उसको एक घर के कोने में डेकोरेट कर लेती हूँ तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
1: देखिए बहुत ही बढ़िया, कहीं की बेकार सामान लभी भी उपयोग में ले आते हैं, कोई भी अगर हाथ में हुनर है तो के निखारना बहुत जरूरी है, अपन आप लोग पहचानना बहुत जरूरी है, वो काम मनीषा बहन करीन है। बहुत सा बहनी मतलब जोड़ के भी उनके आर्थिक लाभ आर्थिक आमदनी कमाए बर प्रोत्साहित ही नहीं करीन है आगू बढ़ाइन भी है। संगी हो देखिए कितना सुघर हमन गोट बात करें, हमर बहनी कर कहनी में मनीषा बहन अपन कहनी ला भी हमारे साझा करें कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो बहनी मन है तो ओके कहाँ से शुरुआत, कहाँ से प्रशिक्षण ले, कहाँ से शुरुआत कर सकी ताकि ये मैं आ सके?
0: जैसे हमारा एक ग्रुप भी बना हुआ है, एनजीओ भी है और ग्रुप का नाम है जैसे अजया ग्रुप, तो उसमें हम लोग प्रशिक्षण देते हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग एक बार हम लोग के पास आकर मिल सकते हैं।
1: देखिए बहुत ही बढ़िया कहा राउर, काम लग करके बहुत खुश भी है लगत है।
0: जी जी, मैं बहुत खुश हूँ।
1: जो भी काम करते ही हमन अगर हमें हमन लग खुशी मिलत है तो देखिये ये काम चाहे कितनो कठिन से कठिन रहे हमन लग पूरा करे से कोई रोक नहीं सकता है। ये हर बहनी में देख अलग संकल्प होते और मंजिल तो देखिए ऐसे ही आसानी से मिल जाते जब हमें हमन काम कर। राउर मनीषा बहन आखिरी में हमारे रेडियो सुनने वाला संगी संगवारी में लका संदेश देना चाहती?
0: मैं आखिरी में यही कहना चाहती हूँ कि हर महिलाओं को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए और हाथ में जो कला है उसको बिल्कुल बना के रखना चाहिए और कुछ ना कुछ समाज में अपना वर्क करना चाहिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद है आज हमारे संग जुड़ी हमारे बहनी के दहनी कार्य

0: कार्यक्रम में, मनीषा बहन हमारे कार्यक्रम में शामिल होए पर बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, जय जोहार।
2: हाँ तो देखिए सुमतिया बहन जग गोट हुआ त्रिस मनीषा बहनकर और देखिए रिकिम रिकिम के वो काम करते बनाते हैं। और देखिए कहीं कि अगर हमार में कोई भी चीज कर हुनर है तो ओला हमन ला लेके आगू बढ़ना है और अपन आपला एक स्थान दिलाना है समाज में। तो देखिए बहुत अच्छा गोट रहीस कि भाई जम्मू बहनी मनाए जेवन हलाकान हो जाते हैं और परेशान रहते कि भाई हमार बगरा पढ़ल लिखल नहीं ही का बुताला करी, कैसे नौकरी करी, कैसे आर्थिक स्थिति ला अपन मजबूत बनाई। वो बहनी मन अपन अंदर में पहले तलाश करें कि का चीज़ में उमन ला रुचि है और कोई तो ऐसा हुनर हो ही, चाहे खाना बनाए से लेकर के सिलाई कढ़ाई बुनाई जो भी चीज़ रहे, रिकिम रिकिम के बूता मना है, कोई भी बूता छोटे बड़े नहीं होल। और अगर आगू बढ़ना है तो हमन ला अपन अंदर के हुनर ला पहचान के और इसने आगू बढ़ना चाहिए। तो सुगर अकन गोट बात हुई समर सुमतिया बहन कर मनीषा बहन जग। अब लेगी चली एक ठन गीत है तो गीत ला सुना थी तेकर आउ गोट करबो।

हो तो देखी सुगर अकन भोजपुरी गीत ला सुनेन मोहम्मद खलील कर गाल रहीस। अब थोड़कुन बेरा बची सा है तो जाए से पहले यही कहूँ बहनी हो कि काम बुता कर बेरा है, लेका मन के स्कूल भी खुल गई सा है और अब काम और बढ़ी सा है भाई। खेती बाड़ी के साथ साथ हमन ला जो है अब लेका मन कर सियान मन कर भी तिहा जतन करना है, तो अपन स्वास्थ्य कर बढ़िया का ध्यान रखब और समय से खान पान के साथ साथ थोड़ा बहुत योग व्यायाम भी करना जरूरी है। हमार बहनी मन ला जब कहती हमन के थोड़ा बहुत योग ध्यान करना चाहिए तो कहते हैं कि बिहनिया ले उठ के तो काम बुता में कूदत रहती तो कतेक मान हमने योग और ध्यान करी आऊ और कितना करना है व्यायाम हमला जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ ला बता दूँ आप मनला कि अपन शरीर पर अपन स्वास्थ्य पर अगर हमार शरीर बढ़िया रही नहीं तबे हमन अपन परिवार ला देख सकब, तो एक बार जरूरी है कि अपन बर समय जरूर निकाली और थोड़कुन थोड़कुन जो है व्यायाम करना चाहिए बैठ के, है ना। और दौड़ भाग तो वही करते छे लेकिन कोई कोई व्यायाम ऐसा होल ना जला बैठ के करिए तो कन्हिया कमर मन हर सोझ हो जाए, तो जरूर करे के प्रयास करब और भाई अपन अपन स्वास्थ्य के तिहा जतन करब। अब बेरा हर कहते कि भाई मैं आप मन से विदा लूँ, है नहीं।

तो आने दिन फिर बैठा हूँ रिकिम रिकिम के गोट बात लेके आ हूँ और आप मन संग फिर गोट बात हुई और अपन विचार ला अपन जो भी सुझाव हो ही और आप हमारे कार्यक्रम में आओ काका चिल्ला चाहता सब चिल्ला चिट्ठी पत्री में लिख के जरूर भेजिया। तो भाई अब किस्मतिया बहन ला दी विदा आने दिन फिर बैठा हूँ राम राम। देखा जाए से पहले एक संदेश भी आओ देना चाहूँ मैं राम राम तो कही दे हूँ लेकिन मुके एक ठन गोठ याद आएगी इसकी आज जब स्कूल कदी लड़का मन जात रही ना तुमन भी कहते हुए कि किस्मतिया बहन हर बहु आएगी चाहे राम राम कह देस लेकिन अचानक ध्यान पड़ी तो मैं रुक गए और सोचे कि ये गोटला कह दूँ। देखिए लड़का मन ला जो छोटे छोटे लड़का मन है ना जे मन स्कूल जाते हैं तेमन ला अकेला स्कूल भेजे से पहले चटिक ध्यान रखब आज मैं देखे रहें कि दो तीन ठो लड़का मन जे मन जात रहन तेमन अपन पैदल तो निकल गए रहन लेकिन घर के डगर मन ला भुलाए गए रहन। तो छोटे छोटे जितना लड़का मन के भाई अपन स्कूल भेजे के भी शुरू करे हा कहे कि मैं आत रहें ड्यूटी करे बर सोचे कि भाई अब कार्यक्रम देहे बर जात हूँ डगरे दू ठो लड़का मन रोवत रोवत भेटाइन मोला रास्ता में मैं पूछे तो कहीं कि स्कूल जाना रहीस तो स्कूल जाना रहीस तो बेचारा मन रास्ता भुलाए गए रहन और जब डगर भुलाए गए तो रोवत रहन और आ जाए वाला मन भी ध्यान नहीं देती जब मैं पूछे तब पता चले कि भाई गाँवें कर स्कूल में जाना रहीस लेकिन वो मन दूसर कति मुड़ गया रहन। तो देखिए लड़का मन ला जो मोला नवा नवा एडमिशन कराए ही ना तिमन ला भाई अपन जाके स्कूल में छोड़ के इहा और लेहे भी जाइया इसे मत छोड़ दिया। तो देखिए आप मन ला थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप मन ला जो है लड़का मन के जो छोटे छोटे लड़का मन है जो मन ला स्कूल में अभी अभी एडमिशन कराए हैं वो मन ला इसने मत छोड़िए भाई। देखा जात जात मुके गोट हर याद आ गए रहीस तो मैं रुक के आप मन ला गोट ला कहते हो कह कि हमारे गाँव के बहनी मन हमारे गोट मन ला सुनते हैं तो भाई वे गाँवें के लड़का मन रही तेकर क्षति मैं आप मन ला बता दे हूँ कि लड़का मन कर जब पढ़ाई पर भेजना है तो मन की जिम्मेदारी कह कि जो अभी के समय है इमें लड़का मन सुरक्षित नहीं है समाज में रिकिम रिकिम के अपराध हुआ था है तो आप मन ला चाहिए कि भाई आप मन जो है अपन लड़का कर और अपन जो है तिहा खुद से करिए अपन से खुद से हमन ला सचेत रहना बहुत जरूरी है कहे कि अगर हमन खुद से सचेत नहीं रह ना तो अपराध जो है होते च रही और ये बात ला हमार जम्मो बहनी मन ला जानना बहुत जरूरी है। भाई अब आप मन तैयार करके लड़का मन ला स्कूल भेज देता लेकिन लड़का हर स्कूल पहुँचत है कि नहीं कहाँ जात है का करते ये सब चीज़ के आप मन ला तिहा करना बहुत रही है और तो भाई ओला कुछ दिन तक जब तक लेकर हर जान नहीं जाए ओला स्कूल ले जाना है और वापस साथ में लेकर के भी आना है डगर में काकरों संगे नहीं भेज देना है कहे कि भरोसा मन अब भरोसा कहिए कि अब काकरों पर नहीं रहेगी सा है जैसा समाज के भी माहौल होगी सा है। तो घर के कोई भी एक सदस्य रहे चाहे बहनी मन खुद से जाएँ लेकर मन ला ले कर जाएँ और मन ला जो है फिर संगे संगे वापस ले कर भी आना है। तो देखिए अब बेरा तो हो गया रहीस लेकिन मैं आप मन जगह बात हर याद आई तो मैं सोचे एक बार रेडियो में बोल देना बहुत जरूरी है कि हमारे बहनी मन जो है वो सचेत रहें। तो अब मोला दी विदा आने दिन फिर बैठा हूँ राम राम।

ग्रामीण महिलाओं के लिए अभी घर गोसाइन कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज और FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:40 हुए हैं और ये समय है आपकी बेहद पसंदीदा कार्यक्रम ईमेल की गूंज का। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आपका बेहद पसंदीदा ये कार्यक्रम। और आज इस कार्यक्रम का सफर आप तय करेंगे अपनी रेडियो दोस्त मृदुल के साथ। सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत और इस गीत के लिए हमें ईमेल मिले हैं आप सभी श्रोताओं के। ग्राम राजापुर सूरजपुर से मानिक राम प्रजापति, सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत कुमार और कालापारा सरगुजा से रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम राजवाड़े, पीपरलोट सरगांव मुंगेली से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से ईमेल भेजा है पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके और श्राव्या रामटेके ने, बालाजी चौक से हमारे श्रोता ओ टी श्रीवास, शेख आजाद और पोपोरानी, बागपत उत्तर प्रदेश से हमें ईमेल भेजने वाले श्रोता हैं संजय ढींगिया और नमन ढींगिया, उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर, और अकोला से हमें ईमेल भेजने वाले श्रोता हैं सुयश रॉय, अलका रॉय, दरियापुर बाबली से गजान

ननियेले, नवदीप येले और विश्वदीप येले, अनूपगढ़ से मंगल जनागल और रोशनी जनागल, पलारी से हमारे श्रोता है नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन और लखनलाल देवांगन, लोरमी चचेड़ी से हमें ईमेल भेजा है शंकर कोलाम, संतोषी कोलाम, संजय कोलाम, संध्या कोलाम और शिवम कोलाम ने, और रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से पेंटर बाबू, विजय महोबिया, कविता महोबिया, सपना, शिवी और यशु। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, जो है लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में। फिल्म का नाम है आपस की बात।

झारखंड पागुड़ से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु अर्णव, आनंद सत्यमानंद, घोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा और सीटी दीवाना। और ये ईमेल हमें मिला है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही मेहराज जहाँ का। नथाना पंजाब से हमारे श्रोता हैं हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। लोहगढ़ ठाकुरा से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह। पोटिया कला दुर्ग से हमें ईमेल भेजा है संजय कुमार साहू, शशांक साहू ने। मोताला बाजार से बबलू ठेकेदार, शेख शाहिर, शेख वजीर, सोहिल शेख, सैयद तहमूर, शामिर खान और अजलान। सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद अल्तमश खत्री और मोहम्मद शादाब खत्री। धनौरी उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, आलिया और अयान। मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी साहू, योगेश कुमार, संध्या कीर्ति, डीकेश साहू का ईमेल हमें मिला है रसेड़ा से। और ये श्रोता हमारे हैं पित्रामल उज्जैन से, विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूड़त और चेतन नाटा। आप सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया, और गीत और संगीत रविंद्र जैन का, फिल्म का नाम फकीरा। सुनिए ये गीत।

0: आइए सुनते हैं श्रोताओं कार्यक्रम का अगला गीत, और इस गीत के लिए हमें ईमेल मिले हैं आप सभी श्रोताओं के। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, नवीन शर्मा, सौरव शर्मा, शाइना शर्मा और मैंडी शर्मा, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, और ये श्रोता हमारे जिन्होंने हमें ईमेल भेजा है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से हैं, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी, डोंडेलुहारा बालोद से हमारे श्रोता हैं देवशंकर तामुरिया, अजय देवतामुरिया, तुषार देवतामुरिया, डॉली, पूजा, राधिका, प्रभा देवी और मास्टर अल कबीर। और ये ईमेल हमें मिला है सांकरा राजनांद गांव से नारायण लाल साहू, कुलवंती देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा साहू, मिलिंद कुमार, प्रणय कुमार और रुद्रांश प्रताप साहू का। पैठड़ से हमें ईमेल भेजने वाले श्रोता हैं डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती, पूजा, प्रसाद, सोनल, सिया जाधव और उनके परिवार के सभी सदस्य। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जो है आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में। फिल्म का नाम है दीवार।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है?
2: क्या है?

कार्यक्रम का अगला ईमेल हमारे इन श्रोताओं का परभणी महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रीतेश संघई और उनके परिवार के सभी सदस्य। कोलकाता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शाह, अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी, तनुश्री गुप्ता, अनविका और झुमरी तेलैया। गिरिडीह झारखंड से अभय कुमार, शिवानी कुमारी, प्रियंका, गुड्डू, मुन्नी, जयप्रकाश, रिया, जिया, टूसी, आयुषी और अनिरुद्ध। और ये ईमेल हमें भेजा है नागचून रोड संजय कॉलोनी से अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर, जियाउलक डावर, भाटापारा से सोहन जोशी, चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और उनके परिवार के सभी सदस्यों का ईमेल भी हमें मिला है। और बक्सर जेल रोड से हमारे श्रोता हैं असलम अंसारी, शमसुल हक और राज एसडी अंसारी, डोंडी लोहारा बालो से प्रभा रानी और उनके साथियों का ईमेल भी मिला है। सूर्यवाड़ी से हमारे श्रोता हैं प्रकाश बोरगांवकर, मिठू मुड़ा रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास और गेंदू भाई का ईमेल मिला है। और गांधीनगर गुजरात से हैं सुरेश राठौर, मंजुला राठौर और विशाल निशा। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत जो है फिल्म तलाश से, आवाज़ है लता मंगेशकर की।

श्रोताओं, इस वक्त आकाशवाणी अंबिकापुर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ईमेल की गूंज। कार्यक्रम का अगला ईमेल है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकोस्टा, रोजी डिकोस्टा, पर्ले डिकोस्टा और विलिस डिकोस्टा का। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहाड़कर, सरिता गवहाड़कर, प्रिंस एकांश गवहाड़कर और अर्जुन गवहाड़कर। कर्माडी लोहारीडी से कवर्धा के रहने वाले हमारे ये श्रोता हैं जिन्होंने हमें ईमेल भेजा है। अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी लालिमा, खुशांत साहू और निशांत साहू। अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार और नसीम बेगम का ईमेल भी हमें मिला है। एटा से हमारे श्रोता हैं नबी हसन अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन, शाहनवाज, अनम अब्बासी, अशफ और रसीद वारसी। ये ईमेल हमें मिला है अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोड़ाने, अर्चना गोड़ाने, प्रणय प्रसिद्धि और हीरामन शिंडे का। बंगला मटिया बालोद से हमारे श्रोता हैं शिव कुमार अंगारे, अंजनी त्रियंबिका, लीना, आशुतोष अंगारे। बस्तर से हमें ईमेल भेजा है वी पूनम नायडू, साजन, के मास्टर, शिवांशु, रीशु, चैतन्य, अक्षय, अभिषेक नायडू और उनके साथी। बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल और विशाल सपकाल का ईमेल भी हमें मिला है। मदनपुर कवर्धा से हमारे श्रोता हैं श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू। तिलहारा से प्रकाश पोहरकर, नर्मदा पोहरकर, सुजाता पोहरकर। और आप सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया फिल्म भीगी पलकी का ये गीत।

और श्रोताओं, अब पेश है कार्यक्रम का आखिरी गीत। और इस गीत के लिए हमें ईमेल मिले हैं आप सभी श्रोताओं के। देवरी भाटापारा से KR साहू, आकाश, कमलेश, गन्नूलाल रजक और मुरली क्षत्री। मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरन निशा, शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक, लुबना और यश मंसूरी। अकोला से हमें ईमेल भेजा है के शरद पाजपुर, शोभा पाजपुर, वैदेही, विहान, रश्मि, अक्षय और अभिनव पाजपुर ने। झालावाड़ राजस्थान से अनूप सी नाथावत का ईमेल भी हमें मिला है। कैदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह और ऋषभ सिंह। बालूतरा राजस्थान से कृष्ण कुमार ढाबी, भूपत कुमार ढाबी। दतरेंगी से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। अमरावती से हमें ईमेल भेजा है प्रवीण हागोड़े और उनके साथियों ने। कोरासी भैसा से हमारे श्रोता हैं पवन कुमार साहू, क्रांति साहू, पंकज साहू, सुष्मिता साहू और दीपिका साहू। और आप सभी श्रोताओं की पसंद पर पेश है कार्यक्रम का आखिरी गीत, जो है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीत तैयार किया है खयाम ने और फिल्म का नाम कभी कभी।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए फिल्म कभी कभी के इस गीत के साथ ही आज का ईमेल की गूंज कार्यक्रम यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के 2रे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और

0: केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायकर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति देने वाली रही। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, समता निर्माण, समुद्री सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा देने पर सहमति जताई। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। यात्रा के दौरान UPI, स्वास्थ्य, कृषि, नौवहन, अंतरिक्ष सहयोग, प्रत्यर्पण और लाइन ऑफ क्रेडिट से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके योगदान के लिए गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजंस से भी सम्मानित किया गया। यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल सेशल्स की नेशनल असेंबली के विशेष सत्र को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। विशाल और विष्णु के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी मानसून के दौरान हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से होकर गुजरने वाली भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा।
3: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। नीट UG परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जांच के अंतर्गत 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और शीलू नाग

0: की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जनविश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इस सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुद्दों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्थान को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये व्यवस्था निर्माताओं, आयातकों, पैकरों, डीलरों, मरम्मतकर्ताओं, व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार उपभोक्ता संरक्षण को कमजोर किए बिना पारदर्शी और कारोबार अनुकूलन नियामकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष श्री सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 8 नवनिर्वाचित और पुनः निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इन सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा के एम नागराज, पंजाब से भाजपा नेता तरुण चुग, गुजरात से मानसिंह मेरामन परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजरिया, राजस्थान से डॉ अलका सिंह, मणिपुर से अधिकारी मयूम शारदा देवी और महाराष्ट्र से एनसीपी नेता राजेंद्र हीरालाल जैन शामिल हैं। तमिलनाडु में करूर से एआईएडीएमके विधायक एमआर विजय भास्कर ने आज विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंपा। श्री प्रभाकर ने बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा से इस्तीफा देने वाले एआईएडीएमके विधायकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।
2: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें बीएलओज एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं वो सभी पे बीएलओज अपॉइंटेड हैं, तो सभी बीएलओज को उनके इनुमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
0: मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मध्य गुजरात क्षेत्र पर केंद्रित 2 दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्र सम्मेलन का आज वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में हुआ।

0: एक्सेट या आर न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज अद्वितीय आध्यात्मिक उत्साह का माहौल रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरी में वार्षिक देव स्नान पूर्णिमा के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र हुए।
1: आज पुरी में लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के पवित्र देवस्नान पूर्णिमा समारोह देखा, जो इस साल की रथ यात्रा की उत्सव की औपचारिक शुरुआत है। सदियों पुरानी मंदिर परंपराओं के अनुसार देवताओं को मंदिर परिसर के भीतर स्थित पवित्र सुना कुआ यानी स्वर्ण कुप से लाए गए पवित्र सुगंधित जल के 108 घड़ों से स्नान कराया गया। विस्तृत स्नान के बाद देवताओं को गजानन के रूप में सजाया गया। अब वे अणसर के 2 हफ्ते लंबी अवधि के दौरान एकांतवास में रहेंगे और अगले महीने की 16 तारीख को शुरू होने वाली सालाना रथ यात्रा से पहले नव जौवन दर्शन के लिए फिर से प्रकट होंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन न्यूस्टाक्यो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल और माहे में बुधवार तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: दोपहर समाचार अभी हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 2:30 हो चुके हैं और ये समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम, जो कि गैर फिल्मी गीतों और गज़लों पर आधारित होता है, गीत गंधा उसका। और हम शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम और आपको सुनवाते हैं पहली पेशकश, जो है अदनान सामी की आवाज़ में। आइए सुनिए।

और आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं ये गीत जो है परंपरा टंडन की आवाज में, शब्द रचना है योगेश दुबे की।

इस गजल के साथ ही गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा समाप्त हुआ। आपसे विदा लेने के पहले श्रोताओं, हम आपको बता दें अपनी सांध्यकालीन सभा के कुछ एक कार्यक्रमों के बारे में। हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट के साथ। इस कार्यक्रम के तुरंत बाद 5:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या। युवा दोस्तों का कार्यक्रम युवाणी होगा रोजाना की तरह शाम 5:30 पर। विचार बिंदु का पुनः प्रसारण सुनेंगे शाम 6:05 पर। गोधूली कार्यक्रम में शाम 6:20 पर आप सुनेंगे कुछ सरगुजिया और सादरी लोकगीत। फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी होगा शाम 6:30 पर और सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा शाम 7:05 पर। ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल होगा रोजाना की तरह शाम 7:20 पर, जिसमें ग्रामीण श्रोता आज सुनेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस पे बातचीत, साथ ही आज कल इस क्रम में मिर्च की उन्नत खेती और अमृत सरोवर योजना के बारे में जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश का समय है 8:00। चित्रपट संगीत आप सुनेंगे 9:15 पर और ईमेल की गूंज 9:30 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सूर्यामनी में 10:00 हम आपको सुनवाएंगे पंडित जसराज का गाया राग मारवा। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनभावन होगा 10:30 पर। ये तो थे हमारे सांध्यकालीन सभा के कुछ एक कार्यक्रम। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज और FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। दोपहर के 3:47 में है। मीडियम वेव पर सभा समापन से पहले हम आपको बता दें कि FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी दिल्ली से FM गोल्ड चैनल का प्रसारण जारी रहेगा। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5:00 हम आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। आइए सभा की शुरुआत में सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 15 है। ये बंसीपुर, बगड़ा, कोरंधा, दुर्ती, सोनगरा, धरहोरा, चंदौरा, सरहरी, करंजवार, हरिहरपुर, परमेश्वरपुर, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के राजपुर, रामानुजगंज, वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 10 है। ये अखोरा, कुंदीकला, जामदोहर, सिधमा, बदौली, भेंडारी, कोटराही, भगवानपुर, नवापारा, चीनिया, महावीरगंज, कनकपुर, टकिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये सकालो, किशुनपुर, घंघरी, खलीबा, पड़ौली, जमीरा, मसगा, अस्कला, दोरना, जरहाडी, सायर, लक्ष्मणगढ़, सस्कालो, ढेकी डोली, एरन, नवापारा, गढ़गांव, बरडांड, दांती ढाप के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव और दुलदुला में हाथियों की कुल संख्या 13 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, खड़ामाचा, पीठा आमा, राजा आमा, महेशपुर, साजापानी, गट्टी बुड़ा, पाकर टोली, ढोढ़ा डी के वन क्षेत्रों में विचरण

0: कर रहे हैं।
1: धर्मजयगढ़ वनमंडल की छाल धर्मजयगढ़ बोरो बाकारुमा लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 132 है। ये कूड़ेकेला पुरुंगा छाल बोजिया औरानारा बेहरामार लोटान कोयलार सागरपुर ढोड़ा गांव केदा टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वनमंडल के केंदई जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर कोयलार गडरा परला चोटिया कापानवापारा घुचापुर बांधापारा लालडी झुनकीडी कुकरी कादर मड़ई कठमोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़ घरघोड़ा और खरसिया में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये बंगूरसिया सपनई जोबी बरगढ़ नागदरहा पंडरी पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के बार और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये गुड़ागढ़ फुरफुंदी ताल दादर अचानकपुर नवागांव पकरीत तेंदुचुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़ अमलोर ताराजह डडई पानी बुडार सिंहार छिंदौला लूठापारा नारीपानी डूमर घाट कोदोमाली मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
3: अभी आप सुन रहे थे हमर हाथी हमर गोट प्रायोजित कार्यक्रम। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है गैर फिल्मी और फिल्मी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भजन संध्या। इस कार्यक्रम में आज कबीर जयंती दिवस पर सुनते हैं संत कबीर की कुछ रचनाएं। सबसे पहले आइए सुनते हैं शुभा मुद्गल के गायन स्वर में संत कबीर की ये प्रसिद्ध रचना।

शुभा मुद्गल की गायकी में आप ये संत कबीर की रचना सुन रहे थे। आइए अब आपको सुनाते हैं पंडित कुमार गंधर्व के गायन स्वर में संत कबीर की ये अगली रचना।

संत कबीर की ये सुप्रसिद्ध रचना आप सुन रहे थे कुमार गंधर्व के गायन स्वर में। आइए अब आपको सुनाते हैं सुरेश वाडेकर के गायन स्वर में कबीरदास की ये रचना।

सुरेश वाडेकर के गायन स्वर में आप ये कबीर भजन सुन रहे थे। आइए अब आपको सुनाते हैं अनूप जलोटा की गायकी में संत कबीर की ये अगली रचना।

अनूप जलोटा के गायन स्वर में आप ये गीत सुन रहे थे, रचना थी संत कबीर की। कार्यक्रम में जाते जाते आपको सुनाते हैं जुबीन नौटियाल के गायन स्वर में संत कबीर की दोहावली।

इसी के साथ ही भक्ति संगीत कार्यक्रम भजन संध्या का आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 238.09 मीटर और FM बैंड 100.2 MHz पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है युवाओं की वाणी, युववाणी।

रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढता है फरिश्ते। पंछियों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं रास्ते। नमस्कार, अभिनंदन और अभिवादन है आप सभी श्रोता साथियों का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी में। और आज आपके साथ हूँ मैं, आपका रेडियो साथी घनश्याम। दोस्तों, जब हम इस दुनिया में जन्म लिए थे तब हमारी पहचान होती है किसी के बेटे के रूप में, किसी के बेटी के रूप में, कोई किसी के परिवार के नाम से जाना जाता है। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि तब होती है जब लोग हमें हमारे नाम और हमारे काम से पहचानने लगते हैं। एक ऐसी पहचान जो हमें विरासत में नहीं मिली हो, बल्कि जिसे हमने अपनी मेहनत, संघर्ष, ईमानदारी और लगन से बनाया हो। दोस्तों, अब बात आती है कि पहचान आखिर होती क्या है। पहचान केवल नाम नहीं होती, पहचान तो वह होती है जो आपके जाने के बाद भी लोगों के मन में बनी रहे। याद रखिए दोस्तों, पहचान आपके कपड़ों से नहीं बनती, ना ही आपके गाड़ी या घर से। आपकी पहचान बनती है आपके व्यक्तित्व से, आपके काम से और आपके व्यवहार से। दुनिया में लाखों लोग रोज़ पैदा होते हैं और लाखों लोग इस दुनिया से चले भी जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पहचान सीमाओं को पार कर जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान खुद बनाई थी। साथियों, जब हम अपनी तुलना किसी और से करते हैं या फिर किसी दूसरे व्यक्ति की तरह बनने की कोशिश करते हैं, तब हम अपनी विशेषता खोते चले जाते हैं। और नकल करके तो हम सफल बन सकते हैं, लेकिन खुद की पहचान नहीं बना सकते। दोस्तों, पहचान तब बनती है जब हम अपने गुणों को पहचानते हैं, उस पर ध्यान देते हैं और उन्हें निखारते हैं। हर व्यक्ति की एक अपनी विशेषता होती है, हर व्यक्ति में कहीं ना कहीं एक प्रतिभा होती है, बस देरी है तो उसे पहचानने की। समस्या यह नहीं है कि हमारे पास प्रतिभा नहीं है,

बल्कि समस्या तो यह है कि हम उसे खोज नहीं पाते। कई बार हम दूसरों को देखकर अपने सपनों को बदल देते हैं, लेकिन सच्ची पहचान वहीं बनती है जहां आपका मन और आपकी प्रतिभा दोनों मिलते हैं। इसलिए खुद से पूछिए, मुझे क्या करना अच्छा लगता है, मैं किस काम को पूरी लगन से कर सकता हूँ और कौन सा काम करूँ जिसमें मुझे ऊर्जा महसूस हो। इन सवालों के जवाब आपको पहचान का रास्ता दिखा सकते हैं। साथियों, पहचान मेहनत मांगती है। पहचान एक दिन में नहीं बनती, उसके लिए वर्षों की मेहनत।

हो। इन सवालों के जवाब आपको पहचान का रास्ता दिखा सकते हैं। साथियों, पहचान मेहनत मांगती है। पहचान एक दिन में नहीं बनती, उसके लिए वर्षों की मेहनत लगती है। दोस्तों, नाम विरासत में मिल सकता है, लेकिन पहचान कमानी पड़ती है। सफलता केवल पैसे कमाने का नाम नहीं है, सफलता वह है जब लोग आपको आपके काम से पहचाने, आपका जीवन दूसरों के लिए उदाहरण बन जाए और आपकी पहचान और आपके व्यक्तित्व दोनों का योगदान से बने। यही सच्चा सफलता और पहचान है। इसी के साथ आज का युवा सोच बस यहीं तक। सुनिए ये प्यारा सा गीत फिल्म फना से।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा।

0: आता हुआ एक्टिव।
1: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं आज के हमारे प्रश्नोत्तर के क्रम इंद्रधनुष की ओर।

बहुत बहुत स्वागत है साथियों आप सभी का इंद्रधनुष के कड़ी क्रमांक 78 में। साथियों, इंद्रधनुष कड़ी क्रमांक 77 के प्रश्नों और उनके उत्तर को जानने से पहले जान लेते हैं आज के हमारे प्रश्नों को। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि पूछने जा रहा हूं मैं आज के हमारे कड़ी क्रमांक 78 के प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, 2026 में छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रश्न एक बार फिर, 2026 में छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। हमारा दूसरा प्रश्न है, कलर ब्लाइंडनेस में आँख की कौन सी कोशिका प्रभावित होती है। प्रश्न एक बार फिर, कलर ब्लाइंडनेस में आँख की कौन सी कोशिका प्रभावित होती है। हमारा तीसरा प्रश्न है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 किसने जीता है। प्रश्न एक बार फिर, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 किसने जीता है। हमारा चौथा प्रश्न है, भारत के सबसे दक्षिणी छोर का नाम क्या है। प्रश्न एक बार फिर, भारत के सबसे दक्षिणी छोर का नाम क्या है। दोस्तों, पांचवें प्रश्न के रूप में सुनिए ये गीत।

0: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
0: कहाँ
3: एडमिशन कराने?

दोस्तों, अभी हमने आपको पांचवें प्रश्न के रूप में एक गीत सुनाया जिसमें आपको इस गीत के गीतकार का नाम बताना है। साथियों, ये तो बात हो गई हमारे आज के प्रश्नों की। अब आप जान लेते हैं हमारे इंद्रधनुष के कड़ी क्रमांक 77 के प्रश्नों और उनके उत्तरों को। तो हमारा पहला प्रश्न था, जम्बूद्वीप किस देश का प्राचीन नाम था, जिसका उत्तर है भारत। हमारा दूसरा प्रश्न था, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, जिसका उत्तर है फातिमा बीवी। हमारा तीसरा प्रश्न था, फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेज़बानी कितने देश मिलकर कर रहे हैं, जिसका उत्तर है 3 देश, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। हमारा चौथा प्रश्न था, पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन किस स्रोत से प्राप्त होता है, जिसका उत्तर है महासागर। दोस्तों, पांचवें प्रश्न के रूप में हमने आपको एक गीत के कुछ बोल सुनवाए थे,

दोस्तों, इसमें आपको इस गीत के फिल्म और रिलीज तारीख बताना था, जिसका उत्तर है लुका छिपी सन 2019। दोस्तों, ये तो बात हो गई कड़ी क्रमांक 77 के प्रश्नों और उनके उत्तरों के बारे में। अब जान लेते हैं उन श्रोता साथियों के नाम जिन्होंने इन प्रश्नों के उत्तर हमें लिख भेजे हैं। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़ से, विनोद खड़ से, आडार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी गोपी, राहुल भूपेश, दीपेश वर्मा, गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निशा, ग्राम पीपरलोड सरगांव मुंगेली से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति, शिवांश वर्मा, कर्मा चौक लोहारीडीह कवर्धा से अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी साहू, खुशांत साहू, निशांत साहू, खमरिया बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। साथियों, हमारे प्रश्नों के उत्तर और भी श्रोता साथियों द्वारा दिया गया है, उनके नाम जानने से पहले सुनते हैं ये प्यारा सा गीत फिल्म दिल तो पागल है से। स्वर हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण के, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं उत्तम सिंह।

दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है इंद्रधनुष के कड़ी क्रमांक 78 में। दोस्तों, हमारे कड़ी क्रमांक 77 के उत्तर देने वाले शेष साथी हैं

बन बघेरा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि, रोशनी सारवा। डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामोरिया, अजय देव तामोरिया, तुषार देव तामोरिया, डॉली बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी तामोरिया और मास्टर अलकबीर। ग्राम दुल्हापुर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बालवीर सिंह। डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। पथरिया भरेवा छत्तीसगढ़ से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल। पीपरपारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, भानुप्रिया दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन दिवाकर, वंशिका दिवाकर। ग्राम परसा टोला अंबागढ़ चौकी से ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी मसिया, तुषारिणी मसिया, खुमेंद्र मसिया। दरियापुर बाबली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। साथियों, और भी हमारे श्रोता साथियों ने हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, लेकिन उनके नाम जानने से पहले सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत फिल्म जब वी मेट से। स्वर हैं सोनू निगम और जावेद अली के। गीतकार हैं इरशाद कामिल, संगीतकार हैं प्रीतम।

दोस्तों, हमारे इंद्रधनुष के कड़ी क्रमांक 77 के उत्तर देने वाले शेष साथी हैं जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े। लोरमी ग्राम चचेड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ मरावी। भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज और आयुषी गुप्ता। बोरसरा नैला से प्रमोद साहू, बीमा वैभवी और विभूति साहू।

बनिया पारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद माखीजा काफिर, सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, माही पूजा छुटकी और शरद कुमार डोडवानी। बठेना पाटन दुर्ग से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति प्रहलाद, राजेंद्र यश प्रयाण वर्मा। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी त्रयंबिका लीना, अंशुमाला आशुतोष अंगारे। सावतपुरा से ऋषि सेन, रितेश सेन। दतरेंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा। आप सभी को आकाशवाणी परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए सुनते हैं आज के क्रम का आखिर गीत इस फिल्म से। फिल्म का नाम है कुरुक्षेत्र, स्वर हैं सुखविंदर सिंह और सुनिधि चौहान के, गीतकार हैं मदन लाल, संगीतकार हैं सुखविंदर सिंह।

दोस्तों, आप हमें इंद्रधनुष कड़ी क्रमांक 78 के उत्तर पत्रों और ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारा पत्र भेजने का पता है, क्रम इंद्रधनुष, युवाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी अंबिकापुर, पोस्ट बॉक्स नंबर 27, पिन कोड है 497001। हमारा ईमेल आईडी है इंद्रधनुष@gmail.com। इसी के साथ क्रम इंद्रधनुष बस यहीं तक।

अभी आप सुन रहे थे युवाओं की वाणी युवाणी। मीडियम वेव 238.9 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6 बजने जा रहे हैं। कुछ ही पलों में राष्ट्रीय समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: Seva Medal, Seva Medal, Vishesh Seva Medal from the Regiment of Artillery, receiving the Param Vishesh Seva Medal from the Honorable President.
1: भारतीय सेना के अगले अधिकारी परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के लिए जाते हुए राष्ट्रपति जी के सामने मेजर जनरल गुरप्रीत सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल.
2: मेजर जनरल पंकज मल्होत्रा अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल.
0: मेजर जनरल पंकज मल्होत्रा अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल फ्रॉम द ब्रिगेड ऑफ द गार्ड, रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल.
1: अगला परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं मेजर जनरल पंकज मल्होत्रा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवा मेडल, ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स के आप अधिकारी रहे हैं.
2: मेजर जनरल चरणजीत सिंह मान, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल.
0: मेजर जनरल चरणजीत सिंह मान, अर्लियर रिसिपिएंट ऑफ अति विशिष्ट सेवा मेडल एंड
1: आर्मर्ड कोर के अधिकारी मेजर जनरल चरणजीत सिंह मान परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर रहे हैं राष्ट्रपति जी के कर कमलों से. मेडल प्राप्त करने के बाद उन्हें सैल्यूट करते हुए
2: मेजर जनरल रुपेश मेहता, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल.
0: मेजर जनरल रुपेश मेहता, सेना मेडल एंड विशिष्ट सेना मेडल फ्रॉम द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल.
1: आर्टिलरी रेजिमेंट के अधिकारी मेजर जनरल रूपेश मेहता की बारी है अपना परम विशिष्ट.
3: लगभग तीन दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा.
4: सर्वोत्तम युद्ध सेवा अथवा संघर्ष अथवा युद्ध स्थिति के दौरान अति असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल. सर्वप्रथम
3: 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकी के तेजी से उत्पादन रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया. सभा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया. उन्होंने कहा कि केंद्र ने स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाया है, इससे देश के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक सस्ती और सुलभ हो गई हैं. ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ब्रिक्स सीसीआई के प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की. बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा

0: और उभरती प्रौद्योगिकियों में इसकी अग्रणी भूमिका उद्योग संगठनों को मजबूत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने का एक आदर्श अवसर प्रदान करती है, जो राष्ट्रीय विकास और वैश्विक प्रगति में योगदान देती है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम विचार बिंदु। आज का विचार है आत्मनिरीक्षण। स्वर है स्वर और संकलन राजीव की।
2: मनुष्य का जीवन केवल बाहरी संसार को देखने और समझने तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने भीतर झांकने और स्वयं का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया भी उतनी ही अधिक महत्वपूर्ण है। अपने विचारों, भावनाओं, व्यवहार और कर्मों का निष्पक्ष अवलोकन करना ही आत्मनिरीक्षण कहलाता है। ये एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को स्वयं को बेहतर ढंग से समझने, अपनी गलतियों को पहचानने और जीवन को सही दिशा देने में सहायता करती है। आत्मनिरीक्षण व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास का आधार है और उसे आत्मबोध की ओर ले जाता है। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में मनुष्य इतना अधिक व्यस्त हो गया है कि उसे स्वयं के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिल पाता। वह दूसरों की कमियों को तो आसानी से देख लेता है, लेकिन अपनी कमजोरियों और त्रुटियों पर ध्यान नहीं देता। आत्मनिरीक्षण हमें ये अवसर देता है कि हम कुछ समय के लिए बाहरी शोर से दूर हटकर अपने भीतर की आवाज़ को सुने। ये प्रक्रिया हमें अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित कराती है। आत्मनिरीक्षण का पहला लाभ ये है कि इससे व्यक्ति अपनी गलतियों को पहचान पाता है। कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति से कभी न कभी कोई न कोई भूल अवश्य ही होती है। यदि हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर उनका विश्लेषण करें तो उनसे सीख लेकर आगे बढ़ सकते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति आत्मनिरीक्षण नहीं करता, वह अपनी कमियों को समझ ही नहीं पाता और बार बार वही गलतियां दोहराता रहता है। आत्मनिरीक्षण व्यक्ति के चरित्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम अपने व्यवहार का मूल्यांकन करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि हमारे शब्दों और हमारे कर्मों का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इससे हमारे भीतर विनम्रता, सहानुभूति और जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। हम अधिक संवेदनशील और परिपक्व बनते हैं और अपने संबंधों को बेहतर बना पाते हैं। ये प्रक्रिया मानसिक शांति प्राप्त करने का भी एक प्रभावी साधन है। अनेक बार हमारे मन में क्रोध, ईर्ष्या, भय और असंतोष जैसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम इन भावनाओं के कारणों को समझ सकते हैं। जब कारण स्पष्ट हो जाते हैं तब उनका समाधान भी सरल हो जाता है। इस प्रकार आत्मनिरीक्षण मन को संतुलित और शांत रखने में सहायता करता है। भारतीय संस्कृति और दर्शन में आत्मनिरीक्षण को विशेष महत्व दिया गया है। ऋषि मुनियों ने सदैव मनुष्य को अपने भीतर झांकने की प्रेरणा दी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी प्रतिदिन आत्म परीक्षण करते थे और अपने आचरण का लेखा जोखा रखते थे। उनका मानना था कि आत्मनिरीक्षण के बिना आत्म सुधार संभव ही नहीं है। वास्तव में जो व्यक्ति स्वयं का न्यायपूर्वक मूल्यांकन करता है वही निरंतर प्रगति कर सकता है। आत्मनिरीक्षण की आदत विकसित करने के लिए प्रतिदिन कुछ समय शांत वातावरण में बैठकर दिन भर के कार्यों और विचारों पर चिंतन करना चाहिए। स्वयं से ये प्रश्न पूछना चाहिए कि आज मैंने क्या अच्छा किया, कहाँ गलती हुई और कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। ये सरल अभ्यास धीरे धीरे व्यक्ति को अधिक जागरूक, जिम्मेदार और संतुलित बनाता है। आज के प्रतिस्पर्धी युग में सफलता की दौड़ में लोग अक्सर अपने आंतरिक विकास को भूल जाते हैं। वे बाहरी उपलब्धियों को ही सब कुछ मान लेते हैं, किंतु वास्तविक सफलता केवल धन, पद, प्रसिद्धि प्राप्त करने में नहीं है, बल्कि एक श्रेष्ठ और संतुलित व्यक्तित्व के निर्माण में निहित है। आत्मनिरीक्षण इसी निर्माण की आधारशिला है। आत्मनिरीक्षण व्यक्ति में आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता का भी विकास करता है। जब हम अपने अनुभवों, सफलताओं और असफलताओं का ईमानदारी से विश्लेषण करते हैं तब हमें अपनी वास्तविक क्षमताओं का बोध होता है।

0: इससे जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में स्पष्टता आती है। आत्मनिरीक्षण हमें परिस्थितियों का दोष देने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। यह व्यक्ति को प्रतिक्रियात्मक नहीं बल्कि विचारशील बनाता है। जो लोग नियमित रूप से आत्मनिरीक्षण करते हैं वे अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक सजग रहते हैं और जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना धैर्य और विवेक से कर पाते हैं। अंततः कहा जा सकता है कि आत्मनिरीक्षण आत्मविकास का एक शक्तिशाली साधन है। ये हमें अपनी कमियों को पहचानने, गुणों को विकसित करने और जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से आत्मनिरीक्षण करता है वह न केवल स्वयं को सुधारता है बल्कि समाज के लिए भी एक आदर्श बनता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में आत्मनिरीक्षण को स्थान देना चाहिए, क्योंकि स्वयं को समझने और सुधारने की यात्रा ही सच्चे विकास की यात्रा है।
1: आत्मनिरीक्षण, ये विचार अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार बिंदु में, संकलन और वाचन स्वर राजीव दुबे के। आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने को है। अब छत्तीसगढ़ी में समाचार हम आकाशवाणी के लिए
2: प्रादेशिक समाचार।
3: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग स्मिता शर्मा के जय जोहार। अब आप सुनो आज के प्रमुख समाचार। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के 5 पूरा होए के मौका में आज ले सहकारिता सप्ताह मनाए जावत है। आज कबीर जयंती हरय, ये मौका में प्रदेश भर में कतकुन कार्यक्रम करे जावत है। और बस्तर के ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध गोंचा महापर्व आज ले देव स्नान पूर्णिमा के संग शुरू। अब समाचार विस्तार ले। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के 5 पूरा होए के मौका में आज ले सहकारिता सप्ताह मनाए जावत है। 6 तक चलैया ये सप्ताह में प्रदेश भर में कतकुन कार्यक्रम कराए जावत है। आज पहली दिन जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर में सहकारिता सप्ताह कार्यक्रम के आयोजन करेगी, जेमा सहकारिता मंत्री केदार कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होइन। उमनहा छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक पंडित वामन राव बलिराम लाखे के प्रतिमा में माला चघा के अपन श्रद्धांजलि दिन। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित के अध्यक्ष केदारनाथ गुप्ता, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर के अध्यक्ष निरंजन सिन्हा और उपाध्यक्ष अभिनेश कश्यप मौजूद रहिन। उन्हें सहकारिता सप्ताह के तहत सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के कतकोन प्राथमिक कृषि शाख सहकारी समिति मन में ध्वजारोहण कार्यक्रम कराएगी। साहसपुर समिति में राखे गए कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़े संख्या में किसान मन भाग लीन। कार्यक्रम के दौरान समिति के उपनियम के वाचन करके किसान मनला उनकर अधिकारी और सहकारी प्रक्रिया की जानकारी घलो देगी। सहकारिता सप्ताह के अंतर्गत रायपुर में अवैया 3 और 4 के राज्य स्तर सहकारी चिंतन शिविर, सहकार मेला और संगोष्ठी के आयोजन करे जाही, जेमा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होही। उन्हें 6 के केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह अन्न भंडारण योजना के तहत प्रदेश के 9 में गोदाम बनाए के काम के भूमि पूजन करही। आज कबीर जयंती हरय, ये मौका में प्रदेश भर में कतकुन कार्यक्रम करे जावत है। रायपुर संग्रह दूसर जगह में घलो आज कबीरहा मनहा रैली निकालिन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज संत कबीरदास के जयंती के मौका में रायपुर के सोनपैरी में संत असंगदेव के साथ कबीर जयंती महोत्सव में शामिल होइन। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हा कहिन कि संत कबीरदास के आदर्श जाति पंथ ले ऊपर उठ के सामाजिक सद्भाव, आत्मचिंतन और लोक कल्याण के प्रेरणा देते। ये मौका में श्री साय घोषणा करिन कि मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना के अवधिला अवैया 3 बर बढ़ाए जाही, जेखर ले ज्यादा उपभोक्ता सरचार्ज माफी और आकर्षक प्रावधान के लाभ लेके अपन लंबित बिजली बिल के भुगतान कर सकें। कार्यक्रम में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह मौजूद रहिन। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र पर कतकुन डिजिटल पहल के शुरुआत करिन। एमा आरोग्य सेतु के दूसर चरण, आयुष्मान सारथी चैटबॉट, आयुष्मान ऐप, ई सुश्रुत क्लिनिक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा विनिमय और भारत के डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा ला मजबूत करे बर स्वास्थ्य मानक शामिल है। सभा में श्री नड्डा ये पहला सरकार डहर ले हासिल एक ठन बड़े उपलब्धि बताइन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE आज त्रिभाषा नीति के बारे में निर्देश जारी करिस। बोर्ड हा कहे है कि कक्षा 10वीं के वर्तमान

ले एक झन्नोनी और सियान माई लोगिन के मौत हो गए। कोरबा जिला के कटघोरा वन मंडल के जटगा वन परिक्षेत्र के धवलपुर जंगल में हाथी के हमला ले एक जन ग्रामीण के मौत हो गिस। और मुंगेली जिला में जरहा गांव पुलिस ऑपरेशन बाज के तहत गांजा के अवैध खेती करे के मामला में एक जन आरोपी ला गिरफ्तार करे है। पुलिस आरोपी के कब्जा ले लगभग 3.5 किलो वजन के गांजा के 3 टन पौधा घलो जब्त करे है। आखिर में प्रमुख समाचार एक गांव फिर। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के 5 बच्छर पूरा होए के मौका में आज ले सहकारिता सप्ताह मनाया जावत है। आज कबीर जयंती हरा ए मौका में प्रदेश भर में कतकुन कार्यक्रम करे जावत थे। और बस्तर के ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध गोंचा महापर्व आज ले देव स्नान पूर्णिमा के संग शुरू। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यहीं सिरावत है। जय जोहार।

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:20 हुए हैं। अब प्रस्तुत है लोक संगीत कार्यक्रम गोधुली। आइए इस कार्यक्रम में सुनते हैं सबसे पहले ये सरगुजिहा लोकगीत। गायन स्वर हैं साधारण दास और साथियों के। आइए इनके स्वरों में सुनते हैं छोटे साजिन कर्मा।

साधारण दास और साथियों का गाया ये छोटे सा जैन कर्मा गीत अभी आप सुन रहे थे। आइए अब आपको सुनाते हैं सादरी बोली में ये रिंजा गीत। गायन स्वर हैं रामेश्वर केरकेटा और साथियों के।

रामेश्वर केरकेट्टा और साथियों के गायन स्वरों में अभी आप सुन रहे थे ये रिंजा गीत। इसी के साथ ही लोक संगीत कार्यक्रम गुंज गोधुली अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। अब लीजिए पेश है फिल्म संगीत कार्यक्रम माधुरी।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में आप सुन रहे थे फिल्म राज रिबूट का ये गीत। गीतकार थी कौसर मुनीर, संगीत दिया था अजीत गांगुली ने। आई बाप

अरिजीत सिंह की आवाज़ में आप सुन रहे थे फिल्म राज रिबूट का ये गीत। गीतकार थी कौसर मुनीर, संगीत दिया था अजीत गांगुली ने। आइए आपको सुनाते हैं कार्यक्रम की अगली पेशकश।

यासिर देसाई की आवाज़ में आप सुन रहे थे फिल्म हैक्ट का ये गीत। बोल लिखे थे शकील आज़मी ने, संगीत दिया था जीत गांगुली ने। अब सुनते हैं फिल्म आशिकी 2 का ये गाना, इसे गाया है मुस्तफ़ा जाहिद ने। गीतकार हैं संजय मासूम, संगीत दिया है जीत गांगुली ने।

मुस्तफ़ा जाहिद की आवाज़ में आप सुन रहे थे फिल्म आशिकी 2 का ये गाना। संजय मासूम के बोल थे, संगीत दिया था जीत गांगुली में। अब जाते जाते सुनते हैं श्रेया घोषाल की आवाज़ में ये गीत। फिल्म का नाम है सनक।

0: सनक रश्मि विराग के बोलते संगीत दिया था जीत गांगुली ने। इसी के साथ ही कार्यक्रम माधुरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। इस कार्यक्रम से अब अपनी रेडियो साथी पौलमी को दीजिए इजाजत। आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है, शाम के 6:45 होने को हैं। अब प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।
1: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है, अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
3: बेटा
4: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
3: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
5: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
3: चलो
2: कहाँ?
3: एडमिशन कराने,
5: खाता हुआ एक्टिव।
6: आरबीआई कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
9: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
8: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
9: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
8: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
9: क्यों?
8: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है, और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
10: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
11: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
12: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
11: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
12: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
11: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
12: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
10: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
13: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
12: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
13: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
12: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
13: आकाशवाणी से।
10: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
0: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की अवधि 3 माह के लिए बढ़ाई जाएगी, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। कबीर जयंती के मौके पर सोनपैरी में आयोजित महोत्सव में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हुए शामिल। कोयला खदानों से निकलने वाले पानी को कोल इंडिया अब कोल नीर ब्रांड नाम से बाजार में बेचेगा। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बस्तर संभाग में एक दो स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा की कि बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की अवधि 3 माह के लिए बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज रायपुर के पास सोनपैरी में आयोजित कबीर जयंती महोत्सव को संबोधित करते हुए ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे अधिक से अधिक उपभोक्ता सरचार्ज माफी और आकर्षक प्रावधानों का लाभ लेकर अपने लंबित बिजली बिलों का भुगतान कर सकेंगे।
6: बिजली बिल ज्यादा आया है उनके लिए।

0: मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना चला रहे हैं। अभी 31 जून तक उसका समय था, उसको आगे 3 महीना के लिए बढ़ा रहे हैं। तो जिनका भी बिजली बिल ज्यादा आया होगा पुराना कोरोना के समय से, तो आप लोग पंजीयन कराइए, तो आप लोगों का पूरा सरचार्ज माफ करेंगे। और एक टाइम में आप मूलधन भी पटाते हैं तो उसमें भी 10% का रियायत है। तो हम लोग 757 करोड़ रुपया बिजली बिल माफ कर रहे हैं। तो किसी का भी अगर इस तरह से ज्यादा बिजली बिल होगा तो उस योजना का लाभ ले सकेंगे। 31 जून को फिर 3 महीना के लिए बढ़ा रहे हैं।
1: आज कबीर जयंती है। इस मौके पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजधानी रायपुर सहित अन्य जगहों पर भी आज कबीर पंथ के लोगों ने रैलियां निकाली। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज संत कबीरदास की जयंती के अवसर पर रायपुर के सोनपैरी में आयोजित कबीर जयंती महोत्सव में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कर्नाटक के राज्यपाल श्री गहलोत ने कहा कि संत कबीर ने सत्य, समरसता, मानव सेवा और सद्भाव का जो संदेश दिया वो आज भी पूरे समाज और राष्ट्र के लिए पथ प्रदर्शक है। वहीं मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि संत कबीरदास के आदर्श जाति पंथ से ऊपर उठकर सामाजिक सद्भाव, आत्मचिंतन और लोक कल्याण की प्रेरणा देते हैं। कार्यक्रम को विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने भी संबोधित किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूरे होने पर आज से सहकारिता सप्ताह मनाया जा रहा है। 6 जुलाई तक चलने वाले इस सप्ताह के दौरान प्रदेश भर में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज पहले दिन जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर में सहकारिता सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री केदार कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक पंडित वामनराव बलिराम लाखे की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित के अध्यक्ष केदारनाथ गुप्ता, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर के अध्यक्ष निरंजन सिन्हा और उपाध्यक्ष अभिनेश कश्यप मौजूद थे। वहीं सहकारिता सप्ताह के तहत सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की विभिन्न प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किए गए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के विद्यार्थियों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। कोरबा जिले में कोयला खदानों से निकलने वाले पानी का उपयोग अब पेयजल के लिए किया जाएगा। कोल इंडिया लिमिटेड ने कोल नीर परियोजना के तहत खदानों के माइन वाटर को शुद्ध कर बोतलबंद पेयजल के रूप में उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। अधिकारियों ने बताया कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की 46 खदानों में लगभग 1,280 लाख घनमीटर माइन वाटर उपलब्ध है। अब इस जल को अत्याधुनिक RO और जल शोधन तकनीक से शुद्ध कर कोल नीर ब्रांड नाम से बाजार में उतारा जाएगा। योजना के तहत 20 लीटर की बोतल मात्र 5 रुपए में उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। कोल इंडिया की 4 प्रमुख कंपनियों BCCL, CCL, SCCL और MCL में माइन वाटर बॉटलिंग प्लांट स्थापित किए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
2: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
1: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर लगाने वाले उपभोक्ताओं को अतिरिक्त बिजली का लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत

वितरण कंपनी ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा तय बायबैक दर को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मंजूरी मिलने के बाद ग्रिड में भेजी गई अतिरिक्त सोलर बिजली की राशि उपभोक्ताओं के अगले बिजली बिलों में क्रेडिट के रूप में मिलेगी। नेट मीटरिंग व्यवस्था से अतिरिक्त बिजली का हिसाब रखा जाएगा। बस्तर गोंचा महापर्व आज जगदलपुर स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान चंदन यात्रा पूजा विधान के साथ शुरू हुआ। इस अवसर पर भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बालभद्र का पंचामृत चंदन और इंद्रावती नदी के पवित्र जल से परंपरानुसार वैदिक मंत्रोच्चार के बीच महाभिषेक किया गया। इसके साथ ही भगवान का अंसर काल शुरू हो गया जो 14 जुलाई तक चलेगा। इस अवधि में श्रद्धालु भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे। 25 जुलाई को एकादशी के साथ बस्तर गोंचा पर्व संपन्न होगा। सरगुजा जिले के रामगढ़ में आज से 2 दिवसीय रामगढ़ महोत्सव शुरू हो गया है। पर्यटन और संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने इस महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर स्कूली बच्चों और स्थानीय कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि रामगढ़ केवल सरगुजा ही नहीं बल्कि पूरे देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण केंद्र है। उन्होंने बताया कि महोत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रदेश भर में आगजनी की घटना से बचाव के लिए बहुमंजिला भवनों, कोचिंग सेंटरों और संस्थानों में अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं की जांच तेज कर दी गई है। इसी कड़ी में दुर्ग जिले में अग्निशमन और आपातकालीन सेवा तथा एसडीआरएफ की टीम ने 40 से अधिक कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान कई कोचिंग संस्थानों में अग्निशमन यंत्र, अलार्म और आपातकालीन निकास व्यवस्था को लेकर अनियमितता और कमियां पाई गई हैं। जिला सेनानी नागेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि संबंधित संस्थानों को कमियां दूर करने के लिए हफ्ते भर का समय दिया गया है। निर्धारित अवधि में सुधार नहीं होने पर कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया जाएगा। रायपुर जिले के धरसीवा विकास खंड के ग्राम सम्मानपुर नकटी में आज राजस्व, पुलिस और नगर निगम के अमले ने कार्रवाई करते हुए लगभग 9 हेक्टेयर शासकीय भूमि पर बने 77 अवैध मकानों को हटाया। अधिकारियों ने बताया कि इस शासकीय भूमि पर लंबे समय से अवैध कब्जा था। प्रशासन द्वारा सभी कब्जाधारियों को नोटिस जारी किए गए थे। कार्रवाई के बाद सभी कब्जाधारियों का व्यवस्थापन जिला प्रशासन द्वारा नवा रायपुर के सेक्टर 30 स्थित आवासों में किया जा रहा है। डिजिटल माध्यमों के जरिए छत्तीसगढ़ पर्यटन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा 26 से 30 जून तक इन्फ्लुएंसर मीट और फेमिलराइजेशन टूर का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत राज्य के विभिन्न जिलों से चयनित प्रमुख सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराया जा रहा है। इस दौरान प्रतिभागी मैनपाट और सतरेंगा का भ्रमण कर रहे हैं। साथ ही रामगढ़ महोत्सव के माध्यम से प्रतिभागी छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं, लोक कलाओं और ऐतिहासिक विरासत से भी रूबरू हो रहे हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बस्तर संभाग में 1-2 स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई है। अगले 24 घंटों के दौरान सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और नारायणपुर जिले में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि अगले 6 दिनों तक प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। वहीं उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश के आसार हैं। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कोटा गहना में सर्पदंश से एक बालिका और एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। कोरबा जिले के कटघोरा वनमंडल के जटगा वन परिक्षेत्र के धवलपुर जंगल में हाथी के हमले से ग्रामीण की मौत हो गई। और मुंगेली जिले में जरहा गांव पुलिस ने ऑपरेशन बाज के तहत गांजे की अवैध खेती करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की अवधि 3 माह के लिए बढ़ाई जाएगी, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। कबीर जयंती के मौके पर सोनपैरी में आयोजित महोत्सव में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हुए शामिल। कोयला खदानों से निकलने वाले पानी को कोल इंडिया अब कोल नीर ब्रांड नाम से बाजार में बेचेगा। और
मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक बस्तर संभाग में एक दो स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक

0: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा,
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
2: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री। चलो,
1: कहाँ
2: एडमिशन कराने?
4: खाता हुआ एक्टिव,
5: आरबीआई कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं, आइए अब आपको बता दें आज के हमारे शेष आकर्षण। मीडियम वेव 238.09 मीटर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अंबिकापुर। अब से कुछ ही पलों में हम आपके लिए ले आएंगे शेरो शायरी और गजलों की महफिल, कार्यक्रम रजनीगंधा। शाम 7:20 पर आप सुनेंगे हमारे ग्रामीण श्रोताओं का चहेता कार्यक्रम चौपाल। इस कार्यक्रम में आज चर्चाएं होंगी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पर, साथ ही उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता बचाना जरूरी इस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस के अवसर पर होगी एक चर्चा। मिर्च की उन्नत खेती और अमृत सरोवर योजना के बारे में मिलेगी आपको जानकारी, साथ ही कुछ लोकगीत, मंडी भाव, मौसम संबंधित कृषि परामर्श और अन्य कार्यक्रमों के साथ चौपाल में आज आपके साथ होंगे किस्नु भैया। रात 8 बजे हम लेकर आएंगे सोशल मीडिया की गूंज कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश, जिसमें गीत होंगे आपकी फरमाइश के। रात 9:30 पर ईमेल आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनिएगा, कार्यक्रम ईमेल की गूंज। रात 10 बजे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम सूर्यामिनी का होगा प्रसारण, इसमें आज पंडित जसराज की गायकी में सुनिएगा राग मारवा। और रात 10:30 पर हम लेकर आएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनभावन।

ये थे आज के हमारे कुछ मुख्य आकर्षण। अब आपको बता दें कल के कुछ मुख्य आकर्षण। कल सुबह 7 बजे आप सुनेंगे लोक संगीत कार्यक्रम गूंजे जंगल। सुबह 7:30 पर जनसंपर्क से प्राप्त समाचारों और पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा हम लेकर आएंगे। कल सुबह 8:30 पर आकाशवाणी रायपुर से हम रिले करेंगे कार्यक्रम मोर भुइयां। छत्तीसगढ़ी में ये समन्वित कार्यक्रम आकाशवाणी रायपुर से रिले किया जाएगा। सुबह 9 बजे सुनिएगा बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन। सुबह 10 बजे आकाशवाणी रायपुर से हम रिले करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर। नए तराने सुनिएगा सुबह 10:30 पर। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद हम लेकर आएंगे दिन के 11:05 पर। दोपहर 12 बजे कल आप सुनेंगे CIET और NCERT द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। दोपहर 12:30 पर सुनिएगा एक ही शीर्षक पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चयन। दोपहर 1:10 पर सुनिएगा महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन। दोपहर 1:40 पर ईमेल की गूंज।

का प्रथम भाग और दोपहर 2:30 पर गैर फिल्मी गीतों गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा। ये हैं कल के कुछ मुख्य आकर्षण। आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रजनीगंधा।

स्वागत है आपका कार्यक्रम रजनीगंधा की आज की शाम में। मैं हूं पौलोमी। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। फैज़ अहमद फैज़ की ये शायरी के साथ शुरू करते हैं आज का सिलसिला। सबसे पहले आपको सुनाते हैं भूपिंदर सिंह की आवाज़ में ये गज़ल।

बादलों का गुनाह नहीं कि वो बरस गए, बादलों का गुनाह नहीं कि वो बरस गए, दिल हल्का करने का हक सबको है। गुलजार साहब की इस शायरी के साथ ही सुनते हैं कार्यक्रम की अगली गजल, गुलाम अली की आवाज में सुनते हैं गुलजार की ये रचना।

0: गुलाम अली की आवाज़ में ये गज़ल आप सुन रहे थे। शब्द रचना थी गुलजार की। सुनते रहिए कार्यक्रम रजनीगंधा आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से।
1: चौपाल में नवा कार्यक्रम शुरू हुई सवे रविवार संझा के ठीक 7:30 बजे से।
2: हाँ, फरमाइशी कार्यक्रम हवे। संगी अपन फरमाइश भेजी और हमन गीत बजाबो।
1: कौन सा गीत?
3: सुघर गीत जैसे

0: बस हमर कार्यक्रम में मेल करी किसानवाणी अंबिकापुर 2026@gmail.com। जुलाई के पहला रविवार से कार्यक्रम शुरू हो ही।
1: चौपाल फरमाइश।
2: फिर एक बार स्वागत है आपका कार्यक्रम रजनीगंधा के आज के अंक में। हम बंद किए आँख तसव्वुर में पड़े हैं, ऐसे में कोई छम से जो आ जाए तो क्या हो। रियाज खैराबादी की इस शायरी के साथ साथ सुनते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी नगमा अदनान सामी की आवाज़ में।

अदनान सामी की आवाज़ में आप ये गज़ल सुन रहे थे। शायर थे रियाज़ुर रहमान सहगर, संगीत दिया था अदनान सामी ने। इसी के साथ ही कार्यक्रम रजनीगंधा का अंक यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7:21 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है हमारे ग्रामीण श्रोताओं का चहेता कार्यक्रम चौपाल।

जम्मो चौपाल सुनवैया भैया बहनी मन के किसनु भैया कर राम राम। यदि सुनवैया भैया बहनी हो, मैं समझता हूँ नहीं कि रे राउर मन रे बरखा कर अगोरा करत हो। बाकी कैसे कही नहीं, बरखा हर तो ऐसे करत है नहीं, आओ कि नहीं आओ कस कहत है। यदि नंगरे बार तो कहब तो दो तीन दिन का रातर पर कभो कभो आई हो जाए। बाकी देखी दे हमर किसान भाई मन नहीं अजय फिक्र आएगी ना है, कबर की चटिक अबेरा तो हुआ था है। ऐसने समय में नहीं लागते नहीं कि भाई खेती बाड़ी हर जब हमर प्रभावित हो जाते चटिक जे हमर किसान भैया बहनी मना है जे मन जग सिंचाई कर सुविधा नहीं आ है, तेमन अगर देखी बरखा नहीं आए तो ढेर फिक्र आए जाते। वही घनी लगेल नहीं कि कहीं चटिक छोटे मोटे हमार दुकान दौरी रहतीस नहीं, छोटे मोटे कहीं और व्यवसाय संगे संग हमार खेती बाड़ी कर साथे साथ चलत रहतीस तो चटिक हमारे सुविधा हो जातीस। आगू कर देखी सियान मन नहीं घरे कर दे आमदनी ला चटिक बचाए के रखें, डिब्बा डूबी में कम से कम ताखा तुखी में चटिक रखे रहें, आओ ऐसने कमी बेसी होए पर ओला निकालें। बाकी आजकल देखी नहीं तो हमार एक सुविधा होगी सा है कि एकस राउर कर अगर कहीं खेती बाड़ी हर चटिक प्रभावित हो जात है तो और चाहत ही रौरे कि कहीं छोटे मोटे व्यवसाय रौरे शुरू करना चाहते ही। और लगत है कि देखी हमार जब तो पैसा रुपया नहीं है, हमार कैसे करबो। तो देखी नहीं ऐसने समस्या का समाधान बारे नहीं हमार सरकार भी फिक्राए रथे, और सरकार कर देखी योजना रथे नहीं कि ये सुविधा वो आम आदमी तक पहुँचे जिला एकर जरूरत होए।

0: एकर देखी मैं गोठिया देकर ले आहूँ नहीं कि यही कस एक ठन योजना है राउर में सुने हो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और इदे मुद्रा लोन ले के नहीं जो छोटे व्यवसाय हमर सुनवैया भैया बहनी मन करना चाहत है नहीं ओला छोटा और सूक्ष्म स्तर पर कामला शुरू कर सकते हैं। एकर लिए देखिए कहीं बड़खा पूंजी कर जरूरत नहीं होए और चटिक मटी के दे पूंजी से ही अपन व्यवसाय ला खड़ा कर सकते हैं। चटिक शुरू कर दहीन तो ओला और आगु बढ़ाए बर नहीं हमर जो सरकार है वो आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएल वही योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये देखिए एकर उद्देश्य है नहीं कि जो हमार छोटे व्यापारियाँ हैं स्वरोजगार करे वाला हैं और जो छोटे उद्यमियाँ हैं उमला ऋण उपलब्ध कराए के उमला आत्मनिर्भर बनाल जाए। अब एक में देखिए नहीं तीन किस्म कर श्रेणियाँ है ये ऋण कर। एक ठन तो देखिए छोटे व्यवसाय शुरुआत करे भर एकर में चटिक कम ऋण भेटा थे और आगू से अगर कहीं व्यवसाय ला रौदे करत रही ओला बढ़ाना चाहती तेकर बर भी ये ऋण हर भेटा थे और जो बने राउ कर व्यवसाय हर चलता है ओला और आगू बड़खा करना चाहते है तेकर बर भी ऋण हर भेटा थे मात्रा हर चटिक आगू पाछू हो जाए। भाई अगर छोटे व्यवसाय शुरू करना चाहते तो चटी कम ऋण ले सकते ही ओकर ले आगू लेना चाहते ही तो चटी और बढ़ाए के और विस्तार करना चाहती तो और आगू ऋण ले सकते ही। अब छोटे व्यवसाय कहीं नहीं तो देखिए एकर में किराना दुकान हो गई सिलाई कढ़ाई कर काम बूता करे वाला हमर बहनी मना है उमन ये सुविधा ला ले सकते हैं। डेयरी व्यवसाय हो गई हमर खेती बाड़ी से जुड़ल छोटा उद्योग होगी मोबाइल रिपेयरिंग कर काम होगी ऑटो और ई रिक्शा आजकल देखी हमर ढेरे चलाता है छोटे जो निर्माण कार्य हैं खाद्य प्रसंस्करण कथे जला पापड़ अचार मसाला आदि अगर बनाना चाहते हैं ओकर बर उद्योग लगाना चाहते हैं चटिक छोटे स्तर पर तो ओला शुरू कर सकते हैं और आने छोटे सेवा केंद्र ला भी शुरू करके ला विकसित भी कर सकता है। अब देखिए एक महत्व का है भाई कि जो बेरोजगार हैं तिमल्ला स्वरोजगार का अवसर मिलते अपन काम बुताल शुरू कर सकता है और अगर छोटे व्यवसायी हैं नहीं तो उमल्ला जो ऋण मिली लोन मिली पूंजी मिली तो वो जो है आर्थिक रूप से और मजबूत होही और यदि हमारे ग्रामीण और जो शहरी क्षेत्र है ओकर में रोजगार कर नवा अवसर बनी एक साथे साथे जो स्थानीय है लोकल उत्पादन कथे ओला और व्यापार ला भी बढ़ावा मिली और सबले बड़का बात यह है नहीं कि आत्मनिर्भरता और उद्यमिता कर भावना हमार मन कर अंदर आही और हमार आत्मविश्वास और बढ़ी। कुल मिलाए के देखिए हम कह सकते ही नहीं कि मुद्रा लोन जो है छोटे व्यवसाय ला प्रारंभ करे बर बढ़ाए बर और उलाहन सफल बनाए कर बड़खा माध्यम है जेकर से मनसे अपन आजीविका चला सकता है और देश कर अर्थव्यवस्था में अपन योगदान दे सकता है। देखिए नहीं हमार गोएठ हट तो चलत रही बाकी मैं कहता हूँ कि एक ठन संदेश है तो ये संदेश ला सुनते हैं तेकर बाद में आने गोएठ बात करते हैं।
1: मान धन योजना मिले

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आज देखिए, नहीं, अंतर्राष्ट्रीय

उष्ण कटिबंधीय दिवस है। तो एक मतलब है कि उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है उकर महत्व, उकर जैव विविधता, पर्यावरण कर चुनौती और संरक्षण कर जो जरूरत है, जो आवश्यकता है, उकर प्रति लोग मनसे में जागरूकता बढ़ाना आज का दिन का उद्देश्य है। और ये जो दिवस है नहीं, हर बछर ये 29 जून के मनाल जाए, और देखिए आ जाए 29 जून भी। अब यदि कहब कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का हवे, देखिए तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र नहीं, हमार पृथ्वी का वो भाग है जो कर्क रेखा और मकर रेखा कर बीच में स्थित है। ये क्षेत्र मन में नहीं सामान्यतः गर्म और नम जलवायु पायल जाए। यहाँ देखिए सघन वन, नदी, समुद्री तट और अनेक प्रकार का जीव जंतु पाल जाते हैं। अब देखिए नहीं, जैव विविधता कर बात करें तो ये क्षेत्र मन में दुनिया कर बहुत बड़ा संख्या में पौधा और जीव जंतु कर प्रजाति पायल जाए। वर्षा वन जो है पृथ्वी कर जलवायु संतुलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते, जान थी रोरे मने बात ल भाई। ये जो वन जंगल हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड ला अवशोषित करके जलवायु परिवर्तन ला कम करे में सहायता करते हैं। और कई ठन जो औषधीय पौधा है नहीं, यही क्षेत्र मन से प्राप्त होते। अब एक देखिए संरक्षण काबर जरूरी है कि वन कर कटाई, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और जो अवैध शिकार करते नहीं, उकर से जैव विविधता कर खतरा बहुत बढ़गी सा है। एक लिए नहीं, एक संरक्षण बहुत जरूरी है। कई ठन देखिए वनस्पति और जीव जंतु विलुप्त होकर स्थिति में पहुँच गई ना है, कई ठन विलुप्त भी होगी ना है। आजकल देखिए नहीं, हमारे आकाश से उकस चिड़ै चुनगुन में नहीं दिखें जे कस पहल दिखत रहीन, तो कहीं ना कहीं ये चिंता कर बात है। उसने देखी जैव विविधता का जो संरक्षण है, पर्यावरण और मानव का जो जीवन है, दोनों बड़े बहुत जरूरी है। हमन कह सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस है, आज के दिन हमन ला ये संदेश देते कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का जो जैव विविधता है, खाली यदि प्रकृति कर संपदा नहीं बल्कि मानव जीवन का अस्तित्व का आधार है। एक लिए नहीं, हमन ला वन जंगल, वन्य जीव और प्राकृतिक संसाधन कर संरक्षण करना बहुत जरूरी है। और देखिए हमन कर जिम्मेदारी भी है, और ये जिम्मेदारी ला हमन नहीं निभाव नहीं तो आगू चल के देखी ये परेशानी, ये समस्या हम ही मन ला हो। देखिए आगू और गोएड बात करब, एक ठन और संदेश है वो ला सुनते हैं।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: देखिए, हमरे रे चौपाल में बैठी और हमर खेती बाड़ी कर बात नहीं होए, नहीं ऐसने तो हो ये नहीं सके। तो देखिए भाई, ये मिर्चाई जो है नहीं, ये हमर खान पान में देखी, चाहे चटनी कर बात करी, चाहे हमर सब्जी कर बात करी, टिकर में अगर मिर्चाई हर नहीं रहे नहीं तो हर नहीं सवा दिल। तो मिर्चाई कर जो फसल है, यह मैं तो कहता हूँ कि बहुत जरूरी है भाई। और मिर्चाई कर उन्नत खेती, पौध संरक्षण और रोग प्रबंधन बहुत जरूरी है। अब आजकल तो देखिए नवा नवा तकनीक आए कि ना है, तो आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करके हमरे दे मिर्च कर अच्छा पैदावार, उच्च गुणवत्ता और रोग से सुरक्षित उत्पादन प्राप्त करके कर सकते हैं। मिर्ची कर देखिए उन्नत खेती में ऐसा विधि अपनाएल जाए जेकर से कम लागत में अधिक उत्पादन

उत्पादन और अच्छा गुणवत्ता वाला मिर्चाई हमन ला भेटा सके। अब एक बार देखी कुछ बात है जला हमन ला ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे देखिए उन्नत किस्म का चयन करी, तो उन्नत किस्म का चयन करते समय देखिए कि हमारे क्षेत्र जो है और जो जलवायु है ओकर हिसाब से ओकर अनुसार अधिक उत्पादन देने वाला रोग रोधी किस्म कौन सा है ओकर चयन करी। भूमि का तैयारी बढ़िया लेहन करी, अच्छा जल निकासी वाला जो दोमट मिट्टी होते नहीं मिर्चाई बड़े बहुत उपयुक्त मानल जाए। बीज उपचार कर हमन बराबर बात करती तो बीज ला उपचारित करके अगर लगाव नहीं तो रोग होकर खतरा कम रही। नर्सरी प्रबंधन कर बात करी तो स्वस्थ पौधा तैयार करना और सही समय पर रोपाई करना बहुत जरूरी है, ये बात कर भी ध्यान रखना जरूरी है। बिना खातू और उर्वरक कर कहीं बात हर बढ़े नहीं देखी, तो एकर बड़े गोबर खाद जैविक खाद और जो जरूरत कर पोषक तत्व हैं उमन का उचित उपयोग जरूर करें।

नर्सरी प्रबंधन कर बात करी तो स्वस्थ पौधा तैयार करना और सही समय पर रोपाई करना बहुत जरूरी है, ये बात कर भी ध्यान रखना जरूरी है। बिना खातू और उर्वरक कर कहीं बात हर बढ़े नहीं दिखी, तो एकर बड़े गोबर खाद, जैविक खाद और जो जरूरत कर पोषक तत्व हैं उमन कर उचित उपयोग जरूर करें। जरूरत कर हिसाब से देखिए, समय समय पर सिंचाई करत रहें और ध्यान रखें कि भाई खेत में जल भराव झेन होए। एक ठन और बात बहुत जरूरी है कि ध्यान रखें कि भाई खेत में खर पतवार हर तो नहीं होता है, और अगर दिखता है खर पतवार तो बोला भाई निकाल लें। अब देखिए पौधा कर संरक्षण कर बात कर थी तो ये मतलब देखी नहीं कीड़वा रोग और आने जो तत्व हैं नहीं वो मन ढेरे नुकसान करते हैं, तो ओला बचाना भी बहुत जरूरी है और यही लग कथें पौध संरक्षण। मिर्चई कर कीड़वा कर बात करी नहीं तेकर में देखी थ्रिप्स लगते सफ़ेद मक्खी होयल माहू जलह नेफीड कहते वहू हर लागल फल चेदक कीड़वा लगते, तो पहले तो देखिए समय समय पर एला देखत रहे कि ये कीड़वा में लगी ना है कि नहीं लगी ना है। खेत कर देखिए नियमित रूप से निगरानी करत रहें और देखें कि कहीं कीड़वा लेगी से है तो वो पौधा मल्ला हटाए रखें वहाँ ले, जेकर से कि हर दूसर पौधा में झेल लगे। जैविक उपाय और जरूरत कर हिसाब से जो अनुशंसित कीटनाशक हैं वोकर उपयोग करें। वैसे देखिए रोग कर अगर हम बात करी तो पत्ती धब्बा रोग होयल, मोजेक वायरस हुए, जड़ गलन रोग होयल, झुलसा हो जाए कभो कभो, तो एक बड़े देखी नहीं स्वस्थ और रोगमुक्त बीज कर उपयोग करें। फसल चक्र अपनाए सकता है, खेत में जल निकासी कर प्रबंध अच्छा रखें और रोगग्रस्त अगर पौधा दिखता है तो ओला समय रहते हटाए दें। एकर साथे साथ संतुलित पोषण कर ध्यान रखें और उचित दवा प्रबंधन जरूर अपनाएं। अगर देखिए हमर किसान भाई मन रे वैज्ञानिक तरीका लेहन उचित पोषण सिंचाई पौध संरक्षण और रोग प्रबंधन ला अपनाता है नहीं तो निश्चित रूप से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकता है, उपज बेहतर गुणवत्ता वाला हो ही और एकर ले ज़्यादा हमला देखिए आमदनी भी भेटा ही, तो ये सब बात कर जरूर ध्यान रखें भाई। मैं कहता हूँ कि दे नगद हमन तो गैठ करें एक ठन बढ़िया लोकगीत सुन लेते हैं, ता लगी यदि भोजपुरी लोकगीत है लगाई ना है शंकर यादव उनकर संगता।

देखिए गीतला तो सुनें, बाकी मैं कहता हूँ नहीं कि ये हमार बहुत सारा किसान भैया बहनी मना है नहीं जो बहुत बढ़िया लेहन खेती कराता है। ऐसने देखिए एक ठन किसान है पारसनाथ बड़ा जी, ग्राम नान दमाली कर रहोया लगे, तो सब्जी वर्गी फसल कर खेती कैसे कराता है और का लगाता है और कैसे उपज प्राप्त कराता है, ता इनकर ले नहीं हमारे भजन भैया गोएट बात करी ना है, तो गोएट ला सुनते आने श्रोता मन सुन ही नहीं, तो वह देखिए बढ़िया लेहन सब्जी वर्गी फसल कर खेती करी, तो आई ये बातचीत ला सुना थी।

0: गया है पहाड़ कर नीचे गांव, एक और किसान भेंट होइने मोर जन, तो सीधा उनकर जे गोइड बात करत है और जानत है उनकर नाम का नाम हवे राउर।
1: मोर नाम है प्रसनाथ बड़ा, गांव है नांदमाली।
0: परसनाथ भैया, राउर के बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो इस खेती पाती कर गोइड करी रौरे का लगाए रहें साग भाजी में?
1: तो अभी तो मोर जगह लगी से का कहते हैं भाटा और टमाटर लगी से।
0: अच्छा, तो भाटा टमाटर कर गोइट करें, तो ये भाटा कर जो तैयारी रहे कब करे रहें और कैसे करे रहें एक बारे में बताते हैं।
1: तो भाटा हमन लगाए रहें फरवरी में, एक और मेड़ तैयार करें, जुताई तेमस करके और मेड़ बनाएं, मेड़ बनाए के बाद में ड्रिप लगाएं, ड्रिप फिर मल्चिंग बिछाएं।
0: फिर शुरुआत कर गोइट करी खेत के तैयारी रहे कैसे कैसे करना पड़ेगा? अब देखिए भाई अभी फल देना शुरू है किस, जब फसल लगाए से पहले खेत कर तैयारी कैसे करना पड़ेगा लोग कर बारे में?
1: अच्छा, खेत के तैयारियों के बढ़िया से एक बार तो हम जुताएं, फिर रोटावेटर चलाएं में।
0: जोतना पड़े
1: तो 3 बार
0: ट्रैक्टर से जुतवाते?
1: हाँ, ट्रैक्टर से।
0: अच्छा,
1: ट्रैक्टर से फिर रोटावेटर फंसा के प्लेन करते बढ़िया होके भुरभुरा करना पड़े लोग। हाँ, भुरभुरा करे के बाद में फिर मैं मेड़ बना है ना। अच्छा। हाँ, मेड़ बनाए के फिर मैं गोबर खाद डालना पड़े, फिर बेसल्टो देना पड़े।
0: अच्छा, हाँ। मेड़ बना थी तो मेड़ जो है तो आजकल तो भाई ट्रैक्टर से भी बरन बरन कर तकनीक।
1: हाँ, वो ट्रैक्टर तकनीकी से ही बनाई हूँ मैं।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो मैं हमने लगाई 5 फीट की दूरी।
0: अच्छा,
1: घेर 5-5 फीट के घेर है ना।
0: अच्छा, तो ये तरह से खेत कर तैयारी राउर करे हैं बढ़िया, मतलब ट्रैक्टर से खेत ला जोतवाए है ना, फिर रोटावेटर कहते हैं कि।
1: हाँ, रोटावेटर है ना, रोटावेटर वो भुरभुरा करे ना वो।
0: हाँ हाँ,
1: पूरे माटी एकदम भुरभुरा कर दे लो।
0: अच्छा,
1: भुरभुरा होए के बाद में फिर तकनीकी हिसाब ट्रैक्टर फंसा के ना मेड़ बनाए वाला है ना, उसमें 5-5 फीट की दूरी, तो अपन हिसाब से कोई 4 फीट भी करते हैं, कोई 4.5 कोई 5 फीट करते हैं
0: अपन हिसाब से।
1: अपन हिसाब से किसान मन से सब करते हैं।
0: बीज व्यवस्था कर बात, तो भाटा कर बीज व्यवस्था कहाँ लेकर?
1: हाँ, तो भाटा के बीज व्यवस्था मन अभी फिलहाल करजी से कर रहे हैं, ग्राफ्टेड वाला टमाटर बैगन दोनों।
0: करजी में कोई केंद्र है?
1: हाँ, केंद्र है, बीज केंद्र है करजी में, उसे लाने रहे
0: वहाँ पौधा लाने।
1: हाँ, पौधा लाने
0: लाने भाटा पौधा ला, तो फिर कतेक कतेक दूरिया में लगाएं?
1: भाटा हमार लगी से 3 फीट में।
0: 3 फीट में?
1: हाँ, भाटा के दूरी 3 फीट में है और टमाटर की दूरी 1.5 फीट में।
0: टमाटर और भाटा दोनों मैंने अलग अलग खेत में?
1: अलग अलग खेत में, अलग अलग खेत में लगी से।
0: हाँ हाँ, और भाटा खेती में और का कीड़वा मन देखे पर मिलता है?
1: भाटा में ज्यादा कीड़ा है ना, तो भाटा में हर सप्ताह में 2 बार कीटनाशक देना पड़े है ना।
0: किरवा कर गोइट करी तो जिसे शुरुआत
1: फल छेदक ज्यादा करे,
0: फल छेदक।
1: हाँ, फल छेदक, तो कीटनाशक दवाई के नाम तो बिना तुरंत नहीं बताए पाते, लेकिन दुकान से। हाँ,
0: दुकान से।
1: हाँ, दुकान से जाके बताना पड़े लो जल की भाई मोर फल में खेती में ये बीमारी है, फल छेदक है या तो तना छेदक जो भी है, दुकान में जाने सब चीज दवाई मिल जाती है।
0: अच्छा, तो वो दवाई ला छिड़काव कर?
1: हाँ, छिड़काव करना पड़े।
0: तो ये भाटा ला रहे कई एकड़ में लगाए?
1: भाटा हमारा लगभग 80 डिसमिल में है।
0: 80 डिसमिल?
1: हाँ, टमाटर 2 एकड़ में।
0: 2 एकड़ मैंने डबले बड़का एरिया है टमाटर।
1: हाँ,
0: नहीं।
1: हाँ,
0: और टमाटर में क्या रोग देखे पर मिले?
1: टमाटर में ज्यादा देखा जाए तो का बोला वो के पत्ता कोकड़ा तो झुलसा रोग।
0: झुलसा रोग?
1: हाँ, झुलसा रोग।
0: तो जब झुलसा रोग लगे तो कैसे उपचार करती?
1: झुलसा रोग पर फिर दवाई स्प्रे करना पड़े में।
0: अच्छा, मैंने देखरेख बहुत।
1: हाँ, देखरेख मतलब उन्हें सुबह शाम, मतलब भले वो वजन कम नहीं है लेकिन सुबह और शाम ध्यान देना पड़े कि सुबह सुबह जाए से कीड़ा भी पता चले है ना, एक छोटा छोटा वो बैठल करिए करिए माछी टाइप के।
0: हाँ,
1: वो टमाटर में विशेष बैठे।
0: अच्छा,
1: तो वो बैठी तो फिर नुकसान करिए।
0: अच्छा,
1: हाँ, तो ओकर पर फिर एक गुस्से पर जो बनाते हैं खूटा खूटा टांग दे से क्या है, रात में जो घूमेल ना।
0: हाँ, प्रकाश प्रपंच।
1: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। वो टांग दे से क्या है कीटनाशक या तो फिर वो थोड़ा कम लगे सब घुस जाए, इतना इतना घुस जाए 1 महीना में।
0: अच्छा,
1: कीड़ा
0: गोइट करी देखी खाद पानी कर, तो खाद कर व्यवस्था कैसे का देना पड़े?
1: तो खाद के व्यवस्था जैसे पौधा अगर हम बढ़ाना है तो 1919 है ना, 1919 फिर बाद में 0-50-52 है ना फलवर।
0: हाँ,
1: वही सब चलाते सप्ताह में 2 बार।
0: रौरे सब्जी वर्गीय फसल उत्पादन करे ही इला रौरे कहीं प्रशिक्षण ले हन कि कहीं देखा सीखे सीखे?
1: नहीं, देखा सीखा से सीखे।
0: गाँव में और भी खेती किसानी करते
1: हैं? गाँव में ज्यादातर टमाटर करते हैं, खीरा के।
0: खीरा कर?
1: हाँ, मैं तो अभी पिछले साल लगा रहा हूँ दमाली में ही खीरा के रही से।
0: अच्छा,
1: तो अभी अब आगे अंबिकापुर ये सरगवा मनफोड़ स्कूल अंदर ग्राउंड में। हाँ, तो ये भाटा और टमाटर लगी से।
0: अच्छा,
1: तो जगह उजह का छोटा पड़ा जैसे मतलब दमाली में शुरुआत है हमार की
0: भाटा और मतलब टमाटर कर।
1: हाँ,
0: और खीरा कर तो पहले लगा रहे?
1: हाँ, खीरा के टमाटर लगे रही पहले, तो अभी खेत की तैयारी फिर कर रहे थे, हुआ थे हमारे अभी 4 एकड़ में और बढ़ी।
0: अच्छा,
1: तो 2-1 एकड़ में खीरा रही और बाकी 2-2 एकड़ में फिर बढ़ावा टमाटर और भाटा।
0: हाँ, तो खीरा जो रौदे लगा रहे हैं तो मैं

0: फसल है नहीं
1: है, नकदी फसल है, वो
0: बढ़िया भेटा है आमदनी।
1: हाँ, ओमे का है जैसे लगाए ना हमन बीज लगाए ना, वो मेड़ उड़ बनाए विधि तो सेम वही है ना, टमाटर हो चाहे भाटा हो चाहे खीरा जो भी है, खाद भी सेम वही है, विटामिन भी वही जाए, सब चीज वही जाए। हाँ, जितना साग भाजी वाला में तो खीरा में क्या है कि जैसे लगाए ना हम खीरा, जैसे आज लगाते मान लो एक तारीख है ना, तो एक तारीख लगाए तो वो 30 या 32 दिन में वो पहला तोड़ाई।
0: अच्छा,
1: पहला तोड़ाई रप टप, मतलब वो एक महीना टूट 10-12-15 बार टूटे, उसके बाद में खत्म।
0: मतलब ये कही कि अगर अच्छा मन लगा खेती करता है तो
1: हर आतर दिन में टूटे।
0: अच्छा, मैंने महीना भर बस देख रेख करना है।
1: हाँ, बस महीना भर
0: देख रेख, बढ़िया जतन अगर होगी।
1: हाँ, तो जतन होगी तो 30 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, थोड़ा सा भाई कभी कभी समय पे खाद पानी दे नहीं सकता हूँ, तो भाई 32-33-35 दिन में तो निकलना ही है पहला तोड़ाई।
0: बढ़िया लाभ भेटे रही
1: तो खीरा में हमन जगह लगभग 1 एकड़ रही है ना, शुरू सब सीखे टाइम में, तो लागत मोर लगे रही लगभग 50,000 के।
0: अच्छा,
1: है ना,
0: बाजार व्यवस्था और कैसे करती जब को
1: बाजार व्यवस्था हमने मंडी से हम फोन करके गाड़ी जाते रही से लेने।
0: अच्छा,
1: हमारे मतलब लाने की जरूरत नहीं पड़ती रही, गाड़ी वही खड़ा हो जाए।
0: हाँ,
1: भैया तोड़ रहे हैं आ जाइए, तो समय पे पहुंच जाए।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: मतलब बाजार जा जाए के बेचना नहीं है, खुद भैया रहे इतना अच्छा बढ़िया फसल उत्पादन करे ही और मंडी से फोन कर दे हमारे तैयार होगी जाए नहीं, वैसे अपन उठा के लेगी, एक मुफ्त पैसा हाथ आएगी।
1: हाँ, एक मुफ्त।
0: चलो बहुत अच्छा।
1: शुरू शुरू में हम सीखे टाइप के लगाए तो भी ज्यादा तो नहीं, तो 3.25 लाख मिल रही।
0: देखिए बहुत अच्छा बात है भाई, खेती किसानी देखा अगर मन लगा के करी और आधुनिक खेती करी तो निश्चित रूप से उकर फल अच्छा भेटा।
1: अच्छा भेटा।
0: तो हमारे सुने वाला किसान भैया बहनी मन ला का संदेश देव कि भाई कैसे खेती हूँ मन करें, रउरे इतना अच्छा किसान प्रगतिशील किसान बरन बरन कर खेती करत है और लाभ कमावत है और अपन जीवन में काफी बदलाव भी लाने है, तो रउरे का संदेश दे।
1: मैं तो यही कहा हमारे किसान भाई मन ला कि वो ज्यादा जमीन नहीं चाहिए उकर बर, है ना, अगर वाले जल्दी जल्दी फसल लेना है तो खीरा लगाए, है ना, तो साल भर में एक धार वो मेड़ बनाते हैं मल्चिंग से, उनमें 3 फसल ले।
0: अच्छा,
1: 3 बार फसल लग जाए, जैसे खीरा हर 2 महीना के है ना, खत्म हो फिर वो नार उखाड़ दा, उखाड़े के बाद में फिर में बीज डाल दा, घास पत्र साफ खरपतवार सब साफ करके बीज फिर डाल दा, 2 महीना में फिर बिक जाइयो, फिर वो खत्म हुई फिर उखाड़ के फिर लगा, मतलब साल भर में 3 बार
0: 3 फसल ले सकते है ना।
1: वो यहाँ कहा है कि हमार देखा धागा हुई, बांस खूटा गाड़ना, बांस कर खर्चा, मल्चिंग कर खर्चा और ड्रिप कर खर्चा बच जाए शुरू में ही जो लागत है, बाकी जितना 2 बार लगाई है तो सब फायदा में रहे।
0: परसनाथ भैया देखिए बहुत अच्छा रह रहे आज हमारे संग बैठ बात करें और हमारे सुनने वाला किसान भैया बहनी मन घलुक लागे कि भाई हमनु लब टमाटर कर खेती करना चाहिए, खीरा के बारे में रह रहे कहन कि बहुत अच्छा खीरा कर खेती साल में 3 बार कर सकते हैं, बहुत अच्छा लागल भाई कि हमन किसान मन जब भेंट करथन मुलाकात करथन और अपन अनुभव ला बताते हैं कि भाई हमन खेती किसानी में ये बदलाव देखें, राहुल के जीवन में क्या बदलाव है।
1: जब पैसा जब पॉकेट में आके लागिस ना तो और खुशी हो लागिस के खेत जमीन बढ़ाऊं, तब मैं दमाली से फिर आ गया अंबिकापुर।
0: अच्छा,
1: जमीन खोजे ले फिर लगाए होंगे।
0: चलो बहुत अच्छा, हमर शुभकामना है कि राउर जो फसल लगाई वो फसल हर बढ़िया होए, आमदनी अच्छा होए और राउर कर जीवन में बदलाव आए और खुशियां ही खुशियां हो। आज रौरे से गुड बात हुई राउर कर, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: देखिए हमारे देश का जो अमृत सरोवर योजना चलता है नहीं ते देखिए जल संरक्षण का राष्ट्रीय मॉडल का रूप में चर्चा में आएगी सा है। अब ये योजना कर देखिए उद्देश्य का है नहीं, जो बरखा कर जल है वाला संग्रहित करना और जो भूजल स्तर है वाला बढ़ाना, ये तालाब मन सूखत हैं और जो पुराना जल स्रोत सूखत हैं तेमन कर पुनर्जीवन करना, हमार ग्रामीण क्षेत्र में जो जल संकट है वाला कम करना, पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता ला बढ़ावा देना, किसान भैया बहनी मल्ला सिंचाई बरे जल उपलब्ध कराना। अभी अमृत सरोवर कर देखी महत कर बात करी नहीं तो सबले बड़खा महत्व यह है कि बरखा कर पानी ला रोक के भविष्य कर उपयोग बरे सुरक्षित करल जाए, सरोवर जो तालाब बना है उकर आसपास कर क्षेत्र में भूजल स्तर बढ़ जाए, सिंचाई कर सुविधा मिले से हमार खेती बढ़ेल, आसपास देखिए निर्माण कार्य से स्थानीय जो मनसियाँ हैं तेमन ला रोजगार भी भेटायल, और सबले बड़का बात यह है कि जल स्रोत कर आसपास में हरियाली बढ़ेल और जीव जंतु मल्ला संरक्षण मिलेल, जरूरत है कि हमन ये जो

काम होत है, एकर में कंधा से कंधा मिलाए के चली और आपन भूमिका ला भी एकर में बढ़ाई। अब देखिए बेरा हुआ है मंडी भाव और मौसम का जानकारी कर, तो आज कर जो मंडी भाव है कोदो 3,250 रुपया प्रति क्विंटल, सरसों 5,655, धान 2,185, गेहूँ 2,428 रुपया, रामतिल 7,000 और तिल 6,000 रुपया। मौसम कर बात करी तो आज कर अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। काल का अनुमान है कि अधिकतम तापमान रही 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मिर्चाई कर खेती कर बारे में हमन बात करत रहें तो आज कर देखिए सवाल रही कि मिर्चाई में रोग से रोकथाम भरे का उपाय करना चाहिए। हमारे जगेटेक बेरा बाची सा है कि चलत चलते एक ठन और बढ़िया लेहन गीत सुन ली, तो लगी सुनिए गीत लाए लगाई ना है शारदा सिन्हा।

अभी आप सुन रहे थे हमारे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल। मीडियम वेव 238.09 मीटर और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकर

आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। रात के 8 बजे हैं। अब पेश है सोशल मीडिया की गूंज, कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।

कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश की आज की कड़ी लेकर मैं हूं आपकी रेडियो साथी पॉलोमी। आज कबीर जयंती पर विशेष हमने पोस्ट डाली थी जिसपे बहुत सारे श्रोताओं ने अपने कमेंट्स किए थे। आइए पढ़ते हैं हमारे सभी फरमाइशकर्ताओं के नाम। ग्राम कासकेला पोस्ट सलका जनपद भैया जिला सूरजपुर से सेजल सिंह, ज्योति सिंह, साक्षी सिंह, अर्चना सिंह, कुमार सिंह, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, टिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी, दिशा गोस्वामी, दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा, महाराष्ट्र से परभणी के श्रोता रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रीतेश संघई व समस्त संघई परिवार, श्री गणेश अंबिका आर्ट श्रीरामपुरा से डी अशोक कुम्भार, अंबिका जीविका सानू कुम्भार, अर्चना कुम्भार कोयते, वस्ती पूना वाले, अजय सोनवाने, करिश्मा सोनवाने, अंबिका सोनवान, सईशा सोनवाने, सांगली जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबाहत, कीरत हुजरे, रेहान शेख, अंभई तहसील सिल्लोड़ जिला छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोड़के, वैशाली अनिल, प्राजक्ता घोड़के, वैष्णवी घोड़के, गायत्री घोड़के, यज्ञेश घोड़के, पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन, चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खातिजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कैसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा, चनोरा जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से बनवारी लाल कुशवाहा, मंजूलता कुशवाहा, राम और श्याम, रवि, आर्यन, रंजीत कुशवाहा, रामानंद कुशवाहा और साथी, मुंडा टोला डोंडी लोहारा बालोद से डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी नेताम, चंचल नेताम, कोमाश कामेश नेताम, माहिर नेताम, ज्योति नगर नोखा राजस्थान से पुखराज बड़ गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धन धरा, फरसा राम सोलंकी, श्यामलाल चौहान, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी, हसन सिक्का, अरड़ा नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी भूपेश, दीपेश वर्मा, ग्राम बगबुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, मालियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवियम जैन, भटगांव सूरजपुर से सुरेंद्र कुमार, आरती यादव, नितिन यादव, हेमाक्षी यादव, महेंद्र कुमार, मोहर मनिया, धर्मजीत, फुलेश्वर और समस्त परिवार के सदस्य, अमगासी कुन्नी चौक नवापारा लखनपुर सरगुजा से मुनेश राम, शालिनी, रुचिका, अनिका, मनीष, सुचिता, चांदनी, दीपांशु और परिवार के सभी समस्त सदस्य, सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, बेबी बॉय हिमाक्ष और रायगढ़ से रोहित जयलक्ष्मी।

आइए अब सुनते हैं हमारे अगले श्रोताओं की फरमाइश। चक 5MD पत्रोड़ा से मंगल जनागल राही, श्रीमती रोशनी जनागल, अंकुर जनागल, इंदु, डॉक्टर सुनील जनागल। उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया। ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। उमरिया मध्य प्रदेश से संतोष कुमार राव, भारती राव, बेला बाई सिंह, विकास सिंह, ओम प्रकाश सिंह। जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल। ग्राम अनुजनगर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से चंद्रभान रजवाड़े, बबीता रजवाड़े, धिया रजवाड़े, काव्या रजवाड़े, मंजू रजवाड़े। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। बोरसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली, प्रियांशु साहू। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो, विलिस डिकैस्ट्रो। सुपरस्टार रेडियो श्रोता संघ सारसताल सोनगरा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से प्रेम साय राजवाड़े, सोमार साय, मेर साय, श्री भगत, हेमंत कुमार, राम खिलावन सिंह पैकरा। राष्ट्रीय दिव्यांग सहयोग संगठन छत्तीसगढ़ से नरेश कुमार, संदीप कुमार पांडे, कृष्ण कुमार, चित्रंजन यादव, सुनील कुमार, तेज कुमार साहू, रविशंकर राजवाड़े, मनीष कुमार साहू, गंगेश्वरी भास्कर, कविता मांझी, सेवता कुलदीप, सूची कश्यप। ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकिब पवार, अलमास बानो पवार, मोइन छोटू पवार, शंकरलाल गंगराड़, विनीता गंगराड़े, मोहम्मद हसनैन पवार। कोटवा नारायणपुर से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। ये श्रोता हमारे बाबापट्टी बलिया से हैं। जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़ से धनेश्वर निषाद, दीपिका निषाद, शिवांश निषाद, राम भरोस पैकरा, नरेश सिंह एवं समस्त निषाद परिवार। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह, शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज। डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर। कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से योगेश गुजराती, रेखा गुजराती, अभय गुजराती। देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार नेवानी, संगीता, आकाश, आयुषी, सागर, यशी, पूजा, हनी, सीता और नेवानी परिवार के सभी सदस्य। फुलसरवाया कटघोरा चिरमिरी रोड जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से नैनदास दीवान, शीला दीवान, ओम प्रकाश दीवान, रूपमणि दीवान, प्रीति दीवान, सिद्धांत दीवान, शौर्य दीवान, कुमारी सानवी दीवान और सभी परिवार के सदस्य। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू। और अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयमंत्री केवट, अंजलि केवट, रुद्रानी केवट, कृष्णा केवट और चंचल केवट। आइए आप सबको सुनाते हैं आपकी पसंद का कार्यक्रम का ये अगला गीत।

अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर की आवाज़ों में ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था ये जवानी है दीवानी। इस गीत के बोल लिखे थे अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत दिया था प्रीतम ने।

फिल्म एक्शन रिप्ले का ये गीत आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल की आवाज़ में। गीतकार थे इरशाद कामिल, संगीत दिया था प्रीतम ने। आइए अब सुनते हैं हमारे अगले श्रोताओं की फरमाइश। इस गीत को चुना है ग्राम धुर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार साहू, युवराज साहू, वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। रवि कुमार, राहुल, रणजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, कोल सिटी बरकाकाना से अफजल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी साहिनी, मोहम्मद अफजल मल्लिक, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से, विनोद खड़से, स्वरूप आनंद सरजाल जोड़ा पीपल अंबिकापुर से हमारे ये श्रोता हैं। पिंगा वाला चौक गोरैया जालंधर से संदीप मकार, ज्योति मकार, मन्नत मकार, भरत मकार, कमल साहनी, कंवर कॉलोनी बड़वाह जिला खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा, काफिर भाई, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा।

महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, माही, पूजा छुटकी, शरद कुमार डोडवानी और माखीजा कुटुंब के सभी सदस्य। डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का, तन्मय गजभिये। बड़ा बम चौक खंडवा से ममता बामरकंडे, संजय मारकंडे, बेबी किट्टू। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान। गांव टोरोवाल, जिला नवाशहर, पंजाब से गगनदीप थांडी, तृप्ता कुमारी थांडी, डॉक्टर प्रियंका थांडी, डॉक्टर प्रशांत थांडी, डॉक्टर प्रियम थांडी, बेबी वामिका और वाणी थांडी। मुबारकपुर ऊंची तकिया, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन, फातिमा सोगरा, वकार हैदर, कनीजा सकीना, हसीना दिलशाद, वसीम फातिमा। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके, श्रव्या रामटेके। मानपुर साबित, जिला मुरादाबाद से शेख जियाउर रहमान, शेख अताउर रहमान, शेख हबीबुर रहमान। हयात कॉलोनी आर्या बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफसल, मोहम्मद अकमल और नफीसा प्रवीण। आइए आप सबको सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

अलका याग्निक की सुरीली आवाज में आप ये गीत सुन रहे थे। फिल्म का नाम था राज। समीर के बोलते संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। आइए अब आपको सुनाते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवाकर, निर्मला नवाकर, विशाल नवाकर, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताड़े, आशीष मोहरेकर, बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता सिंह, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया, मदरसा गेट भाऊपुर मड़ियाहूँ जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नावेद इरशाद, अजरा तबस्सुम, रायपुर अनी ज़िला बनारस से मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन अंसारी, आफिया परवीन, ग्राम लोहड़ी ज़िला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया, रेनू, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव, चंद्रेश गौहर, सुनील पाठक, मुजफ्फरपुर बिहार से राजकुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना मुन्नी, चांदनी नंदनी कुमारी, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहार, ग्राम लोहड़ा ज़िला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, अर्जुन भारती, अंजलि, नितिन, जगमोहन, सुधीर, नूतन, भुवनेश्वरी, ज़िला मुरादाबाद, ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह, सत्यम क्लब फूलकोना प्रेमनगर से अरविंद कुमार यादव, रुस्तम, हिमांशु, अनुष्का, ऐश्वर्या, प्रीतम, मनोज यादव, मिथिलेश यादव, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरविंदर सिंह चावला, लोकेश जोशी, आकाश शर्मा, बेबी वैदेही जोशी, बेबी हंसिका जोशी, पायल जोशी, कुमारी अंकित

जोशी, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर। बटिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग। काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी से आजान कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनती विनायक सिंह, मोहिनी मोहित सिंह, कोको रानी। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान मोहम्मद, सलमान मोहम्मद, इरफान मोहम्मद, इसरार मोहम्मद, नरगिस खातून। मिठमुड़ा दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, कौशल श्रीवास, कृष्ण कुमार यादव और गेंदू भाई। और इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश साहू, शुभम, सावित्री साहू, शिखा और शेफाली। आइए आप सबको सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत आपकी फरमाइश पर।

फिल्म यारियां का ये गीत आप सुन रहे थे। आवाज़ थी मोहम्मद इरफान और गजेंद्र वर्मा की। गीतकार और संगीतकार थे मिथुन। आइए अब आपको सुनाते हैं कार्यक्रम की ये अगली फरमाइश। इस गीत को सुनना चाहते हैं गड़िया मौजे उस्तू से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष मंडल, कुंदन मंडल, करीना कुमारी, पूजा कुमारी, आरती कुमारी, सुनीता देवी। गांव खोखर वाली श्री गंगानगर से विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास बारासा, रोशनी बारासा, शगुन बारासा। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल, निशा। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेरड़ी से नाना लामसे, मीना लामसे, जय लामसे, तेजस लामसे, हर्षिता लामसे। ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत प्रजापति। ग्राम कालापारा सरगुजा से रामचंद्र गुप्ता, पांडेराम राजवाड़े। उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से भेरूलाल वाकतरिया, धाकड़ भोला वाकतरिया, प्रवीण वाकतरिया, रियांश वाकतरिया और प्रतीक वाकतरिया। मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह। रावर करनाल से ज्ञान भूषण वर्मा शर्मा, सोमनाथ कालिया। भोला कॉलोनी घरौंडा जिला करनाल हरियाणा से विजेंद्र कुमार, जयजान कांता रानी, गुंजन साहिल, वाणी जयजान। शिवाजी नगर वड़ाली से राजेश खोबर खेड़े, इंदिरा ताई खोबर खेड़े, शिवसागर खोबर खेड़े, छकुली ताई खोबर खेड़े, स्वराज दीपाली धाड़े, तनुज सुनैना भोंडे। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर सिंह छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता,

हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, श्रीमती नंदा मोड़खे, हनुमान बोड़खे उत्तम जमदाड़े, मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़, चकरभाटा कैंप से डी आर नारवाणी, रवि चांदनी खुशी नारवाणी, दादा बाबू रोड गिरडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज़, हसन नवाज़, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज़, बेबी चाहत सादिया, सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान, उत्कर्ष चौहान, डुग्गू, बीड शहर महाराष्ट्र से पी बी कुलथे, हनुमंत कुलथे, प्रथमेध कुलथे, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन। आइए आप सबको सुनाते हैं आपके पसंद पर कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

0: उदित नारायण और अलका याग्निक का ये मशहूर गीत अभी आप सुन रहे थे, जिसे नए सिरे से संगीतबद्ध किया था तनिष्क बागची ने, शब्द रचना थी आनंद बख्शी की। इसी के साथ ही कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश का आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है। इस कार्यक्रम से अब अपनी रेडियो साथी पॉलमी को दीजिए इजाज़त। यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है, रात के 8:45 हो रहे हैं। अब समाचार संध्या हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधि

0: जो पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरलम के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णे और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्य शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रीस के विकास मंत्री ताकिस थियोडोरिकाकोस से आज ग्रीस में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, औद्योगिक सहयोग और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत ग्रीस आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये विधेयक असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, असामाजिक तत्वों की कड़ी सजा देने के उद्देश्य से पारित किया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अधिनियम बनने के बाद इन विधेयकों को असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकियों के तेजी से उत्पादन रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का

0: भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समृद्ध और विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब गांव समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हों। नई दिल्ली में आयोजित दो दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गांव केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि विकास के प्रेरक शक्ति भी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: Applications launch is going to play a very important role.
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
2: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
0: श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में लगभग 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नागरिकों के लिए प्राथमिक संपर्क केंद्र है जो पहले, दूसरे तथा तीसरे स्तर के स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के अपने 4 दिन के दौरे के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पर्यावरण, सिंचाई, रेलवे, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से त्रिपुरा और नई दिल्ली के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। उन्होंने बताया कि बेहतर संपर्क के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। आज अगरतला के राजकीय अतिथि गृह में समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबके विकास के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी। इसे 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों, विशेष रूप से 0 उत्सर्जन वाहनों पर केंद्रित है। हमारी संवाददाता सौम्य शरण की रिपोर्ट।
4: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अगले 4 वर्षों में इस नीति पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी,
5: जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है।
4: वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस नीति से 2-पहिया, 3-पहिया, 4-पहिया वाहन और N1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित होंगे। इससे परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और दिल्ली एक स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन कई खबरों का भी खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं।

0: आई ने कहा कि खुदरा पेट्रोल दुकानों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा होर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाज़ों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान ने इस संबंध में बैठक का अनुरोध किया है और ये बातचीत दोहा में होगी। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। दोहा में तकनीकी वार्ता की खबरों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। क्षेत्रीय संघर्ष के बाद से 28 फरवरी से दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क निलंबित था। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित औद्योगिक उत्पादन 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन 4.9% की वृद्धि हुई थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 372 अंक घटकर 76,728 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 110 अंक कम होकर 23,946 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 14 पैसे कमजोर होकर 94.54 रुपए पर बंद हुआ।
0: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए स्थान पक्का कर लिया है। ICC ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2 बजे जर्मनी और पराग्वे आमने सामने होंगे। अमेरिका के फुलटन में किदांबी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उपविजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सू लियांग से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में कल तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी तेज बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mushtaba with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu confers gallantry awards at Defence Investiture Ceremony in Rashtrapati Bhavan. Prime Minister Narendra Modi says 50-year-old partnership with Seychelles will now advance through innovation, sustainability and shared prosperity. Returns home after successful visit to island nation. Cabinet approves additional investment of 30,000 crore rupees in National Investment and Infrastructure Fund to accelerate infrastructure investment. West Bengal Assembly passes public safety and control of anti-social activity.

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। रात के 9:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है चित्रपट संगीत कार्यक्रम।

केके की आवाज़ में आप सुन रहे थे गीत, फिल्म का नाम था नज़र। सईद कादरी के बोल थे, संगीत दिया था अनु मलिक ने। अब सुनिए कार्यक्रम की अगली पेशकश लता मंगेशकर और सोनू निगम के आवाज़ों में।

लता मंगेशकर और सोनू निगम की आवाज़ों में ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था 1-2 का 4। गीतकार थे महबूब, संगीत दिया था AR रहमान ने।

अंकित तिवारी की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था खामोशियाँ। गीतकार थे अभेंद्र कुमार उपाध्याय, संगीत दिया था अंकित तिवारी ने। इसी के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत से अब पॉलमी को दीजिए इजाज़त। मीडियम वेव 238.09 मीटर और FM बैंड 100.2 MHz पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। अब पेश है आप सभी का चहेता ईमेल आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल की गूंज।

स्वागत है आपका कार्यक्रम ईमेल की गूंज के रात्रिकालीन भाग में। आज इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं पॉलोमी। आइए शुरू करते हैं आज का कारवां। हमारी पहली फरमाइश के साथ इस गीत को सुनना चाहते हैं चमन पार्क दिल्ली से, डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना, डॉक्टर अदीबा, जिला किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानु प्रिया, मेघा, राशि, जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक, सुशांत नायक, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी, निमित आहुजा, जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल, गम्हरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, धाड़ी नांदूरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे, डोंडी छत्तीसगढ़ से आशा जाधव, शंकर देव जाधव, सुरेश जाटव, राधिका जाधव, उमरखेड़ से गिरधारी लाल, सरिता जाटव, जेल रोड दिल्ली से लाल बापू दीवाना, उमा राज, दिव्या भारती, पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, विदर्भ संघ जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, प्रोफेसर वसुधा वज्र सिंह, आदेश कुमार काले, जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना, अश्विनी, विपुल कांबड़े, लघान पंडरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल, भारती बघेल, बोरसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू, और जलंधर सिटी पंजाब से सोनू रवि, राज, गुलशन और लकी। आइए आप सबको सुनाते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत आपकी फरमाइश पर।

फिल्म जहर का ये गीत आप सुन रहे थे। आवाज़ थी उदित नारायण की, सईद कादरी की शब्द रचना थी, संगीत दिया था अनु मलिक ने।

आइए अब आपको सुनाते हैं हमारे अगले श्रोताओं की फरमाइश। इस गीत को सुनना चाहते हैं न्यू दिल्ली मोती नगर एरिया से मानसी गौरव, अनिल, कविता अरोड़ा, मिनिस्ट्री रोड मोती नगर न्यू दिल्ली के ये हमारे श्रोता हैं। अनारकली बाजार जगराव पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाविया मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक। तेलंगाना के निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम रबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, दानिश आसिफ शेख। साथ ही इस गीत को सुनना चाहते हैं इंगोले नलेश्वर नगर नड़वेल महाराष्ट्र से पीएस नुआकर, निर्मला नुआकर, विशाल नुआकर, सोपान ताड़े, नारायण इंगोले। इंदिरा चौक तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस, गंगा देवी विश्वकर्मा। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा। चिरमिरी रोड जिला कोरबा एक फूलसर वाया कटघोरा के हमारी श्रोता नैनदास दीवान, शीला दीवान, ओम प्रकाश दीवान, रूपमणि दीवान, प्रीति दीवान, सिद्धांत दीवान, शौर्य दीवान, कुमारी सानवी दीवान और दीवान परिवार के सभी सदस्य। अराड़ नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश, दीपेश वर्मा। बन्ने बुजुर्ग तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा और ग्राम लसोड़िया पता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका और रमेश चंद्र दांगी। आइए आप सबको सुनाते हैं आपकी पसंद पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

फिल्म क्रिश का ये गीत आप सुन रहे थे। आवाज़ें थीं रफाकत अली खां और अलका याग्निक की। नासिर फराज के बोल थे, संगीत दिया था राजेश रोशन ने। आइए अब आपको सुनाते हैं कार्यक्रम की अगली फरमाइश, इसे सुनना चाहते हैं दिल्ली से स्वीटी और प्रतिभा, गांव कुम्हार हेड़ा, सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, इब्राहिम, कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल, नंदिनी जंघेल, धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि आशिका, आदित्य जंघेल, अंजलि जंघेल, भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार साहू, युवराज साहू, ग्राम धुरा पांदा भाटापारा के हमारे ये श्रोता हैं। डोंडी लोहारा पालोद से प्रभा जाटोलिया, उमरखेड़ से वैभव जाटव, सविता जाटव, बड़वाह जिला खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़, जेल रोड झांसी से महेंद्र कुमार जाटव, संदीप कुमार, नरेंद्र डोम, कोशिश डोमीन, उमरखेड़ से वैशाली जाटव, शैलेश जाटव, डुमराव बिहार से अस्मा परवीन, दुखना रानी, सदफ आरजू, वली भाई अंसारी,

फिल्म सिटी मुंबई से इकबाल मोगा, अफसारी मोगा, अहमद मोगा। बिहार स्टेट के डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, छत्तीसगढ़ से प्रभा जयपुरिया, गौरैया जालंधर से अशोक जाटव और दिल्ली से अस्मा परवीन अंसारी, आमना परवीन अंसारी। आइए आप सबको सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

जुबीन गर्ग और अनिशा चिनॉय की आवाज़ों में ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था क्रिश 3। समीर के बोलते संगीत दिया था राजेश रोशन ने। कार्यक्रम में जाते जाते आपको सुनाते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश। शनि मंदिर चौक खंडवा।

से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता सैनी, गौरव सैनी, सुपरस्टार रेडियो श्रोता संघ सारसताल सोनगरा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से प्रेम साय राजवाड़े, सुमार साय, मेर साय, श्री भगत, हेमंत कुमार, राम खेलावन सिंह पैकरा, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा मध्य प्रदेश से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकिब पवार, तमश बनो पवार, मोइन छोटू पवार, शंकर लाल गंगराड़े, सफिया अहान खोकर, मोहम्मद हसनैन पवार, जेल रोड जालंधर से रोशन जहां, मन्नत जहां, जीनत जहां, अनुपुर मध्य प्रदेश से जयमंत्री केवट, अंजलि केवट, रुद्रानी केवट, कृष्णा केवट, लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, इंदिरा विहार दिल्ली से बेबी अंसारी, निशा परवीन, और रेडियो के दीवाने ग्रुप दिल्ली से रेशमा अंसारी, बेताब रेडियो लिसनर्स क्लब पटना बिहार से वसीम अकरम, सोलहा खातून और गुड़िया खातून, आप सबको सुनाते हैं आपकी पसंद पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में फिल्म गुप्त का ये गीत आप सुन रहे थे। शब्द रचना थी आनंद बख्शी की, संगीत दिया था विजू शाह ने। इसी के साथ ही कार्यक्रम ईमेल की गूंज की इस कड़ी से अब अपनी रेडियो साथी पॉलमी को दीजिए इजाज़त। हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारे ईमेल एड्रेस emailkigoonj यानी कि ईमेल की गूंज @gmail.com पर। मीडियम वेव 238.09 मीटर और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है।

ये था पंडित जसराज के गायन स्वर में राग मारवा। इसी के साथ सूर्यामिनी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। लीजिए अब पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन।

मन भावन की आज की कड़ी लेकर मैं हूं आपकी रेडियो साथी पॉलोमी। आइए कार्यक्रम को शुरू करते हैं और सुनते हैं पहली फरमाइश जिसे भेजने वाले हमारे श्रोता हैं। पथरिया भरेवा छत्तीसगढ़ से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा सिंगरौल, बेबी वानिया सिंगरौल, देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार नेवानी, संगीता नेवानी, आकाश नेवानी, पप्पू जायसवाल, सुमैया राजवाड़े, पूजा सीता, सागर आयुषी, हनी और इनके परिवार के सभी सदस्य। कन्या परिसर रोड राखी अंबिकापुर से राखी श्रीवास्तव, महिमा श्रीवास्तव, नितिन श्रीवास्तव, सोनू वंदना श्रीवास्तव परिवार के सभी सदस्य। शीतल रेडियो श्रोता संघ ग्राम बहरमपुर टेका जिला खरगोन मध्य प्रदेश से डॉक्टर तिलोकचंद वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन, मास्टर समर राज, आर्यन वर्मा, बेबी आरोही, ईशिका वर्मा, अंजलि, श्वेता वर्मा। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक। बलौदा कलतरा से दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल, समृद्धि पटेल। डबवालीस अलीका से बसंत सिंह चन, राजकुमार, सुनीता, कुलदीप गांधी। आइए आप सबको सुनाते हैं आपकी फरमाइश पर कार्यक्रम का ये सबसे पहला गीत।

अभी हम आपको सुना रहे थे गीत, फिल्म का नाम था खूबसूरत। आवाज़ें थी कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति की, गीतकार थे संजय चहल, संगीत दिया था जतिन ललित ने। अब सुनते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश। गांव परसाटोला, जिला अंबागढ़ चौकी, छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसिया, खुमेंद्र मसिया, तुषारणी मसिया, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, पलविंदर बिरक, जयतेक बिरक, मीका बिरक, वंदना नगर एयरपोर्ट रोड, गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से पूजा, बबीता, शोभा, रेखा रघुवंशी, स्वाति, प्रयाग चौधरी, परी, ललिता खर्चे, गणेश, कार्तिक, नारायण भाव खर्चे, चांडूर बिस्वा, तालुका नांदूरा, जिला बुलडाना, महाराष्ट्र से नारायण भाव खड़से, रक्षाताई खड़से, ललिता संजना खड़से, गणेश, कार्तिक खड़से, मालती चौधरी, स्वाति, प्रयाग चौधरी, गौतम नगर, जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधड़े, आरती जोंधड़े, ग्राम बगबुड़वा पथरिया भरेवा से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका, उत्कर्ष नेताम, गौरी नगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या, करिश्मा कामले, और ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी, त्रयंबिका, लीना, अंशुमाला और आशुतोष अंगारे। आइए आप सबको सुनाते हैं आपकी पसंद पर कार्यक्रम का ये गीत।

फिल्म खामोशी का ये गीत आप सुन रहे थे। स्वर थे कविता कृष्णमूर्ति और श्रद्धा पंडित की। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीत दिया था जतिन ललित ने।

अगला गीत सुनते हैं, आइए हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर इस गीत को सुनना चाहते हैं छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, श्रीमती शीतल राजेश।

नरसिंह से छेंदूलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना अरुणा यादव, अनुराधा अल्पना यादव, दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छनूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाव, कुमारी रानू, खुशी, प्रवीण साहू, सीएल यादव, मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा, मेहरनगर उमड़खेर महाराष्ट्र से अभिजीत गुहाणकर राही, श्रीमती सरिता गुहाणकर, प्रिंस एकांश गुहाणकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गुहाणकर, प्रणीता गुहाणकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गुहाणकर, श्रीमती वैशाली गुहाणकर, श्वेता सुमित गुहाणकर, कुमारी ध्वनि गुहाणकर। आइए आप सबको सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत आपकी फरमाइश पर।

फिल्म रॉकी का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। शब्द रचना थी आनंद बख्शी की, संगीत से सवारा था आर डी बर्मन ने। आइए अब सुनते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश। इस गीत को सुनना चाहते हैं सपना संगीता रोड इंदौर से, लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीत सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन, तानिया। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावन मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमश खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री। पीपर पारा पालचुवा मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन दिवाकर, वंशिका दिवाकर। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, शिवाजी चौक।

राजेम सनील कुमार अंजुलता आदित्य कुमार कृषि श्रीवास्तव अमरपुर पिंडरा से दीपक कुमार रोशन कुमार बंशीलाल रेखा देवी श्वेता देवी सुरुचि देवी दिशा और लवी श्रीवास्तव। सुनिए अपनी पसंद पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

कुमार शानू की आवाज़ में फिल्म आशिकी का ये गीत आप सुन रहे थे। समीर के बोलते संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। कार्यक्रम में जाते जाते सुनते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, ज्योति, बाबू, रियांश ठाकुर। भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक वर्मा। सत्यम क्लब फूलकोना प्रेमनगर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से अरविंद कुमार यादव, रुस्तम, हिमांशु, अनुष्का, मनोज यादव। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार के मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, वंश बत्ता। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां। और अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका, आशीष, बेबी गव्या और भाई सुच्चा पाठक। आप सबको सुनाते हैं आपकी पसंद पर कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

0: फिल्म मैं खिलाड़ी तू नाड़ी का ये गीत आप सुन रहे थे। कुमार शानू और आशा भोसले की आवाज़ों में अन्नू मलिक ने संगीत से सवारा था। इसी के साथ ही कार्यक्रम मनभावन का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अब अपनी रेडियो साथी को इस कार्यक्रम से दीजिए इजाज़त।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णे और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में

0: केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को 12 महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की आज कड़ी निंदा की। इन हमलों में महिलाओं और बच्चे समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये खुली आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। भारतीय सेना ने मीडिया की उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की और वहां शिविर स्थापित किए। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। अमेरिका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है। उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। आईसीसी ने आज पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में अपने महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय किरण झा। President Draupadi Murmu conferred gallantry awards to the personnel of the Defence Forces and the Indian Coast Guard during the Phase 2 of Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Vice President C.P. Radhakrishnan, Defence Minister Rajnath Singh, along with other union ministers and senior officials of our armed forces, were also present on the occasion. A report.
2: The President conferred 7 Sarvottam Yudh Seva Medals, 30 Param Vishisht Seva Medals, 12 Uttam Yudh Seva Medals and 56 Ati Vishisht Seva Medals at the ceremony. Some recipients of the Ati Vishisht Seva Medal included Air Marshal Tarun Chaudhary, Lieutenant General Neeraj Varshne and Vice Admiral Anand Vai Sardesai. Recipients of the Sarvottam Yudh Seva Medal included Lieutenant General Pratik Sharma, Air Marshal Nagesh Kapoor and Lieutenant General Rajiv Ghai. Among those honored with the Param Vishisht Seva Medal were Vice Admiral Sanjay Vatsayan, Lieutenant General Manjinder Singh and Air Marshal Ashutosh Dixit. Recipients of the Uttam Yudh Seva Medal included Lieutenant General Dhiraj Seth, Air Marshal Manish Khanna and Vice Admiral Tarun Sopti. The medals were awarded to personnel for distinguished service of an exceptional order with Someshwaran, Aman Yadav, Akashwani News, Delhi.
1: Prime Minister Narendra Modi has said that his visit to Seychelles has yielded significant results that will enhance the friendship between both nations. The Prime Minister returned home after concluding his 3-day successful visit to the island nation. Our correspondent has more on Prime Minister's visit.
3: Mr. Modi visited and offered prayers at Navashakti Vinayagar Temple in Victoria. He also met the members of Indian diaspora there. He also paid floral tribute